Thank you.

Thank you.

Bye.

0: सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
1: सुनो ना,
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो, फायदा है जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ, 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
3: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
0: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रिट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: पेश है कार्यक्रम एक ही कलाकार। आज का हमारा ये कार्यक्रम केंद्रित है पार्श्व गायिका तुलसी कुमार पर। आज हम जानेंगे मशहूर

पार्श्व गायिका तुलसी कुमार ने मैनू इश्क दा लग्या रोग एनी सोनी लगदी लाहौर एक याद पुरानी रात कमाल है तेरे नाल नाम जैसे कई सुपरहिट गानों में अपनी सुमधुर आवाज दी है। तुलसी कुमार को गायकी में प्यार मोहब्बत के गीतों से काफी लगाव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत फिल्म चुप चुप के गीत शबे फिराक से एक गायिका के रूप में की थी। इसके बाद उनकी असली पहचान फिल्म 2010 में वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई के गाने तुम जो आए जिंदगी के इस गीत से मिली। लीजिए सुनते हैं इस कार्यक्रम में इस फिल्म का ये बहुत ही प्यारा सा गीत तुलसी कुमार की आवाज़ में।

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम एक ही कलाकार अब संपन्न होता है। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे थे पार्श्व गायिका तुलसी कुमार के गाए। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 11:55 होने वाले हैं। प्रादेशिक समाचार एकांश अब हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।

0: विकास विभाग ने प्रदेश के विभिन्न नगरीय निकायों के लिए एल्डरमैन की नियुक्ति की है। विभाग द्वारा सरगुजा और रायपुर संभाग के 9 जिलों के 62 नगरीय निकायों में 252 एल्डरमैन नियुक्त किए हैं। नगरीय निकायों में एल्डरमैन मनोनीत पार्षद के रूप में कार्य करते हैं। वे निकाय की बैठकों में भाग लेकर स्थानीय समस्याओं और विकास कार्यों पर सुझाव देते हैं। छत्तीसगढ़ में यात्री बसों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए परिवहन विभाग ने सभी बसों में वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस यानी VLTD लगाना अनिवार्य किया है। परिवहन सचिव ने बस संचालकों को 15 दिन के भीतर बिना VLTD वाली बसों में उपकरण लगाने और बंद उपकरणों को चालू करने के निर्देश दिए हैं। नियमों का पालन नहीं करने वाले संचालकों पर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण और अधोसंरचना विकास मंडल द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय आवास मेला के अंतर्गत लकी ड्रॉ के विजेता हितग्राहियों को आज रायपुर में आयोजित एक समारोह में पुरस्कार दिए जाएंगे। इस समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और आवास मंत्री OP चौधरी मौजूद रहेंगे। इस मौके पर मंडल द्वारा आयोजित नवीन लोगो डिजाइन प्रतियोगिता के विजेता रचनाकार को 2.5 लाख रूपये की पुरस्कार राशि भी प्रदान की जाएगी। छत्तीसगढ़ के निजी विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने विद्यार्थियों और अभिभावकों से कहा है कि दाखिले से पहले विश्वविद्यालय की मान्यता, राजपत्र में प्रकाशन, संबद्धता और पाठ्यक्रम की मंजूरी की जाँच अवश्य कर ले। रेलवे द्वारा भुवनेश्वर और मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्टेशन के बीच एक फेरे के लिए आज स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। यह ट्रेन आज भुवनेश्वर से रवाना होगी, जो 28 जून को लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्टेशन पहुंचेगी। इस ट्रेन का स्टॉपेज रायपुर और दुर्ग स्टेशन में दिया गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने बिलासपुर के रतनपुर तहसील के लालपुर हलका के पटवारी को 25,000 रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोप है कि पटवारी नक्शा बटांकन के लिए रिश्वत मांग रहा था। इसके अलावा बिलासपुर के ही मस्तूरी में ही एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने छापा मारकर बिजली विभाग के क्लर्क को 10,000 रूपये की रिश्वत लेते पकड़ा है। आरोप है कि यह क्लर्क बिजली का खंभा लगाने के लिए रिश्वत मांग रहा था। आज देश के विभिन्न भागों में मुहर्रम श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। करबला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में मुहर्रम मनाया जाता है। इस मौके पर ताजिया निकाले जाते हैं और करबला के शहीदों के सर्वोच्च बलिदान की याद में मजलिसों का आयोजन किया जाता है। इधर छत्तीसगढ़ में भी मुहर्रम के मौके पर राजधानी रायपुर सहित कई शहरों में ताजिए निकाले जाएंगे। केंद्र सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए LPG की आपूर्ति पर लगे सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध को हटा दिया है। प्रदेश में परिवहन विभाग ने सभी बसों में वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य किया और आज देश के विभिन्न भागों में मुहर्रम श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: मीडियम वेव और FM बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय दोपहर के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कला और कलाकार।
2: दा, दा, दा, दा, दा, दा, दा, दा।

0: और कलाकार कार्यक्रम संत और सब पर कलाकार दादा दीदी मन के मैं दसरी करने से जुहार और जितिनासन नन्नन पिलन के मच बाटले खूब खूब मया। तो दादा दीदी मन दसन अमित तो रोज जे कला चूप रिपोर्ट बात करूँ से नहीं और जानू से बोले तो उसमें दादा दीदी मन देखा आजी बोले मैं तो मन का जसने गोट मन के धर्म नंबर ले से। तो कलाकार दादा दीदी मन तुम्हें सब पाए जाना सास की हमें सब पाए लगे कहीं ना कहीं हुनर मन रहे से और ये हिसाब ले देखा हुनर ले हमें कहीं ना कहीं काम उता के करूँ से और हम चो जोन घर बल देखूँ से कि हम चो जोन आई दादी मन पुरखती दाए ले जोन काम धंधा करते रहो उनके हम ही ये भी बल करूँ से और उनके देखते हूँ से और उनके हमें जानू से बोले। तो उसने दादा दीदी मन बल तो ये आई कि हम चो जोन कला रह से हन कला बोले हम ही आप लोग ना पढ़ते करूँ से और संगे संगे हन कला मन के बोले चिताऊँ से। तो उसने दादा दीदी मन कला बोलन तो देखा तुम्हें सफाई जाना सास के कितरो बरन बरन चो कला हुन मन हो से उसमें बोलने हो से बांस कला हो से मूर्ति कला है घड़वा कला हो से उसने बोलन और कई बरन बरन जो कला मन हो से जे चो ले हम चो हमें जिनिस मन के देखूँ से हम जो बना तो जिनिस मन के बोले हमें देखूँ से। तो उसने दादा दीदी मन देखा हमें देखूँ से कि कई ठन असन कला हुनर मन में हमें देखूँ से कि कई माने मन जो बना सोची तर मन नहाले फिर महापुरुष मन जो हो से नहाले चढ़ी चढ़गुन हो से नहाले गज खुट हो से बोले उनमें बरन बरन जो कला हुनर मन हमके देखो जाए मेरे से। तो उसने दादा दीदी मन देखा हमें तुम्हें सपाए जाने सास की मूर्ति कला ने तो मूर्ति कला बोलन तो दादा दीदी मन तुम्हें सपाए जाने सास और दखला सास बोले। तो मूर्ति बोलन ने दादा दीदी मन देखा कितरो बरन बरन चो हमें हाट बाजारे देखो से और ये देखा मूर्ति कला बोलो से तो हमें देखो से माटी ले बोले मूर्ति बना सो संगे संगे लोहा ले बना सोत और दारू खुट ले बना सोत। तो हमें जैसे समय हिसाब ने देखा हमें देखो कि ये भी बल्लों ने दो तीन महीना बल्लों ने दो एक महीना पर बल्लों ने हन चुपाचे हमके भी देखो मेरे से बल्लों ने गणपति बप्पा जो मूर्ति बने और चुपाचे फिर मैं देखो कि माय दुर्गा जो मूर्ति मन बल्लों ने माटी का है सुंदर सुंदर बल्लों ने मूर्ति मन बना सोत अब खाली भगवान चिन्ह है बोले अब बरन बरन जो जिनिस मन भले बना सोत जैसे माटी चो हो से ने। तो उसने हमें देखो से कि लोहा ले बोले देखो से कि हमें बरन बरन जो मूर्ति मन बने से और उन जो मोल बोले खोबे हो से और संगे संगे दादा दीदी मन तो उन मन तो देखा सास के दारू खुटले बोले काय सुंदर सुंदर जिनिस मन बने से मूर्ति मन तो बना सो संगे संगे हम चो जोन बस्तर चो जोन चीना बनाए बोले चढ़ी चढ़ रान बन ये सब पाए के बोले हमें जो दारू खुटले बने से एक ही बोले हमें देखो से। तो ये था ने दादा दीदी मन जैसे मूर्ति मन तो हमें देखो से ये मूर्ति मन में हमें देखो से कि हम कितरो सुंदर नानी नानी हम डिजाइन बना सोत एकदम बारीक ले बारीक बना सोत और हम जो जो डिजाइन है हम भले खूब सुंदर रहे से और दारू अगर रंगन कर ले तो हम मूर्ति मन तो और सुंदर दिखा दे से। तो दादा दीदी मन मूर्ति कला बोल देखा हमें तो हम जो संस्कृत संस्कृति जो चीना बना हुए से और एक ही हम ही तो बनाऊ से और बल्लून हम ही बचाऊ संगम से बोले तभी हम की जश्न बचाऊ संगम रोले तभी हम ही बल्लो हम चुजोन ये तो पीढ़ी चुजोन पीढ़ी मनाते सब पाए मन मन के जान दे और चिता दे बोले और असम कर्म भाती हम ही अपनी संस्कृति के हम ही बचाऊ संगम सकूँ। तो कलाकार दादा दीदी मन दिखाई गोट बात तो होले मैं तर हम चलोगे और नंगत गोट बना से तो लेके बोले सुनो
1: बधाई हो सेठ जी आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
2: अरे भाई साहब आप देखते जाइए अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
3: क्यों भाई सिर्फ शहर में अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
2: महकना तो गांव में भी चाहिए मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
3: आकाशवाणी से।
4: गांव हो या शहर अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
6: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेतनाथ सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेतनाथ सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
7: क्या बात है उमेश आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
8: हाँ यार पत्रकार जो हो
7: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
8: सुधीर मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का

0: क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
1: इत बदले मत्ता अच्छा मानेड़ा इलाज सुडून सस्ता आता सेंगेन वेटरनरी सर्जिकल जाकी और सामान की मोलवेन कम मत्ता जानवर की इलाज तगवेन राहत दरकना उम्मीद मिंदे यू पूना मोलते ग्राहक लोर्क और व्यापारी लोर्क फायदा दरकिता जीएसटी तक कोंडे पूना मोला 22 सितंबर 2025 तीना लागू आयना मिंदे।
2: पापा कॉलेज की फीस ज्यादा है।
3: बेटा
2: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे।
3: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
4: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
3: चलो
2: कहाँ
3: एडमिशन कराने, खाता हुआ एक्टिव।
2: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
6: তো দাদা দিদিমনে গুড মানকে তো শুনলাস, তো দাদা দিদিমন দেখা আমি দেখুছে কি সময় সময় তোমার মন কাজে কয়েকঠান আসা কলাকার দাদা দিদিমন

तो दादा दिन में तो काय सुंदर गीत रहे, मतलब ने मूर्ति जो ऊपर कितरो सुंदर एक गीत बले रहे, और ये गीत के गान रोत लगे सर खुदराम और हम जो संगवारी मान। तो कलाकार दादा दीदी मन देखा मैं देखूँ से कि हम जो जोन घरे हम जो जोन बहन मान मेहरान मान रसौथ मन लगवे बले कैक ठान असन कला हुनर मन रहे से, जैसे हमें देखूँ से कि आजकल वर्षा मुर होगी और वर्षा मुर हो फिर हमें देखूँ से कि रान बन बल काय सुंदर हरा हरा देखा दे से न पाना पत्र बल मस्त अच्छा पलहाली से। तो असन में हम जो जोन घर जो जोन हम जो दीदी मन रसोत हूँ मन तो काय सुंदर पाना मन के टूटा नानून पातली दोना पत्रीशील सोत ये बोले कितरो अच्छा ये कला आए हम जो दीदी मन लग जोन रहे से। और हमें देखूँ से कि हम जोन हाट बाजारे बोले हमें देखूँ से कि दोना पत्री बोले सब पाए समय आने हमके लागे से, जैसे हमें देखूँ से कि कहाँ बिया हुए से हुन बल दोना पत्री लागे से, नहाले सट्टी हुए से हुन बल लागे से, नहाले कहीं बोलो ने पाठ हुए से तो हुन बल हमके दोना पत्री लागे से, और पूजा पाठ ने तो दोना पत्री ने भात साग

खोले नाल प्रसाद बांट ले तो खूब अच्छा बांसो। तो बोलो नहीं हम जो जन दीदी मन लग हुनर मन रह से तो दीदी मन तुमन मन बोले जैसा सना समयाने घरे बस रहा सा चो दोन हम चो जोन कलाकार दीदी मन लगे असन हुनर आसे तो हुन मन दोना पत्री सिलन भाती असने जसन जोन ठान मन में दोना पत्री बिकसो तो असन ठान मन में जाऊन भाती हुन मन संगे गोड बात करूँ भाती अपलो सिलो दोना पत्री के हुन थाने उन बिकुक सकूँ। और हमनी हम चलो जोन कला हुनर आसे एक ही बले हम ही काम ने आनुन भाती हम ही दुई पैसा हमें कमा सकूँ। तो दादा दीदी मन देखा गोट गोठियाले तो गोट तो कभी नहीं सरे ने तो आले गोट के डंडक थे बंग था और एक गीत सुनू और एक गीत कुरिया में चुनाव के मैं गीत सुन लो पीछे सांगें दे तो सुनू पहले गीत के

0: तो दादा दिन में तो क्या सुंदर गीत रहे और एक दिन गाँव रो शत्रुघ्न सिन्हा और मंचो संगवारी मान तो कलाकार दादा दीदी मन का गीत संगे संगे मंचो जातो बिरावल हो तो अल्ले विदा दियास। तो कला और कलाकार कार्यक्रम सुन तो सब पाए कलाकार दादा दीदी मन के मैं दसरी करे से जुहार।
1: दादा, दादा।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कला और कलाकार, मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय दोपहर के 12:30 हुए हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार।

0: जुहार दीदी मन, जुहार घर द्वार कार्यक्रम सुनतोर सप्पाय दीदी मन और संगवारी बहन मन के मैं दसरी करें से जुहार। और रोज दिन आसन नानी नानी पिला मन के मच बाटले खूब खूब मया। तो दीदी मन देखा समय होलो ने फिर मैं तो उन संगे गुड बात कर तुका जमत ले से। तो दीदी मन देखा तो उन मन का तुका एक ठन ज्ञान ध्यान जो गुड गीत गोविंद सप्पाय जमा की आप मोटरा ने धरुण अमर ले से। तो दीदी मन सबले पहले तो हमके तो जानते रहे से कि हम जो जो घर आए हूँ थाने हमी सप्पाय सियान सजन पीला झीला सप्पाय रहूँ से। और घरे बोलो नहीं जैसे ना कोनी कोनी घरे तो सियान सजन आसो ता कोनी कोनी घरे तो नहीं बरस हो। तो मंदर पीला झीला संतोरस हो ची तो असल में क्या हमके घरे खंड हरी कुदिन बल लागे से। और हरी कुदिन ते भी अच्छा लगवा है दीदी मन देखा हम इतने बोलो ने खंड खामी हंसी खुशी ने रवा ने। तो जैसे कोनी मुरुस आसो तो हम के बोले उनको देखूँ बात अच्छे नहीं लगे से ने। तो हम ही बोले मुरुस में हूँ से कि बोलने के काय होली मुरुस में आसे बोलो से। तो मंत्र घरे जैसन को नहीं हंसी खुशी ने रसो तो हम के देखूँ बात ही हम केवल खूबे हरिक लगे से। और हम ही बोले हंसी खुशी ने रहूँ से तो बोलते उठे ही आया दीदी मन कि हम जो घरे हंसी खुशी जो बोलो ने हंसी खुशी से हमें रहुआ। तो हम जो घरे जो जो सियान सजना पीला छिला सब पाए नंगत रह दिए और हम ही बोले नंगत रख सकूँ। तो उसने जैसन हम हंसी खुशी नहीं रहा तो हम जो जो न पीला मन जो जो न बोलो ने मन जो मानसिक जो बाढ़ती वैसे हन बल नंगत वैसे। और संगे संगे हम जो सियान सजन मन रसोत हन मल बल नंगत रसोत। और हम जो जैसन हंसी खुशी नहीं रहा उसे घर ने तो हम के हरिक बल लागे से। और इचिल के हम जो जो परिवार जो बीच ने जो हम जो घरे जो लोग मनासोत उन सब पास जो बीच ने बल्लो ने माया प्रेम खूबे बाढ़े से। और संगे संगे हम जो घर ने जो एकता बले रहे से और हमें सब पाए एकता ने मिलो उनमें रहूँ से। तो असल ने दीदी मन देखा हमें देखूँ से कि हम जो जोन पीला मनाए मन जो बारती बल माया चली हुए से। तो हरी को तुमने रहूँ दे तब हन मन जो बारती बल नंगत हुए से। और संगे संगे हन मन जो जैसन काई हम जो घरे जैसन कहीं जैसे बीमार से मार होली नाल कहीं अड़नाप समय आईली तो असन समय न बोले हम ही जैसन गोटो खून रहूँ दे। तो हम ही असन समय जो हम ही सामना अच्छा ले करुक सकूँ सब पाए मिसुन भाती ने। और जैसन हम ही एकता नहीं रहूँ तो हम जो जैसन घर जो अले पहले जैसन कहीं कोनी लोग मन ईर्खा कुछ सो तो असन ने बोले हमें मन जो बोले हम ही बलो ने सामना अच्छा करुक सकूँ से। और बोले उन मन का ही बोले उन मन जो गोट जो बोले हम ही बलो ने हन मन को समझा बोल सकूँ से सब आई सुन बाती ने। तो एक आज दीदी मन हम की ये जी लोग कोशिश करते रहे कि हम जो घरे हंसी खुशी जो माहौल रहो। और ये चोले का है जैसे हमें देखो से कि कोनी बीमार से मारा हम जो घरे पड़सो तो असन समय ने उनके हम हन जो पूरी हम के मुरुस नहीं होता रहे मल्लो ने हम ही मुरुस नहीं हुआ तो उनके बल खिंड नगद नहीं लागे दे। और हम बीमार से मार भी तो और अधिक बीमार होते जाए दे ने। तो हम के असन कोशिश करते रहे दीदी मन कि जो बीमार से मारा से नाल कहीं तकलीफ में कहीं डरने आसे तो हन चू लगे हम के हंसी खुशी नहीं रहते रहे और उनके हंसा तो कोशिश करते रहते रहे हम के। और हन चू पूरे नगद नगद गोट गोठियान बाती उनके हंसा तो रहा है। तो असन ने कहा हन हंसी खुशी नहीं रह दे तो हन बीमार से मार लोग के बोले जैसन दिन काटतो ने हन मन जो दिन पहातो ने हन मन के खूबे बल्लो ने कहीं बल्लो ने हन मन की आंडी बल्लो ने परेशानी नहीं हो दे। और असन ने कहा हन मन आप लोग रोग बीमारी के बल खिंड भूल भाती हंसी खुशी ने जुग सक दे ने। तो दीदी मन इस सप्पाई गोट के तो हम के ची लेख करते रहे। तो एक आज दीदी मन तुम्हें सप्पाई की घरे खिंड हंसी खुशी जो माहौल बनाओ संगातो रहे और सप्पाई संगे मिलून मिसुन रहते रहे। तो दीदी मन दिखाई गोट मन तो हो गई संगे संगे हम चल गए और नंगत गोट मना से तो आले के बोले सुनो
1: इत बदले मत्ता अच्छा मानेड़ा इलाज सुदून सस्ता आता सेंगेन वेटरनरी सर्जिकल जाकी और वेंट सामान की मोलवेंट कम मत्ता जानवर की इलाज तकवेंट राहत दरकना उम्मीद मिंदे यू पूना मोलते ग्राहक लोर्क और व्यापारी लोर्क फायदा दोरकिता। जीएसटी तक कोंडे पूना मोला 22 सितंबर 2025 तीना लागू आयनाद मिंदे।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेतनाथ सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेतनाथ सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल अब हर शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी। जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसानवाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
5: जीएसटी चो दर के कम करलो ने सोझे मनुक जीव चो इलाज खंडिक सस्ता नहीं होली से, बल्कि जानवर मन चो इलाज बोले सस्ता हो तो भरसा आसे। जीएसटी ले वेटनरी सर्जिकल चो सामान सस्ता होली से, नुआ कीमत ले सामान बना तो लोग और घेन तो लोग दोनों के लाभ मिरे दे। ये नुआ जीएसटी दर 22 सितंबर 2025 ले लागू हो दे।
0: तो दीदी मन दखाई गोट मन के तो सुन लो मंतर दीदी मन दखा तुम मन का है मेरो जे दिन का एक ठन असन कमानी कर तू वाट मन के धरु नमरु से बल्लो ने का भेटवार्ता भीतरे हम ये जसन आनु से तुम मन काज की कई छन हम जसन बहिन मन जो उन सब रोजगार करून भाती आप लोग जीवना के चला सो तो कोनी कोनी बहन बहिन मन तो समूह नहीं रहून भाती बल्ली कई ठन असन काम बुता

0: आपलं जीवनात चला सोत अव कोणी कोणी दीदी म्हणतो सना सागदार बिक्री कर सोत नहाले पापड अचार संदाने सब पाय जिनिस मन के बनान भातली बल्लो ने आपलो स्वरोजगार करून भातले आपलो जीवना और घर परिवार चो जीवना के चला तो मैं सहा हो सोत तो उसमें बल्ले दीदी मन आजी मैं तुमन मन का जी आनले से भेटवार्ता भितरी हम चल गई बहन मरला सोत गायत्री ठाकुर और ए मन संगे गुड बात कर सोत बलबीर सिंह कच्छ तो वाले एर मन चो गुड बात के अम्मी बल्ले सुनू
1: बहिन मन आज फिर हम तन गुटुक मितानिन बहिन हिला से ए मंच नाम है श्रीमती गायत्री ठाकुर तो गायत्री बहन सब लिया सांग बल्ले ने तु कौन गांव छो मितानी सा
2: मैं परचन पाल छो मितानी ना परचन पाल खास पारा
1: अच्छा बल्ले ने तुम छो जो मितानी जो काम है बोलो गुटुक गांव भर ने रह से कि पारा ने रह से
2: नहीं पारा में यानी कि परचन पाल में एक ही ठन मितानी ना है मैं परचन पाल का जे एक ही ठन मितानी इनके दिला से कोनी कोनी गांव में तो दो ठन तीन ठन रुआ यानी कि पारा अनुसार
1: अच्छा। हम
2: जो परचन पाल छोटे एक ही पारा है उन्हीं का जे एक ठन मितानी इन दिला से
1: अच्छा बोले ने जैसन की कितन घर आए असन रह सका है
2: हाँ यानी कि मैं जो पारा के दखवाए हूँ थाने 55 घर आ से पहले 50 घर के दखते रहे अब तो कोनी कोनी अलग गौरावल होला तो उन सर्वे में 55 घर होली
1: अच्छा जैसन की मितानिन चो जोन काम है बोलू बे बोले काय हो ऐसे कसन कर
2: यानी कि मितानिन चो काम जैसन की नहीं गर्भवती महिला है तो उनके गर्भवती महिला घर जाऊन भाती में सहयोग करवाए फिर शिशुवती महिला पीला हारिन हुनमन घर जाऊन भाती सांगवाए गर्भवती महिला जैसन की 3 महीना हो करो कुलाई निवाए आंगनबाड़ी में
1: अच्छा।
2: और फिर बीपी जांच ये सब जांच करा उकलाई निवाए 4 जांच हुआ है और फिर टीटनेस वगैरह ये सब चीज लगा उकलाई निवाए और फिर हुन मन के सांगवाए कि जसन के 9वां महीना होए दे तो इस मके पहले ले सांगा से यानी कि तुरंत नहीं सांगा 5-10 मिनट आगे सांगा मितानिन के कहीं काम भल रुआ है तो 5-10 मिनट आगे ले सांगो रहे का हुन पूरा तैयारी बल कर रुआ है और डिलीवरी घर में के भी नहीं कर रहा ये सस्त का है तो अस्पताल में डिलीवरी कर रहा से तो तुमके पैसा बल मिरवाए और होता फिर पैसा बल नहीं धरत नर्स डॉक्टर और तुम के नहीं हर चीज चो सुविधा अगर तुमके खून कुछ कमजोरी रह दे तो हुता सांग दे घर में हो आसे तो खून चो कमजोरी तो घर में तो नहीं करुक लाए सकोत उन्हीं का अस्पताल में हो लेने डिलीवरी सब चीज अच्छा हुआ बच्चा बल कम वजन रह दे तो हम चो सलाह बल दिवाए कि बच्चा के गर्म संगहा और बच्चा के नी नहलाहा ये सब चीज के बारे में संगवाए और फिर गर्भवती घर में जन भाई साफ सुथरा और ये सब चीज के बारे में संगवाए और फिर पीला हारिन घर में गे लेने यानी कि माँ माँ के खातो सलाह दिवाए फिर बच्चा के कसन दूध पिलावत हुंचो सलाह दिवाए फिर महीना महीना में इंजेक्शन लगातोर टीका अच्छा। टीका लगातो का सलाह दिवाए फिर टीकाकरण दिन सहयोग करवाए टीकाकरण दिन सब पारा चो पीला मन जसन खसरा टीका ये सब टीका लगावत में 2.5 महीना 3 महीना 9 महीना में जो टीका लगावत 1.5 साल तो नर्स दीदी ली जाले हुन मन मन के हुन लगनी वाए और टीका लगातो में सहयोग करवाए के बच्चा मन के टीका नहीं लगली से तो तू टीका लगा बोलन
1: स्वास्थ्य काम है बोलो
2: हाँ।
1: तो ये चुका जे जैसन की कुंता ने कहीं ट्रेनिंग बोले
2: हाँ मैं ट्रेनिंग कर ले से यानी कि 2007 ले मैं मितानिन बन ले से आ 2007 ले धरुन बा 10वां चरण ले धरुन भाती मैं 18 चरण तक ट्रेनिंग कर ले से भी
1: अच्छा हाँ। बोले ने ये जसन की पूरा स्वास्थ्य चो खान पान चो बारे ने सब हाँ,
2: सब चो बारे में सांगुक पड़ुआ है जसन की गर्भवती महिला है तो उनके 2 घंटा आराम कर तो का सांगुक पड़ुआ है और फिर का है तो का है वजन विति सामान के नहीं उठा बोलुआ है फिर हरा साग सब्जी ये सब चीज के बारे में नहीं सांगुआ है फिर पाछे 6 महीना ले 7वां महीना चे बच्चा 7वां महीना में हो ले उनके नहीं ए मुझ उठा कर हा बोलते सांगवा यानी कि जो थोड़े से खाना में 1 चम्मच तेल डाला जस एक चम्मच तेल डाले नहीं यानी कि 1 झंच जगह में 2 झंचित रो खाना होए दे
1: अच्छा।
2: और ये जसन एक बार बच्चा खाऊ के लाए तो एक बार इतरो खाना के नहीं सके तो बच्चा हमेशा खाते रहे दिन में कम से कम 8 बार तक खिलाहा बच्चा के तेल डाला खाना में बोलून भाती सब चीज संगवाए
1: अच्छा तो जसन की तुचो जो क्षेत्र ने बोले भे तुचो 5-55 घर आसे बोल सी जी तो ये तक का है मतलब असन महिला मन के नहीं तो बच्चा मन का जे सर्वे करो आगे ले करो पड़े से
2: हाँ आगे ले करो पड़वा सर्वे आगे ले घर घर में जाऊन भाती हुता लिखुक लागवाए कि घर में मुखिया चो नाम काया है और कितरो लोगे थारुआत ये सब चीज लिखुक लागवाए
1: अच्छा तो जैसन की स्वास्थ्य संबंधी कहीं बीमारी संबंधी चो तुम चलो दवाई बोल रहे
2: हाँ हम चलो ने बीमार जो बुखार चो का है तो बुखार चो गोली रुआ पैरासीटामोल दर्द खांसी चो कोट्रिम गोली रुआ फिर कीट स्लाइट ये सब चीज रुआ
1: अच्छा

0: बोलने सब बोलने सरकार बाटले अस्पताल बाटले
1: हाँ अस्पताल बाटले ती दुर्घटना
0: तो बोलने कौन गोली के कसन समय ने कित लोग खात रहे सब ट्रेनिंग आगे
1: हाँ यानी कि का तो पैरासिटामल गोली के बुखार में देते तो रहे कोट्रीम गोली के नहीं सर्दी और खांसी में देता फिर बच्चा मन का सिरप ये रुआ है कोट्रीम और पैरासिटामल तो बच्चा का जे कोट्रीम भी ती सिरप देते रहे और फिर जय बुखार का जो पैरासिटामल भी थी सिरप देते रहा और बड़े लोग के एक ठन का तो पैरासिटामल भी थी गोली देते रहा
0: अच्छा।
1: और अगर उनमें सात दिन तक अगर अच्छा नहीं हो सकता हमसे दवाई में हाँ। तो उनमें के तुरंत अस्पताल रेफर करवाते रहा खुद बल जाता रहा खुद नेक लगता रहा
0: अच्छा खुद
1: हाँ मिता ने इनको काम आए कि उनके संग खुद जाओ और उनके खुद इलाज कराओ
0: अच्छा
1: इलाज कराते रहा जब हम जो दवाई में अगर सात दिन हमके दवाई देते रुआ सात दिन तक हनुमन मन नहीं होले ने हनुमन के रेफर करवात रहे
0: अच्छा तो बोले ने असन कई घटना तो चलो गोली से की को की अस्पताल ने आन तो
1: नहीं अस्पताल में तो मैं सिर पे डिलीवरी लोग के ही आन ले से यान की जज की वाले मन के आन ले से अस्पताल में ये भी हुन बीती तो रेफर नहीं करा ले से, लेकिन मैं सलाह दी ले से जसन की कोनी बच्चा के दो दिन तीन दिन ले घर में धरुची रस तो मचे दवाई तो अच्छा नहीं है तुम लेकिन अस्पताल लेके नहीं आ और इलाज करो भातियाना बोलते मैं सलाह दिवाए बस अब कोनी बल में के जाओ जाऊक लाए लाग बोल दे तो मैं जाऊक लाए लाग गुआई हूँ थाने
0: तो गायत्री जसन की तुम तो मिता निशा आस बोलबे तो गांव ने कई कसन रूढ़ीवादी देवधामी ने जो इलाज कराए सो तो तुझ मिता ने बन लो दिन ने गांव ने कसन
1: नहीं गांव में नहीं पहले हुन सब तो करते रहत एबे अब जब मिता ने मैं खुद बन ले से गांव में तो थोड़े जर या बुखार होले पहले मिता ने लगले गोली धरवाता और हुन देवभूत तो करुचियात अब देवभूत में तो विश्वास करुचियात लोग लेकिन आगे मिता ने लगले गोली मैं गोली देऊ ची अगर जन मन घर बुखार धर ली से जर तो मैं हुन मन घर खुद जाऊंगा यानी कि तुम्हें जर धर ली सर तो मचे लग गोली कसन नहीं यास तो हुन मन कोनी बल बल हुआ था वाम ये उन दे देश बोलन भाती बोलन फिर मैं दी वाई
0: अच्छा
1: हाँ तो पहले चीज जसन अब देवभूत में विश्वास नहीं करत लोग भले अगर मैं नहीं रहें दे तो हुन मन तुरंत अस्पताल नहीं वाद आज जसन गांव गांव में वे मिता नीन बन ली से नहीं तो हुन दिन ले घर प्रसव तो नहीं होए सिर्फ थोड़े बल दर्द होले मिता नीन संग धर सो तो 102 गाड़ी खाक दे सो पहले तो 108 रहे अब चो तो 102 आ 102 गाड़ी के फोन करून भाती फिर मिता नीन संग ने सोचे
0: अब
1: मैं खुद जाऊक लागू चाहे
0: अब
1: बोले 12 बजे हो चाहे 1 बजे दिन में हो रात जब मैं के बुला हाथ दिला तो मैं जंग चाय में
0: जसन की 102 गाड़ी जन बोली से बोले सरकार बाटले सन फ्री न रहे से
1: की हां फ्री में रुआ हुन सरकार बाटले फ्री में रुआ ज नेउन बल दिवाय और फिर बाद में 3 दिन में छुट्टी दिले घर आनुन बल दिवाय
0: अच्छा हां बोले काई पैसा कौड़ी
1: काई ची पैसा कौड़ी नहीं धरत
0: हां बोले नसन तू डिलीवरी जसन की केस बोली से अब तक कितलो हसन तू आन ले से अस्पताल में
1: मैं तो ये तक कम से कम मैं आन ले से 30-35 केस आन ले से ची
0: अच्छा
1: मचे बन लो दिन ले 2007 ले 30-35 ले ज्यादा ही होए दे
0: तो बोले ने असन काई बड़े भारे तो कहीं असन घटना नहीं
1: नहीं ये भी तक तो नहीं होली से अब पाछे आगे चल तो हुन नहीं मालूम लेकिन जब ले मैं नहीं ले से हुन दिन ले नहीं होली से
0: अच्छा
1: यानि कि मैं सही डिलीवरी कराए से और फिर आने से हुन मन संगे मैं जसन हुन मन डिलीवरी होला बल्ले मैं तुरंत घर ही हुआ फिर पाछे हुन मन के 3 दिन के बाद में हुन गाड़ी आन दी भाई
0: अच्छा
1: हाँ फिर बाद में फिर होता है पैसा वैसा सब चीज दीवा थुन मन मन के 1400 रुपया पैसा मिल रहा है पहले तो जब खुद जो गाड़ी में नहीं तो गाड़ी पैसा मिलते 250 रुपया अब अस्पताल भी 102 गाड़ी ऐसे तो हुन दिन ले 1400 मिल गए
0: अच्छा नहीं तो कई लोग गांव ने जसन की अस्पताल वगैरह नीने तो काजे हट बोल धरुआ तो कहीं असन
1: नहीं अब तो पहले हट धरते रहो कि नहीं हम अस्पताल नहीं नहीं हम चलक पैसा नहीं आए बोलते लेकिन हम ये समझा वहाँ कि नहीं अस्पताल में नहीं आ अस्पताल में पैसा अब नहीं लागे तुम चो सही डिलीवरी हो दे घर में कई पहले नहीं कई जन माता मरते रहो पीला मरते रहो अब चो लेकिन हुन सब चीज नहीं हो अस्पताल में नहीं ले नहीं सब चीज सही सही हो से ना माता नहीं मरे ना बच्चा नहीं मरे बच्चा बल स्वस्थ रहे से और माता बल स्वस्थ रहे से आ जसन के ने पहले ना का तो जज की होले ने बायले मन के कसन करते रहो 3 दिन के बाद में खाना देते रहो जब तक हम कसा नहीं देऊ तब तक खाना नहीं देऊ बोलते रहो लेकिन ए भी नहीं अभी अस्पताल में नहीं उनसे तो तुरंत खाना खिलाओ उनसे हम खाना खाते तक उन लग रहा उनसे और बच्चा के आधा घंटा के अंदर में दूध पिलाओ बोल उनसे पहले तो जब तक 3 दिन तक खाना नहीं देते रहो उधर ना तो बाहर चो ही दूध पिलाते रहो ये भी हम बाहर चो दूध पिलाओ लाई नहीं देऊ माता चो ही दूध के पिला आधा घंटा के अंदर में माता चो दूध के पिया लेने एक कहीं चीनी हो दे और अच्छा रह दे पीला स्वस्थ रह दे माता बल स्वस्थ रह दे और माता के बल नहीं का तो खाना भूखे नहीं संगा माता के बल खाना

संगे गोट बात करते रहो बलबीर सिंह कच तो देरी मन दखा नमिता ने जो काम की तो अच्छा कर सो बोला ने पीला छो दखा रखा उन चो खुआ पिया उन चो जन्म कर रहा सो और खुआ पिया उन चो टीकाकरण उन चो रोग बीमारी ने दवा उखा सब पाए के नन बल्लो ने आप लोग मतलब माए के सर सरा सांग सोत और संगे संगे माए जो बोले दखा खुआ पिया टीका ये सब पाए के बल्लो ने कितरो अच्छा कर सोत आ घर घर जाऊन भाती सांग सो समझा सोत तो बोलो ने कितरो अच्छा ही पुण्य चो काम के कर सोत और कभी बेरा पछताए मन समय मिले मन के अस्पताल ने उन जेजकी बल करा सोत तो बोलो ने दीदी मन दखाई हम चो बहन मन का जी कितरो अच्छा ये काम के कर सोत तो दीदी मन दखा तुम मन बल जसन ये मितानी बहन चो सांगलो जसन गोट बना ये सब पाए के तुम मन बल धरा और धरुण भाती ये मन चो जोन जोन सांग सोत असन दवा औखत बनाए जोन खादी पी जोन सांग सोत ये सब पाए के खावा और स्वस्थ रहा तो दीदी मन दखाई गोट भेंट वार्ता भीतर हमें गोट मन के सुन लू अंतर मैं बल रहे हैं ज्ञान जो गोट संगे से गीत को हम जो जीवन आने खूब जरूरी हुए से तो आलिए बिरानी बनाऊ एक गीत के सुनू।

तो दीदी मैं तो काय सुंदर गीत रहे और एक गीत के गाँव रोत ममता चंद्राकर और मैं जो संगवारी मन तो दीदी मन देखा मैं बोलते रहे समय तो आसे और बोल मुझे मोटरा ने जमक बला से तो आले एक गोटो का और गीत सुन रहा और एक गीत के गाँव सोत राश्री देव और मैं जो संगवारी मन

तो दीदी मन देखा गीत के तो सुन लू और एक गीत गाउन रोहत राश्री देव और हम तो संगवारी मन तो दीदी मन देखा गीत गोविंद तो सर ली और मुझे जातो बिरा बिल होइसे तो वाले विदा दिया घर द्वार कार्यक्रम संतोष पाए दीदी मन और संगवारी बहन मन के मैं दसरी करें से जो

0: अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार, मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। ये आकाशवाणी जगदलपुर है। समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: के साथ मैं लवलीन निगम।

0: जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ हमें लड़ाई लड़नी है और इसे जीतनी भी है। गृह मंत्री ने कहा कि हमें ड्रग्स के व्यापारियों के प्रति सख्त रवैया अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि ड्रग्स का इस्तेमाल करने वाले युवाओं के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाना होगा।
1: ड्रग तस्करी, संगठित अपराध, नार्को टेरर फाइनेंस और सीमा पार के आतंकी नेटवर्क के वित्त पोषण, एक इस प्रकार से इवॉल्विंग नार्को टेररिज्म इकोसिस्टम भी बन चुकी है। तो हमारी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए, हमारे देश के अर्थतंत्र की सुरक्षा के लिए और हमारे देश की युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इस पर संपूर्ण विजय प्राप्त करें।
0: अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर काइल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम 2026 में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं, बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। भारत ने जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच हरित और सतत विकास की साझेदारी सफल रही है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार, राजनीति और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर राजदूत एकरमैन ने आशा व्यक्त की है कि इस पर जल्द सहमति बनेगी। अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के विदेश मंत्री जेकब हेलबर्ग ने कहा कि AI अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने AI युग के लिए विकसित विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। आज मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी। शहीदों की याद में आज ताजिए निकाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। भारत आज बेलफास्ट में आयरलैंड के साथ 2 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच खेलेगा। मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम में 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी शामिल है। आयरलैंड के कप्तान लोरकान टकर होंगे। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच रविवार को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव और FM बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय दोपहर के 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए ऋषि सामी की बेड़ा खाड़ा चौगोट।

मांतर गोरस उत्पादन जो पेशा नीको चलते रह दे और गाय भैंस के थनेला रोग बल्ले गोरस झेटी ने होतो बीती रोग हौन दिले किसान के खूबे नुकसान हो सके। आगर करुन ये रोग संकर बीती गाय भैंस जोन आगर गोरस देवात हुन मन के जोटू आए। थनेला रोग बैक्टीरिया विषाणु और वायरस नावचो जीवाणु ले जन्मु आए और ये रोग गोटोक पशु ले दूसर पशु ने उफड़ते जाऊआए। ये रोग कसन ने उफड़े से आले के सबले पहल जानू। पहला जेबे थनेला रोग जौटलोर पशु जो गोरस के दुहुन नीको पशु के धोले ये रोग नीको पशु के जौटुक सके। दूसर दूध दूहतोर पहले गाय चो ढेटी के नगद साफ सफाई नी कर ले बले ये रोग जौटुक लाए सके। तीसर जोन ठान ले थनेला रोग

चेगा ऐसे ढेटी मन ने खूबे दुखा रहे से हुन लगे खूब गरम बले रहे से गोरस धूले गोरस लहू असन जन्म पातर ऐसे। किसान भाई बहन मन ये तो रली थनेला रोग चो लक्षण बल्ले के कसन चितामा होंचो चीना अदाय हमी ये चो रोग

0: चुपा से गोरस के दूहत हो रहा है। दूसर ध्यान दे तो गोट हो से गोरस दूह तो बिता के आप लोग हाथ के 0.1% आइडोफोर जो घोल ने 30 सेकंड तक डुबाउन छुक छुका धोत तो रहा है। हरक मह के फेर सांगे से दूसर हुआ आटा है गोरस दूह तो बिता के आप लोग हाथ के 0.1% आइडोफोर जो घोल ने 30 सेकंड तक डुबाउन छुक छुका धोत तो रहा है। और तीसरा है थनेला रोग जोट लोर पशु के भिने संघात हो रहा है। और दूसर निको पशु मन के धूलो पाचे रोग बीती पशु के धोत हो रहा है। और आगे नुआ नुआ गोरस दे तो बीती गाय भैंस चो गोरस के धोत हो रहा है। ये चो पाचे जुगे उम्र बीती पशु मन के धोत हो रहा है। जैसन की गाय भैंस के गोरस धोत और पहल एक दुई हार चो गोरस धार भूए घसरा हुआ मानतर असर नहीं कर तो रहा है। एक दुहार चो गोरस धार के भूए घसरा ले थनेला रोग होलो पशु चो जीवाणु मन भूए घसरून निको रलो पशु ने जोटून हुन मन ने बले ए रोग के उपड़ाव सकोत। कास्तकार भाई बहन मन थनेला रोग ले गाय भैंस के बचा तो गोटोक और उपाय आसे और एक खंडिक ध्यान देऊन सुना। ये उपाय ने गोरस दूह तोर पाछे गाय भैंस चो ढेटी मन ने रलो जीवाणु के नाश कर तो काजे 4% सोडियम डाइपोक्लोराइड 0.1% पोटेशियम पर मैग्नेट 0.1% हाइड्रोफोर चो घोल तैयार करून गाय भैंस चो थन मन के ये घोल ने डंडी डुबाऊ रह तो रहा। दादी दी मन हरक मय के फेर सांगे से ये उपाय ने गोरस दूह तोर पाछे गाय भैंस चो ढेटी मन ने रलो जीवाणु के नाश कर तो काजे 4% सोडियम डाइपोक्लोराइट 0.1% पोटेशियम पर मैग्नेट और 0.1% आइडोफोर चो घोल तैयार करून गाय भैंस चो थन मन के ये घोल ने डंडी डुबाउन रहतो राय। किसान भाई बहन मन एवे सांगलोर उट के धरून गाय भैंस पोसले गोरस ढेटी ने धरतो रोग ले आप लोग गाय भैंस के बचाव सकासे तेबे ए मन निको गोरस उत्पादन करून किसान भाई बहन मन चो आमदनी के बढ़ा दे।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि समय की बेड़ा खाड़ा चोगोट मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्स FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दोपहर के 1:10 हुए हैं।
2: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 cc तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
3: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
4: हाँ यार, पत्रकार जो हो
3: तू अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
4: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
3: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
4: क्यों?
3: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
5: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
6: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां

0: कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 से 4 बजे तक। तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
1: पेश कार्यक्रम श्रोता सुमन। कार्यक्रम श्रोता सुमन के तमाम श्रोताओं को प्रीति यादव का नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म काला पत्थर से किशोर कुमार और साथियों की आवाज में। साहिर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है राजेश रोशन ने। इस गीत को सुनना चाहा है आप सभी ने। यादव मोहल्ला सनावत से आप हैं दिलीप मालाकार, सुनीता मालाकार, मुस्कान मालाकार और योगेश मालाकार। लक्षनपुर से आप हैं रामजी साहू, जीवन लाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू। ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से आप हैं मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकिब पवार, मोहम्मद हसनैन पवार। बाजार चौक ग्राम दीवाल से हैं शंकर लाल गंगराणे, वनीता गंगराणे, छोटू, पूजा, रोशनी, अजय और वामिका गंगराणे। ग्राम छैगांव देवी जिला खंडवा से आप हैं अशोक कुमार वाघे, वंदना वाघे, भूपेंद्र झवर वाघे, तनुषे।

दरियापुर बाबली से आप हैं गजानन येले और नवदीप येले। खेल बाजार पानीपत से हैं नरेश मल्होत्रा, नीटू और लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, कुनिका मल्होत्रा, जानकी चंद मल्होत्रा। लीजिए सुनिए आप सभी की पसंद का फिल्म काला पत्थर का ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा।

0: कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए फिल्म मंचरी से किशोर कुमार और लीना चंदावरकर की आवाज में। गीत है आनंद बख्शी का, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सभी। कतियापारा जूना बिलासपुर से आप हैं सुशील दिवांगन, अखिलेश लोकेश आशीष रवि शनि रियांश कान्हा आदित्य दिवांगन, बमहर चाटीडी से आप हैं गंगा देवी दिवांगन, पूनम धनेश्वरी महेश्वरी मिल्की बेबी मीनाक्षी और निधि देवांगन। घंटाघर चौक खंडवा से आप हैं संजय पंचोलिया प्रियंका पंचोलिया गुनगुन संप्रीत हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से आप हैं रोशन देवांगन कौशल्या देवांगन हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन। ऊपरकोट बुलंदशहर से आप हैं मोहम्मद सईद अब्बासी निगत परवीन अब्बासी शाहनवाज अब्बासी फरदीन अब्बासी सुहान अरजान और अबान अब्बासी। यवतमाल विदर्भ से आप हैं संतोष खडसे और विनोद खडसे। बागबहरा भदरसी से हैं पन्नालाल सेन तारा सेन कौशल सेन और खुशबू सेन। मुरवा विलाईगढ़ से आप हैं देवलाल कश कामनी कश यश कश। गुमला झारखंड से आप हैं एस एम जावेद शगुप्तांजुम। जेल रोड रायगढ़ से आप हैं नरेंद्र कुमार तिवारी। जमशेदपुर से आप हैं हरजिंदर सिंह भाटिया एंजल भाटिया नवनीत और पप्पी भाटिया। रेलवे कॉलोनी से आप हैं जगमाल सिंह डागला हैप्पी डागला जे एस नायक और शोभा नायक। अमरपुर पेंड्रा से हैं दीपक कुमार रोशन कुमार बंशी लाल रेखा देवी श्वेता देवी लक्की श्रीवास्तव। औरंगाबाद से हैं प्रकाश बुरगांवकर सुदामा प्राजक्ता प्रांजलि बुरगांवकर सोहम बुरगांवकर। धमतरी से हैं सविता माखीजा और स्वाति माखीजा। मुंगेली से आप हैं कृष्ण कुमार साहू धनंजय मनोज कुमार सत्यम शिवम और गायत्री। हटरी चौक बिलाईगढ़ से हैं कीकराम देवांगन और रानू देवांगन। लीजिए सुनिए आप सभी की पसंद का ये गीत।
1: बन गया अच्छा
2: अच्छा जी
1: एक बहाना बन गया अच्छा
2: अच्छा

आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन। कार्यक्रम का अगला गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दो रास्ते से लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद मक्षी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गीत को सुनने की ख्वाहिशमंद है आप सभी। डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से आप है राशपाल गजबिये, राधिका गजबिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजबिये। देवरी भाटापारा से आप है गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री। नाज मंजिल महसूल सीतामढ़ी बिहार से है अकरम हुसैन, वसीम अकरम, आरिज वसीम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा, बच्चू शेख, इशरत अकरम, रुबीना नसीम, नदीम अकरम, अमन अकरम, पूनम कुमारी शर्मा, चीना शेख। कलित बिहार से है मोहम्मद आसिफ और बेगम निखत परवीन। नूरमहल महसूल से आप है हुमेरा नाज, सुमेरा नाज, अबीहा नाज, अरहान बाबू, हमजा और मुजम्मिल बाबू। बोरखेड़ा पीड़ामल जिला उज्जैन से आप है विनोद मूड़त, नेहा जैन, दीपक, मयंक मूड़त, चेतन नाहटा, दीक्षा कुश मूड़त। हटौत बाजार लाहौर से आप है कमलनाथ पटेल, राकेश कुमार पटेल, समीर पटेल और राजकुमारी पटेल। सदाबहार रेडियो श्रोता संघ ताजपुर मोरवा से आप है भाई कारी राय कारी, श्रीमती मीना कारी, पुंजराज आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जैसे पिंकी, रिंकी, रिक्की, नीतू, मोहम्मद फारूक, ललन मिश्रा। डोली सकरा से है जयंत कुमार बैरागी। अस्पताल रोड केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से आप हैं चंद्रेश गौहर, श्रीमती वंदना गौहर, मयंक और तन्वी गौहर। घाम मोहल्ला पन्ना मध्य प्रदेश से आप हैं कौशल किशोर, संगीता हर्षित और वैभव मट्टू। ग्राम लोहेड़ी महोबा उत्तर प्रदेश से आप हैं जयपाल यादव, इंद्रपाल, राघवेंद्र, अरविंद, रिया, रेणु, रोनिका और रागिनी यादव। बुड़सरा नैला से आप हैं प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु, बबली और प्रियांशु साहू। तड़वी बारी परिवार ग्राम मोहत से आप हैं भैया तड़वी, रीना तड़वी, सनी बाबू, रोजूबाई, परु, मुबारक बारी, विलास, मनोहर ठाकुर, तैमूर बारी। भोकरी तालुका रावेर से आप हैं अरशद तड़वी, आरिश, अरसलान और यूनुस तड़वी। सदाबहार रेडियो श्रोता संघ जिला बुरहानपुर ग्राम मोहत से आप हैं मुशरफ खान तड़वी, जरीना तड़वी, मुबारक परवेज, रोजमिन तड़वी, तैमूर तड़वी और समस्त तड़वी परिवार। बेरेड़ी से आप है राजेश सोनी, कंचन सोनी।

आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन। कार्यक्रम का अगला गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दीवाना से कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में। गीत है समीर का, संगीत है नदीम श्रवण का। इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सभी। गीदम रोड जगदलपुर से आप हैं टी राजू राव, टी सुनील राव, शिवानी राव, कृष्ण तुलसी राव, भाग्य लक्ष्मी राव, आनंद राव, मनीषा राव, श्रवण राव, नानू राव, सतीश, साक्षी, कला और राधिका राव। उत्तर बस्तर कांकेर भानुप्रतापपुर से आप हैं प्रकाश तिरसुनिया, विकास तिरसुनिया और मनोहर निशाल। भाटापारा छत्तीसगढ़ से आप हैं हिमकेश्वर साहू, चंपा साहू, करण राहुल साहू। सौंगा धमतरी छत्तीसगढ़ से आप हैं फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन, राजेंद्र कुमार चंदन। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से आप हैं मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन बेगम, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा। छत्तीसगढ़ रायपुर से आप हैं मोहम्मद इमरान, इशरत परवीन, मोहम्मद हसनैन रजा। रानीगांव नगरी से आप हैं खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम और सीजल साहू। गोल्हापारा लूरमी से आप हैं राजकुमार साहू, तुषार, तनिष, गौरी साहू और नोमालिका। नूर महल महसूल सीतामढ़ी बिहार से आप हैं मुसरत जहानाज, तलहत जहानाज, फरहत जहानाज, रिफत जहानाज, नुसरत जहानाज, शाजिया शाहिनाज, नाजिया नूरी नाज। कलेर बिहार से आप हैं बेगम निखत परवीन और सदफ आरजू। कांकेर छत्तीसगढ़ से आप हैं खुशबू यादव, तानिया वैशाली, सुनाता यादव, योगेश यादव, उन्नति यादव, प्रगति, सरिता और ममता यादव। औरंगाबाद से आप हैं राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राशेश और राशि राजेश। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म दीवाना का गीत कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में। समीर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है नदीम श्रवण ने। लीजिए सुनिए फिल्म दीवाना का ये गीत।

कविता कृष्णमूर्ति और सुखविंदर सिंह की आवाज में आप लीजिए सुनिए फिल्म सौदागर का गीत। गीत रचना है आनंद बख्शी की, संगीत निर्देशन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत को सुनने की ख्वाहिशमंद है आप सभी। अनूपपुर मध्य प्रदेश से आप हैं श्रीमती जयमंत्री केवट, अंजलि केवट, रुद्राणी केवट और कृष्णा केवट। दतरेंगी भाटापारा से आप हैं हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा। चंडीगढ़ से आप हैं सतीश अनेजा और विमला अनेजा। कुलाड़ी कोट पांडुका से हैं नरोत्तम कश्यप, नीतू कश्यप और मोहनीश कश्यप। गीदम रोड जगदलपुर छत्तीसगढ़ से आप हैं टी राजू राव, टी सुनील राव, शिवानी, कृष्ण तुलसी, भाग्यलक्ष्मी, आनंद राव, मनीषा राव, नानू राव, साक्षी, काव्या, श्री डी राधिका राव। ग्राम भंडार सिवनी जिला कोंडागांव से आप हैं सुभाष सिंह चक्रधारी। कविता मुस्कान अनुष्का चक्रधारी। ग्राम जुगानी कलार से आप हैं राजेश नेताम, युगल अभय और ललिता नेताम। रानीगांव छत्तीसगढ़ से हैं खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम और सीजल साहू। पोटियाकला दुर्ग छत्तीसगढ़ से आप हैं संजय कुमार साहू और सुजाता साहू। दंतेवाड़ा बचेली से हैं बलराम सेन, इंदु सेन, रतिका सेन, पुष्पराज सेन, पोषण सेन, पंचू सेन और भुवनेश्वर सेन। सावरगांव महाराष्ट्र से आप हैं रघुनाथ नारे, पुष्पाताई नारे, श्रीधर नारे और मीनल नारे। जेल रोड रायगढ़ से आप हैं नरेंद्र तिवारी।

और महेंद्र कुमार तिवारी, बरकट बकाल से आप है नारायण हागे, कमल हागे, दिव्या हागे और जय हागे, हटरी चौक बिलाईगढ़ से आप है खीकराम देवांगन और रानू देवांगन, हाथकेरा भाटापारा छत्तीसगढ़ से आप है पंचू यादव, दादू यादव, बावली से है कमलेश साहू, हारिन साहू, सुशील बेलसपुरिया, पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णो कॉलोनी सन्नावद मध्य प्रदेश से आप है मोहम्मद सादिक मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री, मालेगांव से आप है दत्ता घायाल, सुनीता बाई घायाल, सानिका और गजानन घायाल। लीजिए सुनिए आप सभी के पसंद का ये गीत।

कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए फिल्म कभी खुशी कभी गम का गीत, अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में। समीर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है जतिन ललित ने। इस गीत को सुनना चाहा है आप सभी ने। सुभाष वार्ड भाटापारा छत्तीसगढ़ से आप हैं। एम एल यादव, अजय कुमार, अमित अमीन, गिरीश करण, युवान और ढावेश यादव। जगदलपुर छत्तीसगढ़ से आप हैं लावण्या विश्वकर्मा, गुण जैन, आयुषी वर्मा, जिज्ञासा और पूजा टावरी। मोती गार्डन भाटापारा छत्तीसगढ़ से आप हैं मोतीलाल झेरिया, कल्पना झेरिया, बिट्टू कुमार, चिंटू और युग कुमार झेरिया। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से आप हैं चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश नेहा और बेबी वान्या। मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से आप हैं मनोज कुमार साहू, कृष्ण कुमार, धनंजय और कुमारी गायत्री साहू। लोरमी गोलबाजार खपरी कला छत्तीसगढ़ से आप हैं संतोष कुमार सोनी, सुनीता, अखिलेश, नेहल, पीहू, दानिश, छोटी रिक्शा, संजय, पूजा, राम और पूर्वी। नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से आप हैं जगर राम साहू, बबलू जामुन देवी साहू, प्रेम साहू, पूजा देवी, लल्ला, दुष्यंत साहू, समीक्षा साहू और बेबी आराध्या साहू। आर्यनगर कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से हैं उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजित कुमार, आयुष जंघेल और नंदनी जंघेल। ग्राम कुंबली लोंडीगुड़ा से आप हैं बसंती पांडे, चुनौती पानीग्रही, तेजल हेमाश, कमल दुधेश और अवनीश पानीग्रही। लीजिए सुनिए आप सभी की पसंद का ये गीत।

0: Both Japan and Sweden stormed into the round of 32 as they played a 1-1 draw at the Dallas Stadium this morning. Japan will now face five-time champion Brazil in the next round. Ecuador also advanced to the knockout stage, beating Germany 2-1 in a Group E clash at the New Jersey Stadium early this morning. In men's hockey, India will face Asia Rivals Pakistan in its penultimate FIH Pro League match at the Lee Valley Hockey and Tennis Centre in London this evening. The match is scheduled to begin at 10:20 p.m. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Home Minister Amit Shah calls for united fight against drugs, says drug menace poses threat to national security and future of youth. Uttar Pradesh police arrest 8 people in connection with Ram Mandir donation embezzlement case. India, along with 34 nations, signs US-led initiative to build resilient AI supply chains. Prime Minister Narendra Modi recalls sacrifices of Hazrat Imam Hussain on Muharram. In men's cricket, India to take on hosts Ireland and T20 International in Belfast this evening. All eyes on debutant prodigy Vaibhav Suryavanshi. And Australia qualify for knockout stage after goalless draw against Paraguay in Group D clash in FIFA World Cup. With that, we end the midday news.
1: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य मजबूत एआई आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम

0: की अपील की। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी एनसीओआरडी की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए की।
1: आज हमारा देश नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है, आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमें जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
0: गृह मंत्री ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से इन पोर्टलों पर नशे से जुड़े मामलों की जानकारी तय समय सीमा के भीतर अपलोड करने को कहा।
1: नार्को ऑफेंडर्स आज टेक्नोलॉजी से सक्षम बने हुए हैं, वो नेटवर्क आधारित बन चुके हैं और मल्टी डोमेन अपराध के रूप में भी आज हमारे सामने खड़े हैं। ये सभी चीजें ये लड़ाई को और कठिन बनाती है, इसलिए हमारी प्रतिक्रिया एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड प्रतिक्रिया होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए और नेटवर्क सेंट्रिक लड़ाई हमें करनी पड़ेगी।
0: अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली एफआईआर के 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह एफआईआर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल यानी एसआईटी की सिफारिश के बाद श्रीराम जन्मभूमि थाने में दर्ज की गई। शिकायत ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने दर्ज कराई थी। एसआईटी ने मंगलवार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, जिसके बाद कल मामला दर्ज किया गया। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में जन विश्वास अधिनियम के अंतर्गत सुधार किए हैं। इसके तहत औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 और खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत आने वाले छोटे अपराधों को तर्कसंगत बनाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइफ आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य होगा। एक रिपोर्ट।
2: जैविक दवाओं और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची हुई शेल्फ लाइफ से संबंधित है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के उप विदेश मंत्री जैकब हेलबर्ग ने कहा कि एआई अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने एआई युग के लिए विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। एक रिपोर्ट।
3: श्री हेलबर्ग ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ अपनी साझेदारी को और गहरा करने के लिए उत्साहित है। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक बताया। श्री हेलबर्ग ने कहा कि भारत के साथ द्विपक्षीय आदान प्रदान के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई, इनमें क्वाड और ट्रस्ट पहल शामिल है। शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन और भारतीय उद्योग के प्रतिनिधियों ने किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उद्योग जगत के नेताओं के साथ सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लचीली प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी 2 दिन की दक्षिण कोरिया यात्रा के दौरान विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर व्यापक चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, वित्तीय सहयोग, जहाज निर्माण, रक्षा और सुरक्षा, उभरती तकनीकों, स्टार्टअप, संस्कृति, शिक्षा तथा लोगों के बीच संपर्क जैसी कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29

0: तक सेशल्स के दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हेमनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर काइल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच व्यापार, राजनीति और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर राजदूत एकरमैन ने आशा व्यक्त की कि इस पर जल्द सहमति बनेगी।
1: FTA हमारे व्यवसाय के लिए भारत में नया अवसर लेकर आएगा। मेरा मानना है कि इससे भारत में जर्मनी का निवेश बढ़ेगा, क्योंकि निवेश करना अधिक आसान हो जाएगा। रक्षा क्षेत्र में भी भारत जर्मनी सहयोग तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमें पनडुब्बियों से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर होने का इंतजार है। ये महत्वपूर्ण कदम होगा।
0: जर्मन राजदूत ने कहा कि जर्मनी में रह रहे भारतीय समुदाय दोनों देशों की मित्रता का मजबूत आधार है।
1: जर्मनी में भारतीय मूल के करीब 60,000 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। अगर वे सही विश्वविद्यालय का चयन करते हैं तो उनके पास अच्छी नौकरी पाने के बेहतर अवसर होते हैं। जर्मनी में भारतीय समुदाय की बढ़ती मौजूदगी से दोनों देशों के बीच लोगों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे।
0: भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं, बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी है। जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची 1 जुलाई से 3 जुलाई तक भारत यात्रा पर रहेंगी। वे नई दिल्ली में होने वाले 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस शिखर सम्मेलन में दोनों देश अपने द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा करेंगे और उसे और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही दोनों नेता आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आज आशुराय मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक है। हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए प्राण की आहुति दी थी। आज के दिन शहीदों की याद में ताजिया निकाले जा रहे हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने ताजिया जुलूसों के संबंध में यातायात संबंधी चेतावनी जारी की है। इसके मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस बीच दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार नेताजी सुभाष मार्ग से जामा मस्जिद की ओर आने वाले वाहनों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। भीड़भाड़ से बचने और मुहर्रम के जुलूस के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए यातायात को नेताजी सुभाष मार्ग से होकर अन्य मार्गों पर जोड़ा जाएगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि मोहम्मद हजरत इमाम हुसैन के बलिदान, साहस, करुणा, सत्य तथा न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता जैसे शाश्वत मूल्यों की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अधिक रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। पश्चिम बंगाल में साहित्य सम्राट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की 188वीं जयंती मनाई जा रही है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म आज ही के दिन 1838 को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के नेहाठी के काठलापारा में हुआ था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने राष्ट्रगान वंदे मातरम की रचना की, जिसमें स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में बंकिम चंद्र स्मृति ग्रंथागार में बंकिम चंद्र की जयंती

0: उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज ऑपरेशन अमिस्ताद की घोषणा की। इसके अंतर्गत भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्यों में सहायता के लिए भारतीय वायुसेना के 2 एमसीसी C-17 विमान वेनेजुएला के लिए रवाना हो गए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पर बताया कि अस्तिदात का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत भारतीय सेना की फील्ड अस्पताल इकाई और 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण भेजे जा रहे हैं। इनमें 2 भीष्म क्यूब भी शामिल हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत इस कठिन समय में वेनेजुएला की सरकार और वहां के लोगों के साथ खड़ा है और हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। और अब खेल खबरों के साथ है आनंद पाठक।
1: भारत आज बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला खेलेगा। ये मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम में 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के अपने अंतिम मैच में पैराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली है। ग्रुप डी के एक अन्य मुकाबले में तुर्की ने अमेरिका को 3-2 से हराकर टूर्नामेंट में अपने अभियान का जीत के साथ समापन किया। जापान और स्वीडन का मुकाबला 1-1 गोल की बराबरी पर समाप्त हुआ। दोनों टीमों ने अंतिम 32 में जगह बना ली है। अगले दौर में जापान का मुकाबला 5 बार के चैंपियन ब्राजील से होगा। वहीं ग्रुप ई के मैच में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। एक अन्य मुकाबले में कोट डी आइवर ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। हॉकी में लंदन में आयोजित FIH प्रो लीग में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले हुए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हराया था।
0: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य मजबूत AI आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से। टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें। और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के एक मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार श्रोताओ, मैं हूं आपका मित्र अजीत। आइए हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत विचार से, जिस विचार को हमें भेजा है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं, हम हर आने वाले दिन को आज के दिन से बेहतर बना सकते हैं, बस सकारात्मक रवैया चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है नगर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल। ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सोमांशु पांडे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इन संदेशों के लिए। अब एक बार फिर से आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं इन दिनों हम बात कर रहे हैं भारत की अनेक उन गुफाओं के बारे में जो अपने आप में अनूठी हैं, प्रकृति का चमत्कार हैं। ये भारत की सबसे पुरानी लंबी गुफाओं में से एक मानी जाती है। जी हाँ श्रोताओं, इन गुफाओं को प्रकृति ने बनाया है। आज हम चलेंगे भारत के मेघालय में गारो हिल्स के रमणीय वातावरण में स्थित सिजू गुफाओं की ओर, जो प्रकृति की कलात्मकता और भूवैज्ञानिक चमत्कारों का अद्भुत उदाहरण है। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि मेघालय राज्य में स्थित ये गुफाएं अपनी रोचक बनावट और विशाल चट्टानी कक्षों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन कक्षों को एयरक्राफ्ट हैंगर भी कहते हैं। चूना पत्थर की ये हॉल नुमा कक्ष देखने में एयरक्राफ्ट हैंगर की तरह दिखाई पड़ते हैं। ये प्रकृति प्रेमियों को बहुत आकर्षित करते हैं। श्रोताओं, सिजू गुफाओं में विविध प्रकार की दुर्लभ वनस्पतियां और जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं। ये गुफाएं लगभग 40 करोड़ साल पुरानी हैं। इन गुफाओं में वैज्ञानिकों को कई विलुप्त जीव प्रजातियों के जीवाश्म भी मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि आज से लाखों साल पहले का जीव जगत कैसा था। एक और रोचक बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि इन गुफाओं को बैट केव्स या चमगादड़ों की गुफाएं भी कहते हैं, क्योंकि यहां घोर अंधकार रहता है और इसके कारण हजारों की संख्या में यहां पर चमगादड़ मिलते हैं। श्रोताओं, ये गुफाएं अंधेरे नम वातावरण के अनुकूल ढल चुकी अनूठी प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करती हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के चमगादड़ और गुफाओं में रहने वाले कीड़े भी शामिल हैं। लाखों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी घोर अंधकार में रहने के कारण यहां के बहुत से जीवों की आंखें अभी तक अविकसित हैं। सिजू गांव के पास स्थित होने के कारण ये गुफाएं सिजू गुफाएं कहलाती हैं, जो एक विशाल गुफा प्रणाली का हिस्सा हैं। ये गारो पहाड़ियों में गहराई तक फैली हुई हैं। श्रोताओं, सिजू गुफाओं के मुख्य आकर्षणों में टूथ पैसेज विशेष रूप से जाना जाता है। आइए अब जानते हैं इसका नाम टूथ पैसेज क्यों पड़ा। इसका नाम टूथ पैसेज इसलिए पड़ा कि यहां चट्टानों की बनावट ऐसी है कि वे मनुष्य के दांतों की श्रृंखला जैसी दिखाई पड़ती हैं। एक और अनूठी बात आपसे साझा करना चाहते हैं और वो ये है कि यहाँ का स्थानीय गारो जनजातीय समुदाय इन गुफाओं को अलौकिक शक्तियों का निवास स्थान मानता है और समय समय पर इन गुफाओं में आकर अपने पूर्वजों के प्रति अनुष्ठान भी करता है। समृद्ध जैव विविधता के कारण ये स्थान पक्षी और जीव विज्ञानियों के लिए एक आदर्श स्थान है, क्योंकि यहां उन्हें गुफा में रहने वाले दुर्लभ जीवों का अध्ययन करने का अवसर मिलता है। गुफा के अंदर टपकते पानी की गूंज और कभी कभार चमगादड़ों के पंखों की फड़फड़ाहट एक अलौकिक वातावरण का निर्माण करती है। यही कारण है कि सिजू गुफाओं को स्थानीय गारो भाषा में डोवा कोल भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है चमगादड़ों का घर। इन गुफाओं की एक विशेषता है और वो ये है कि अन्य कुछ गुफाओं की तरह इसकी खोज किसी एक व्यक्ति ने नहीं की। स्थानीय जनजाति के लोग इसे हजारों वर्षों से जानते आए हैं। वैज्ञानिक अन्वेषण बाद में हुए, तब कहीं जाकर इसकी विचित्रता का पता दुनिया को चला। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। जी हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है स्टीफन हॉकिंग। इस कार्यक्रम में प्रख्यात भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग के जीवन और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उनकी महत्वपूर्ण खोजों के बारे में जानकारी दी गई है।

0: मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहे कबीर हरिपाइये, मन ही की प्रतीत।
1: आपने संत कबीर की इन पंक्तियों को अवश्य सुना होगा। इन पंक्तियों का आशय है, जीवन में जय और पराजय केवल मन के भाव हैं।
0: आज हम एक ऐसी महान विभूति की बात करेंगे जिन्होंने इन पंक्तियों को शत प्रतिशत अपने जीवन में चरितार्थ किया।
1: उस महान शख्सियत का नाम है स्टीफन विलियम हॉकिंग। उनका नाम 20वीं सदी के महानतम भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ बड़े आदर से लिया जाता है। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्डशायर ब्रिटेन में हुआ था। उनके पिता का नाम फ्रैंक और माता का नाम इजाबेल हॉकिंग था।
0: ये भी एक विचित्र संयोग ही था कि इस महान खगोल वैज्ञानिक का जन्म महान खगोल वैज्ञानिक गैलीलियो की मृत्यु के ठीक 300 वर्षों बाद हुआ था। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को हुआ था और गैलीलियो की मृत्यु 8 जनवरी 1642 को हुई थी।
1: उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ऑक्सफोर्ड के निकट सेंट एल्बान में ही पूरी की। स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया।
0: ऑक्सफोर्ड से भौतिकी में वो प्रथम श्रेणी में प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स के साथ उत्तीर्ण हुए। अध्ययन पूरा करने के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने अनुप्रयुक्त गणित और सैद्धांतिक भौतिकी यानी अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थियोरिटिकल फिजिक्स विषय लेकर ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी पर गहन अध्ययन और शोध किया। प्रोफेसर और छात्र उन्हें प्यार से जूनियर आइंस्टाइन कहकर बुलाते थे।
1: फिर आया 1963 का साल। दिन था 8 जनवरी यानी उनका 21वां जन्मदिन। वे छुट्टियों में अपने घर आए।
2: Stephen, happy birthday to you!
3: Happy birthday to you, Stephen!
4: How are you? Happy birthday, Stephen! Thank you, Thomas. Congratulations! Thank you, John. Thank you so much. Hi, Martin. How are you?
2: Oh, fine.
4: Thanks for coming in. Please come in.
3: Oh, yes, sure. Yes. Yay. Why not?
2: Come. Yeah.
3: Come.
2: John, please come here.
3: Oh, sure.

0: जन्मदिन की पार्टी बहुत अच्छी रही, लेकिन दूसरे ही दिन जो हुआ उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। हुआ यूं कि वे अपने घर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे कि तभी
1: हाँ

0: अचानक उनके शरीर की सारी मांसपेशियां बुरी तरह से अकड़ गईं और वे अचेत होकर गिर पड़े। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कुछ दवाएं देकर और इसे सामान्य कमजोरी बताकर उन्हें घर भेज दिया।
1: लेकिन ये क्या?
0: जब स्टीफन को ऐसे दौरे बार बार पड़ने लगे तो उन्हें लंदन के एक नामी अस्पताल में ले जाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने स्टीफन के माता पिता को बुलाया।
2: मिस्टर फ्रैंक, मैंने आपके बेटे के बारे में एक खास जानकारी देने के लिए आपको यहाँ बुलाया है।
3: सब कुछ ठीक तो है ना?
2: देखिए, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना

0: चाहता हूँ
1: जी।
0: आपके बेटे को मोटर न्यूरॉन डिजीज है।
1: मोटर न्यूरॉन डिजीज?
0: जी हाँ, और इसका अभी तक कोई इलाज संभव नहीं है।
1: डॉक्टर साहब, इस बीमारी में क्या होता है?
0: इस बीमारी में मस्तिष्क का सिग्नल मांसपेशियों को नहीं मिल पाता है, इसलिए शरीर के सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। बोलने और चलने फिरने में परेशानी होती है।
1: नहीं नहीं,
0: देखिए आप धीरज रखें, मैं ताकत की कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, क्या पता कोई चमत्कार हो जाए।
1: ओह गॉड, ओह गॉड।

0: लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। स्टीफन की बीमारी बढ़ती ही चली गई। उन्हें बोलने में बहुत परेशानी होने लगी थी। एक बार जब तबीयत बहुत खराब हुई तो उनके मित्र उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कह दिया कि वे अब अधिक से अधिक 2 वर्ष ही जी पाएंगे।
1: डॉक्टर के क्लिनिक से जब वे बाहर आए तो आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर था एक असाधारण संकल्प का भाव। उन्होंने कहा,

0: Beziehung.
1: उस समय सबने उनका मन रखने के लिए, दिलासा देने के लिए हाँ में हाँ मिला दी थी, पर आज पूरा विश्व जानता है कि जो कुछ उन्होंने कहा था वो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्होंने कर दिखाया।
2: उनकी बीमारी बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन इस हालत में भी सन 1965 में उन्होंने सर्वाधिक अंक लेकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त की।
3: साथियों, हम बड़े हर्ष के साथ घोषणा करते हैं कि स्टीफन हॉकिंग ने बेहद अच्छे अंकों से अपना शोध पूरा कर लिया है। उनके शोध का विषय था प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, यानी विस्तारित ब्रह्मांड की विशेषता। मेरा अनुरोध है कि वो सामने आकर सम्मान ग्रहण करें।

0: विश्वविद्यालय में वे एक चलता फिरता आश्चर्य माने जाते थे। जब उनसे ये पूछा गया कि वे इतनी कठिनाइयों के बीच अपना शोध और अध्ययन का काम कैसे कर लेते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया,
1: मेरी क्षमता, मेरी दिव्यांगता से अधिक मजबूत है। दिव्यांगता शरीर से अधिक मन में होती है।
2: जनवरी 1965 में ही नए साल के जश्न में स्टीफन हॉकिंग की मुलाकात मिस जेन वाइल्ड से हुई। वे अंग्रेजी साहित्य की प्रख्यात लेखिका और शिक्षिका थीं। मिस जेन वाइल्ड स्टीफन के खुशदिल स्वभाव, बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प शक्ति से बहुत प्रभावित हुईं।
0: वे जानती थीं कि भविष्य में स्टीफन का स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाएगा, लेकिन उन्होंने स्टीफन का साथ नहीं छोड़ा और वे विवाह बंधन में बंध गए। उनकी 3 संतानें हुईं। '85 में उनकी आवाज खो गई। अब बोलना उनके लिए असंभव हो चुका था। उनके सभी अंग धीरे धीरे स्थिर होने लगे थे, इसलिए स्वीडन में उनके लिए एक स्मार्ट व्हीलचेयर बनाई गई। कई प्रकार के उपकरण लगे हुए थे।
2: इस चेयर में एक विशेष उपकरण था जिसे स्पीच सिंथेसाइजर कहा जाता था। कीबोर्ड की सहायता से वे जो जो टाइप करते थे, स्पीच सिंथेसाइजर उन्हें शब्दों में बदल देता था।
0: इसी के जरिए वे पूरी दुनिया से बात करते थे और भौतिकी पर दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देते थे। लेकिन वे बोलते कैसे थे, ये जानना दिलचस्प होगा।
2: दरअसल उन्हें आवाज दी थी प्रोफेसर डेनिस एच क्लैट ने, जो संभाषण और श्रवण विज्ञान में एक अमरीकी शोधकर्ता थे। आइए प्रोफेसर डेनिस क्लैट से बात करके जानते हैं कि प्रोफेसर हॉकिंग का ये स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता था।
3: प्रोफेसर डेनिस
4: जी,
3: स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता है, आपने इसका विकास कैसे किया?
4: देखिए, प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यानों को भाषा में बदलने के लिए हमने सबसे पहले स्पीच सिंथेसाइजर के कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा उनकी सारी भाषा सिखाई।
3: ओह।
4: और फिर विज्ञान से संबंधित सारे तकनीकी शब्द भी कंप्यूटर की स्मृति में डाल दिए।
3: ग्रेट, धन्यवाद सर, ये तो सचमुच बहुत रोचक है। यानी प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग

0: व्याख्यान हमने आपकी आवाज में सुने
1: जी।
0: अद्भुत, इट्स रियली वंडरफुल। तो सुनाइए ना प्रोफेसर हॉकिंग को आपकी आवाज में।
1: तो लीजिए सुनिए।
2: Technology has transformed the outlook for the disabled. People like me can now move around independently, and they can communicate.
3: उन्होंने कुल 29 रचनाएं की, जिनमें पुस्तकें, शोध प्रबंध और विज्ञान लेख शामिल हैं। उनसे अंतरिक्ष समय, भारहीनता, शून्य गुरुत्वाकर्षण जैसे अंतरिक्ष के अनेक रहस्यों से पर्दा उठ गया और अनेक शोधों को गति मिली।
4: सापेक्षता का सिद्धांत, क्वांटम यांत्रिकी और अंतरिक्ष समय यानी स्पेस टाइम पर उनका काम हमेशा याद रखा जाएगा।
3: उनके सभी शोधों की यह विशेषता है कि ब्रह्मांड की व्याख्या के साथ साथ उन्होंने इसे विश्व पारिस्थितिकी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से भी जोड़ा है।
4: उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट पत्रिका में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा था,
5: यदि पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा गया तो 600 वर्षों के अंदर ये पृथ्वी आग का गोला बन जाएगी। जनसंख्या बढ़ने के कारण धरती पर ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से धरती का तापमान असीमित रूप से बढ़ेगा और धरती गर्म होकर लाल हो जाएगी।
3: उनके द्वारा लिखित किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम उस समय की सबसे ज्यादा समय तक बिकने वाली किताब बनी। तब इस किताब की बिक्री लगभग रिकॉर्ड 237 हफ्तों तक चली। एक और पुस्तक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी बहुत प्रसिद्ध हुई। उन्हें राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम सम्मान भी दिया गया था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।
4: विद्यार्थियों और शोध करने वालों को वे अक्सर कहते थे,
6: ऊपर सितारों की तरफ देखो, अपने पैरों के नीचे नहीं। जो भी देखते हो उसका अर्थ जानने की कोशिश करो, आश्चर्य करो, उत्सुक रहो और प्रश्न करो।
3: जनवरी 2001 में अग्रणी ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग जब भारत आए थे, उन्होंने कहा था,
7: इंडियंस आर सो गुड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स।
4: विश्व के दिव्यांग समुदाय के लिए प्रोफेसर हॉकिंग का अंतिम संदेश था,
8: यदि आप शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं तो मन को दिव्यांग ना होने दें।
3: ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में उनका देहांत हो गया। अपनी मृत्यु के समय वे सैद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान केंद्र में अनुसंधान के निदेशक थे। दाह संस्कार के बाद लंदन के वेस्टमिंस्टर एबी चर्च में

0: दिव्यांगता के खिलाफ अदम्य इच्छा शक्ति की ऐसी जंग छेड़कर अंतरिक्ष विज्ञान में सितारों की बुलंदियों को छूने वाले प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग, आपको हमारा नमन।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्टीफन हॉकिंग, और आइए इस कार्यक्रम के बाद आप सुनते हैं कार्यक्रम आग का गोला। इस पहली नुमा कार्यक्रम में सूर्य और सौर मंडल के बारे में मनोरंजक जानकारी दी गई है।
2: चलो बच्चों आ जाओ, पहली टाइम आ जाओ सब लोग आ जाओ। तो अब बिना देर करे शुरू करें पहली।
3: हाँ।
2: गुड़िया गौरव सब तैयार? वेरी गुड। तो ठीक है, ध्यान से सुनो आज की पहेली। मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ।
4: आग का गोला?
2: हाँ, मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ। दूजे काटे चक्कर मेरे लगे मैं चलता जाता हूँ। सर्दी गर्मी बनती मुझसे, मैं दिन रात बनाता हूँ। दो प्रकाश पर नहीं हूँ दीपक।

मजाक मजाक में लाल वाली, हरी वाली, लंबी वाली, सांवली वाली, गोरी वाली आपस में बांट लिया करते थे, जब अनजाने में ही किसी को अपना बना लेने का चलन था।

अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय शाम के 5 बजे हैं। अब हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। सभा की शुरुआत में प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज की सभा की और कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। पहले सुनिए आज की सभा के कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ देर बाद शाम 5:05 पर गोंडी बोली में होगा समसामयिक विषय पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार। हल्बी बोली में युवा श्रोता सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी शाम 5:10 पर। भीमसेन बघेल और साथियों का गाया हल्बी लोकगीत सुनिएगा शाम 6:35 पर। शाम 7 बजे कार्यक्रम बस्तर के स्वर का प्रसारण किया जाता है। ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम आम चौगाओं का समय होगा शाम 7:21 का। रात 8 बजे कार्यक्रम घलर में सुनिएगा जगार गीत, कलाकार होंगी मुरहीबाई और साथी। रात्रि 8:30 पर कार्यक्रम पीलामन काजे गोट केंद्रित होगा गोस्वामी तुलसीदास पर, प्रस्तुति होगी संतोष कुमार बघेल की। रात 9:15 पर कार्यक्रम नंजर में हम आपको सुनवाएंगे धनेश्वर दास से ली गई भेंट वार्ता, भेंट करता होंगे बलबीर सिंह कच्छ। रात्रि 9:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम खेल पत्रिका, इसमें आप सुनेंगे नमिता बघेल से बलबीर सिंह कच्छ की ली गई भेंट वार्ता। और रात 10 बजे फरमाइशी लोकगीतों का फोन इन कार्यक्रम लोक रस का प्रसारण किया जाएगा, प्रस्तुति होगी जयराम कवासी की, संयोजिका होंगी चंद्र ऋषि ठाकुर। ये थी जानकारी आज की सभा के कार्यक्रमों की और अब सुनिए कल की सभाओं के कार्यक्रमों के बारे में। कल सुबह 8:30 पर डॉक्टर की सलाह और सुबह 9 बजे बातों बातों में, ये सभी कार्यक्रम हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। रात 9:30 पर कार्यक्रम चित्र भारती हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों में प्रातः 6:05 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना का प्रसारण किया जाएगा। प्रातः 6:20 पर चिंतन आलेख और स्वर होगा मेघराज प्रकाश जैन का। श्री रामचरितमानस का गायन प्रातः 6:25 पर प्रसारित किया जाता है। कल प्रातः 6:35 पर और दोपहर 1:05 पर होगा कृषि समय की बेड़ा खड़ा चौगोट का प्रसारण। प्रातः 6:40 पर हुलहुली कार्यक्रम में सुनेगा सनाह पाड़, वादक कलाकार होंगे गणपति कड़ियारी और साथी। नमस्कार जगदलपुर, ये दैनिक कार्यक्रम हम लेकर आते हैं रोजाना सुबह 7:05 पर। इसके अंतर्गत काव्य सरिता में सुनेगा महेश सिन्हा से कविता पाठ और आनंद लीजिएगा मधुर गीतों की मधुरिमा का। सुबह 9:15 पर हम पेश करेंगे फिल्म संगीत एक ही फिल्म से सुबह 9:30 पर। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे फिल्म मवाली के गीत। सुबह 10 बजे आजीचो सगा, इस कार्यक्रम में सुनेगा डॉक्टर अखिलेश कुमार त्रिपाठी से बलबीर सिंह कच्छ की ली गई भेंट वार्ता। सुबह 10:30 पर गुरुदुम कार्यक्रम में सुनेगा शत्रुघ्न सिन्हा और साथियों के गाए छत्तीसगढ़ी लोकगीत एक ही कलाकार। सुबह 11 बजे कल का हमारा ये कार्यक्रम केंद्रित होगा मशहूर फिल्म निर्देशक राज खोसला पर। दिन में 11:30 पर गैर फिल्मी गीतों गजल का कार्यक्रम गुलदस्ता पेश किया जाएगा। दिन में 12 बजे फोन इन कार्यक्रम लोक रस का पुनः प्रसारण किया जाएगा। दोपहर 1:10 पर हम पेश करते हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन। दोपहर 2:30 पर प्रस्तुत किया जाएगा प्रायोजित कार्यक्रम हमारे मेहमान, इसके अंतर्गत श्री प्रवीण कुमार वर्मा जगदलपुर नगर निगम से अध्यक्ष से ली गई भेंट वार्ता, भेंट करता होंगी डॉक्टर मधु जैन और प्रस्तुति होगी चंद्र ऋषि ठाकुर की। शाम 5:10 पर युववाणी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। शाम 6:35 पर सुनिएगा कीचोराम और साथियों का गाया गोंडी गीत। बस्तर के स्वर कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7 बजे। शाम 7:30 पर कार्यक्रम प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी का प्रसारण होगा। रात 8 बजे कार्यक्रम जोनी उजर में सुनिएगा नीला और लोकगीत। रात्रि 8:30 पर कार्यक्रम पीलामन काजी गोट केंद्रित होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर, प्रस्तुति होगी संपत राम नाग की। आम चौरान आम चो जीवना, इस कार्यक्रम में रात 9:15 पर सुनेगा हल्बी नाटक रुक राय संग जीवना।

0: और रात्रि 10 बजे आदिवासी लोक वाद्य धुनों के कार्यक्रम पाड़ में सुनेगा करला कोटिन देवी पाड़ और धावड़ा वीर देव पाड़। वादक कलाकार होंगे पाकलू और साथी। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज की सभा के और कल की सभाओं के कार्यक्रमों का विवरण। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 5:05 हुए हैं। अब गोंडी बोली में प्रस्तुत है समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार।
1: समसामयिक विषय के आधारित कार्यक्रम संगे नाना शुक्लाल नेताम केंद्र नेता माँ व ईद कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सवेरे बस्तर संभाग तलापी दूर और अंदरूनी इलाके लगे माता योग अभ्यास कार्यक्रम पे केंद्रित 12वें राष्ट्रीय योग दिवस तबारी 21 जून दिया देश मेटे ते लगे माता योग अभ्यास कार्यक्रम नडुम छत्तीसगढ़ सबस्तर संभाग लापी दूर और अंदरूनी इलाके बने पहली बेरा योग अभ्यास कार्यक्रम लगा की दूर बस के माओवादी लोरक नवर्रेल कारण ते ईद कार्यक्रम किया ना आयो आंद वह ने अंत उन्द बीजापुर जिला उचुक अंदरूनी इलाका वने आंद अगा लोकुर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ते योग की आंद नतुन हुड़सी वातुर बस के माओवादी न गढ़ या कब्जा ते मत्तर जिला करेगुट्टा मटाते बने मात FOB ताड़ पाल ते तैनात सुरक्षा बल तोर अधिकारी और जवान लोर ईद दिया मिले माची योग अभ्यास की तुर ब्लैक पास्ट परोहिते बुंदाना आंद ईद हैंग हजार पीठ ऊंचा मट्टा बचके कुख्यात माओवादी लोकना सबली सुरक्षा गढ़मत्ता वर्षा 2025 ते अप्रैल मई ते सुरक्षा बल द्वारा चला की तुर ऐतिहासिक ऑपरेशन ब्लैक पास्ट ते माओवादी लोकना ईद गढ़ तुन खत्म की सी तुर ईग बचुक तो दिया चला की तुर ईद अभियान ते भारी मात्रा ते हथियार और नालुंग शौक ता ज्यादा IED जब्त की तुर ईद दुर्गम और संवेदनशील क्षेत्र ते मत्ता सुरक्षा केंद्र ते 21 जून ता दिया ईद योग शत लगा किया ना आत ईव शबोइना नडुम खास पोलो ईद मत्ता की समाज ता मुख्य धारा ते मलसी वाले आत्मा समर्पित माओवादी लोग बने ईद वर्षा लगे मात योग अभ्यास कार्यक्रम ते हिस्सा पैतूर अधिनते हरिकाश नाटेनलोरकुन वने योग तप्रति रुझान हुड़ला पुटतु बीजापुर ता जिला पंचायत संसाधन केंद्र ते लगे मात कार्यक्रम ते जनप्रतिनिधि अधिकारी कर्मचारी सुरक्षा बल और आम नागरिक लोर संगे संगे आत्मसमर्पित माओवादी लोर कुन हुड़ सरी कातुर ईद बेरते योग ता अलग अलग डेरक ने संगे ईदे नता आयना फायदा ता बारे ते जानकारी ही तुरीद बेरते आत्मसमर्पित माओवादी लोर रोजे योग किया ना और समाज ता मुख्य धारा ते मंजूर बेश जीवन जिए मायना तर क्रिया पैतूर ईदे लहकर कोंडानार जिला ता शासकीय आदर्श आवासीय कन्या महाविद्यालय कॉलेज परिसर ते लगा किलेर जिला स्तरीय सामूहिक योग अभ्यास कार्यक्रम ते देवकर गांव ते मंता पुनर्वास केंद्र ता पुनर्वासित माओवादी लोर वने हरिकाश हिस्सा पैतूर ईद बेराते सबोई लोर योग अभ्यास की स्वास्थ्य जीवन शैली अपना किया ना और योग ताना रोजे ता दिनचर्या ते हिस्सा बने मायना ता क्रिया पैतूर कार्यक्रम ते कंकेरे सांसद भोजराज नाग और बस्तर विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष लता उसेंडी पुनर्वासित माओवादी लोर कुन मिले मासी और उन पुनः जीवन शुरुआत क्यान काज शुभकामनाएं हेतु ईद पुनर्वास केंद्र से ईसा लिंगे 21 आत्मा समर्पित माओवादी मंत्र और कुन मुख्य धारा से जोड़े किया न और आत्मनिर्भर बना किया न काजे लाइवलीहुड कॉलेज का माध्यम से कौशल विकास और ट्रेनिंग ही अंतर या हिंद ही अनाप इवे ने ते मोर प्रशिक्षण थी लुरकुन असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन और मोर कुन टू व्हीलर सर्विस असिस्टेंट ट्रेनिंग ही अना की अंतर दूसरा 15 पुनर्वासित माने कुन जल्दी ही बढ़ाई राजमिस्त्री इलेक्ट्रीशियन सिलाई और गाड़ी चालक तसंगे अलग अलग व्यवसायिक ट्रेड ते टेलिंग हियाना आयार ईद वर्षा 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस विषय स्वस्थ आयु तकाजे योग मत्ता योग उन्द पुराना शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास आन ताना उत्पत्ति जन्म भारत ते आसमत्ता योग शब्द तुन संस्कृति ते लेह मातुर और इदेक अर्थांत जोड़े मायना और उन

0: नमस्कार संगवारी मन, आकाशवाणी जो विशेष कार्यक्रम युवाणी ने आपमन सपाई जो स्वागत है। आज फिर नुआ गोट धरुण भाती इलू से आपमन जो कंपेयर संगवारी मैं नूतन भारद्वाज
1: और मैं यहाँ गीता ठाकुर आशा करूँ से आपमन सपाए स्वस्थ और मस्त आशा होती। तो आज ही हमी असन विषय ने चर्चा करूँ दे जो शायद हर व्यक्ति जो जीवन ले जुड़े से विषय आए आधुनिक रिश्तों में कमिटमेंट की भूमिका।
0: आज जो विषय तो आज एक हटके आसे कायनिक कमिटमेंट पल्लो ने प्रतिबद्धता जो संबंध हर रिश्ता ले आसे, चाहे माता पिता और पीला मन चो रिश्ता रहो, दोस्ती चो रहो या फिर भाई बहन चो रहो। कमिटमेंट जो मतलब ही यही है कि कोनी रिश्ता के गंभीरता ले धरतर और उनकी निभातर जो जिम्मेदारी के स्वीकार करते रहे।
1: सत्य बल्लिस मके तो लगवे कि आज जो समय ने लोग रिश्ता तो झटके बना दे मानतर उनके निभातों का जे धैर्य कम होते जाओ है।
0: गीता आजकल असने ची सुनुक मिरो है कि एदा रिश्ता आगे जसन निहाय, छोटे छोटे गोट मनने वाले रिश्ता मन टूटून जावाय, तो के काय लागे से ये जो कारण काय हो सके दे।
1: मके तो लागवाय कि ये जो सबले बड़ी वजह रिश्ता मन ने कम होय से प्रतिबद्धता बल्लो ने कमिटमेंट आए। एवे जी बोले काय कि लोग रिश्ता तो बनावत मानतर उनके निभातों का जे धैर्य और समर्पण नी दिखावत।
0: गोर तो ते जो नंगत है मच मानना है कि कोनी बले रिश्ता जो शुरुआत आकर्षण ले हो सके थी मंत्र उनके लंबा समय तक बनाव संगातों का जे कमिटमेंट जो खूबे जरूरता से।
1: हाँ कमिटमेंट ही हुन आधार है जो रिश्ता मन के मुश्किल समय ने बले संभाल संगा पाए। जब लोग मन ये तय कर दे कि हुन हर परिस्थिति ने एक दूसर चो साथ दे दे तब हुन रिश्ता और जमकना रुआए।

0: सारी दोनों बनु बनु रहता से मगे तो लागू है कि कमिटमेंट जो मतलब तो चाहे संगी रह तो जो वादा नहीं बल्कि एक दूसर जो भावना के समझतर और हूँ जो सम्मान करते रह से
1: हाँ और ऐसे यही सम्मान विश्वास बनुआ है। बिना विश्वास जो कोनी ची रिश्ता रहो ज़्यादा समय तक टिकुक नहीं सके।
0: हाँ ये तो है और जानिस ची सोशल मीडिया जो दौर है एवे सोशल मीडिया ने बोले रोज जे चो काम धाम आप लो दिनचर्या ने काय काय कर सोत उनके बोले वीडियो चो रूप ने अपलोड कर सोत लोग मन असनी दूसर चो जीवना मन के दखून आप लो रिश्ता मन ले तुलना कर मुरिया बात।
1: हाँ मजो ख्याल ले तो ये तुलना कर तो बीती सही नु है। सब चो रिश्ता अलग रू है तुलना कर तो जो पलटा रिश्ता के बेहतर बना तो नहीं ध्यान दे तो रह से।
0: हाँ।
1: और कमिटमेंट जो मतलब यही है कि आमी आमचो रिश्ता के प्राथमिकता देऊं आय कसन।
0: हाँ गीता ये तो आए गोड तुई नंगत बलसी और गोटो गोड बलाई कि मतभेद होता रिश्ता मन का जे खराब आए मानतर मगे तो लागू आए कि मतभेद स्वाभाविक है कहीं खार यही सब ले रिश्ता जो असली मायने के समझ ही आए कसन।
1: मचो बले मान तो यही आए नूतन असल गोट नुआई की मतभेद आसे की नहीं बल्कि ए आई की हुन के सुलझातो कसन है। कमिटमेंट आम के मतभेद जो बात भले संगे रहतो और समाधान खुश तो प्रेरणा दिवाए।
0: खूबे सुंदर गोड बल्लीस गीता मच अनुसार कमिटमेंट कोटो बूटा जो देखभाल करतो सना यदि उनके समिया मया और ध्यान मिटते रहो तो लगातार फूलते फूलते रह दे आय कसन।
1: तुझे उदाहरण तो खूबे अच्छा रहे नूतन और अगर हुन बूटा चो देखभाल नहीं कर लो नहीं तो हुन धीरे धीरे कमजोर पड़ जाए दे रिश्ता मन संगे बले असनी हुआ है।
0: हाँ ये तो आए तो संगवारी मन आमी बलुक सकूँ कि आधुनिक रिश्ता ने कमिटमेंट पहले खूब महत्वपूर्ण होली से।
1: हाँ विश्वास सम्मान संवाद और जिम्मेदारी ये सब आए कमिटमेंट जो हिस्सा है और यही रिश्ता के मजबूत बना हुआ है।
0: ये तो अच्छा गोट सांगलिस तुई तो संगवारी मन ये तो रही आजी चो चर्चा मंतर आमी तुमचो काजे काय काय कार्यक्रम ने आनलू से एके बले जानवा।
1: आजी आमी तुमचो काजे आनलू से शीर्षक गीत जोन थाने तुम्ही सुना से मन के हरिक लागतो असन फिल्मी गीत
0: और आनलू से ज्ञान ध्यान चो गोट बात इची संगे संगे आसे तुमचो काजे गोटो वार्ता
1: आली नूतन। आजी चो कार्यक्रम के मूर करूँ मंतर मूर कर तो पहले सुनू ये जाला।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: हाँ तो संगवारी मन आज जो शीर्षक गीत जो शीर्षक है पल बल्लो ने समिया
1: शीर्षक गीत जो पहल गीत सुनो फिल्म लगे रहो मुन्ना भाईली ये गीत के सोनू निगम और श्रेया घोषाल आप लोग आवाज ले सजाला से।
0: ये गीत फिल्म जो सबले मधुर और सुकून देते बीती रोमांटिक गीत है। गीत ने अभिनेत्री और अभिनेता जो बीच ने पनपतो प्यार और हनुमान जो भावना के खूबे गहराई ले सांगला से।
1: शांतनु मैत्रा जो संगीत और श्वानंद किरकिरे जो बोल गीत के बेहद खास और सदाबहार बनाए से तो संगवारी मन यह सुनो ये गीत।

0: गीत मंचो सिलसिला तो असली चीज चलते रहे थे नहीं नूतन मानतर अदाय गीत के डंडिक थे बहु और सुनू वार्ता
1: तो संगवारी मन आप मन सुना से ये वार्ता तरुणा मोरे चो आवाज ने साइबर क्राइम के प्रति जागरूकता चो गोटके तो सुनो देखो।
2: नमस्कार दोस्तों, मेरा आज का विषय है साइबर क्राइम के प्रति जागरूकता। आज मानव जाति बेहद आधुनिक हो चुका है, फिर चाहे हम बात करें बिना ईंधन से चलने वाले वाहनों की या सोलर वाहनों की या फिर मनुष्य कार्य को आसान बनाने वाले रोबोट एवं कंप्यूटर एप्लीकेशन की। आज खरीदारी से लेकर बिजली का बिल, बड़े बड़े संस्थानों में प्रवेश फॉर्म भरना या प्रतियोगी परीक्षा फॉर्म भरना या बैंक से रकम निकालना अथवा जमा करना, ईमेल करना इत्यादि, इन सभी कार्यों में हर व्यक्ति आज अपनी जानकारियां एवं दस्तावेज का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या आप इस तथ्य से परिचित हैं कि आपकी जानकारियों का गलत इस्तेमाल हो सकता है? अब हम जानते हैं हैकिंग और हैकर के बारे में। हैकिंग किसी कंप्यूटर में मौजूद जानकारी को उसके सुरक्षा प्रणाली तोड़कर लेने की प्रक्रिया को हैकिंग कहते हैं। हैकर वे व्यक्ति होते हैं जो इन जानकारियों को लेते हैं उस कंप्यूटर की सुरक्षा प्रणाली को तोड़कर। इन व्यक्तियों को, जिन्हें हम हैकर कहते हैं, उन्हें कंप्यूटर की सुरक्षा प्रणाली का विशेष ज्ञान होता है। हैकर दो प्रकार के होते हैं। पहला, एथिकल हैकर, सरकार द्वारा अधिकृत, जिन्हें देश की साइबर सुरक्षा के लिए रखा जाता है। दूसरा, गैर अधिकृत हैकर, जो अनैतिक रूप से जानकारियों की चोरी कर लेते हैं, अनएथिकल हैकर जिन्हें हम कहते हैं। दोस्तों, जानकारियों की चोरी और उसका गलत इस्तेमाल को ही साइबर क्राइम कहते हैं। आप जो जानकारियां अथवा दस्तावेज या सोशल साइट्स में चैट करना या अपनी भावनाओं और मनोस्थिति को व्यक्त करने वाले फोटो शेयर करना, मोबाइल नंबर, घर का पता, नाम इत्यादि जैसे जानकारियों का इस्तेमाल करते हैं, उसकी चोरी भी हो सकती है। आपके द्वारा कंप्यूटर में डाली गई आपकी जानकारी जब आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तब हैकिंग के माध्यम से दूसरे व्यक्ति के द्वारा चुरा ली जाती है, जो एक गंभीर समस्या है। और यह जानकारी जिन व्यक्तियों के पास जाती है, उन्हें हम इलीगल साइबर हैकर कहते हैं। दोस्तों, हैकर द्वारा चोरी की गई जानकारी को हैकर स्वयं इस्तेमाल कर सकता है, जैसे वह आपकी बैंक खाते की जानकारी के माध्यम से आपके बैंक खाते में मौजूद रकम को चुरा सकता है। इसके अलावा आपकी कुछ निजी जानकारियां जैसे नाम, पता, शैक्षणिक योग्यता, आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर, वोटर आईडी नंबर, एटीएम कार्ड नंबर इत्यादि जैसी जानकारियों को चंद रुपयों के लिए आतंकियों और शत्रु राष्ट्र को बेच सकता है। और इसके दुष्परिणाम यह हो सकते हैं कि आपकी पहचान को आतंकी अपनी पहचान बनाकर देश की सरहद में घुसपैठ कर सकता है और आपके नाम, पता इत्यादि को अपना नाम पता बताकर अपने आपराधिक गतिविधियों को पूरा कर सकता है और देश में अशांति का वातावरण बना सकता है। यदि हैकर आपकी जानकारी किसी व्यक्ति को देता है, तो इसका इस्तेमाल चोरी, डकैती, अपहरण, हत्या जैसे अपराध करना अपराधी के लिए बेहद आसान हो जाता है। इसी के लिए दोस्तों, अपनी जानकारियों को सोच समझ कर ही सोशल साइट में शेयर करें एवं निजी जानकारी या दस्तावेज किसी भी अनजान व्यक्ति को न दें। किसी अनजान साइट में जाने पर अपनी जानकारी देने से बचें। दोस्तों, कई बार आपके पास अनजान कॉल आते होंगे जिसमें कहा जाता है कि आपके एटीएम कार्ड की समयावधि समाप्त हो चुकी है, इस समयावधि को बढ़ाने के लिए कार्ड की जानकारी दें या आपको लुभावनी प्रलोभन जैसे आप लॉटरी जीत चुके हैं, जैसे बहुत सारी प्रलोभन दिए जाते हैं और आपके बैंक खाते की जानकारी मांगी जाती है। तो दोस्तों, अपने बैंक खाते, एटीएम कार्ड की जानकारी किसी को न दें। अपने परिवार से संबंधित किसी भी फ़ोटो को सोशल साइट में शेयर करने से पहले विचार करें और हर साइट में आपकी जानकारी को न दें। किसी भी व्यक्ति को जानकारी देने से पहले

0: ले उसकी जानकारी रखें। इलीगल साइबर हैकिंग एक अपराध है। किसी भी व्यक्ति की जानकारी अथवा डाटा की चोरी करना और उसका गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल करना गलत है। इसके लिए भारत सरकार द्वारा आईटी एक्ट 2008 के तहत साइबर अनएथिकल हैकिंग के अपराध के लिए दंड का प्रावधान है। दोस्तों, जब आप अपना ईमेल अकाउंट बनाते हैं या किसी सोशल साइट में एक नया अकाउंट बनाते हैं तो कंप्यूटर के द्वारा आपसे अनुमति मांगी जाती है। उसमें अलाउ या डिनाई का ऑप्शन आता है। वह ये पूछता है कि आपके द्वारा जानकारी जो दी जा रही है, जैसे नाम, पता, ईमेल नंबर या परिवार से संबंधित कोई जानकारी, तो ये सभी जानकारी कंप्यूटर अपने से जुड़े हुए अलग साइटों को दे देता है। तो जब भी आप इन जानकारियों को दें या अलाउ करें तो सोच समझ कर ही करें, अन्यथा आपकी जानकारी गलत साइट में जा सकती है जो आपके लिए घातक हो सकता है। तो दोस्तों, सतर्क रहें, अपनी जानकारी अनावश्यक एवं नियम के विरुद्ध किसी को भी न दें। सोशल साइट में जानकारी डालने से बचें। नमस्कार।
1: संगवारी मन एबे सुनते रहलू वार्ता साइबर क्राइम के प्रति जागरूकता। ये जो गोट करते रहला वार्ताकार रहो तरुणा मोरे। फिर ले सुनू गीत मन के बॉलीवुड फिल्म काइट्स जो बेहद लोकप्रिय गीत। ये बेहतरीन गीत के

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: नूतन, गीत गोविंद मन तो चलते जी रह देने। मानतर आमचो संगवारी मन का जे ज्ञान ध्यान जो गुड बात बोलतो आनलू से ये के सांगू।
3: हाँ, तो संगवारी मन, बरसात जो पहिल फुहार जहाँ धरती के सुकून दिवाए, हुतई मानसून आपलो संगे प्रकृति ने नुआ ऊर्जा और जीवना जो संदेश बल धरु निवाए। जमाज वाले अमर लिसे तो क्यों ना आज जी ज्ञान ध्यान चो गोट ने छत्तीसगढ़ चो जलवायु ले जोड़ लो गोट बात के जानुआ।
2: तो संगवारी मन, छत्तीसगढ़ जो जलवायु मुख्य रूप ले उष्ण कटिबंधी आए, इथाने मुख्य रूप ले तीन प्रकार जो मौसम हुआ है। आपन तो जाना सी हुनाए गर्मी बलों ने जेठ चमास शीतकार।
3: छत्तीसगढ़ राज्य चो मध्यवर्ती भाग ने बंगाल चो खाड़ी ले 400 किलोमीटर चो दूरी ने स्थित आसे। कर्क रेखा भारत चो बीच ले होन गेली से, जे चो कारण ले ये छे

0: क्षेत्र उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु जो अंतर्गत ईवाई। ये भूभाग जो जलवायु मुख्य रूप ले उष्ण और आर्द्र प्रकार जो है।
1: अदाय गोटाए छत्तीसगढ़ जो नदी अव्वा तंत्र जो भारत ने नदी तंत्र गोटोक जटिल और विस्तृत नेटवर्क आए जो न केवल देश जो कृषि उद्योग और पेयजल आपूर्ति का जो महत्वपूर्ण है बल्कि सांस्कृति और धार्मिक दृष्टिकोण लेवल विशेष महत्व संगावाए।
0: छत्तीसगढ़ ने पांच प्रकार जो नदी अपवाह तंत्र आसो तो जो थाने सबले बड़े आए महानदी अपवाह तंत्र, फिर आए गोदावरी अपवाह तंत्र, हुंचल आए सोनगंगा अपवाह तंत्र, फिर ब्रह्मणी अपवाह तंत्र होली, हुंचल सबले छोटे आए नर्मदा अपवाह तंत्र।
1: सबले पहला है महानदी अपवाह तंत्र। महानदी जो उद्गम धमतरी जिला जो सिहावा पर्वत ले होली से शिवनाथ हसदो पैरी
0: सोनपुर जसन नदी मने जो सहायक नदी आत। महानदी छत्तीसगढ़ जो 11 जिला मन ले होम जावाए एक छत्तीसगढ़ जो जीवन रेखा बल बलुआत। गोदावरी अपवाह तंत्र इचो विस्तार मुख्य रूप ले बस्तर संभाग ने आसे इंद्रावती शबरी और शंकनी टंकनी जसन नदी ये तंत्र जो प्रमुख नदी आत। इंद्रावती नदी आगे जाऊन बीजापुर जो भद्रकाली लगे जाऊन भाती गोदावरी संगे मिलन जावा।
1: सोनगंगा अफवा तंत्र
0: रिहंद बनास गोपन कन्हार जसन नदी मन ये तंत्र जो हिस्सा आत। ये नदी मन सोन नदी ने मिलवात और आगे जाऊन भाती ये सोन नदी गंगा नदी ने मिलवाए।
1: नर्मदा अपवाह तंत्र इचो विस्तार छत्तीसगढ़ जो उत्तर पश्चिम सीमावर्ती भाग ले आसे ताड़ा और बंजर।
0: ताड़ा और बंजर और आखिरी है ब्रह्मणी नदी जो न कई छोटे नदी मन ले उड़ीसा ने जाऊन भाती ब्रह्मण नदी तंत्र जो हिस्सा बनवाए और बंगाल जो खाड़ी ने जाऊन मिलवाए। तो संगवारी मन ये तो रही आज जो आंचो ज्ञान धान चो गोट मन इधर फिर गीत मन बाटे मूर करूँ दखूँ
1: नूतन।
0: हाँ
1: गीत मन के सुनते रहो नहीं कितरो हरिक लागते रहो नहीं।
0: हाँ का
1: तो सुनु गीत फिल्म क्योंकि ले ये गीत मौसम फूल और प्रकृति जो माध्यम ले प्यार जो गहराई के दर्शाए से।
0: ये गीत के आप लोग मधुर स्वर दिला से उदित नारायण और अलका याग्निक, संगीत बदकरला से हिमेश रेशमिया और गीत के लिखला से समीर। तो या सुनो ये गीत के

0: जीएसटी काउंसिल ने बीमा पर लगने वाले 18% टैक्स को घटाकर जीरो कर दिया है। ऐसे में जीवन बीमा लेने वालों को अब सिर्फ इंश्योरेंस का प्रीमियम ही भरना होगा और इस पर कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा। ये हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों के लिए बड़ा फायदा है क्योंकि LIC को पहले से ही इनकम टैक्स में छूट मिली हुई है। वहीं अब GST भी हटने से बीमा लेना फायदे का सौदा होगा।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्सक्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: अगला गीत है फिल्म एक विलन ले। स्वर आए अरिजीत सिंह, जो गीतकार और संगीतकार आत मिथुन।
4: एक विलन मोहित सूरी जो निर्देशन ले बनलो फिल्म है। ये फिल्म 2014 नहीं रिलीज होन रही। ये फिल्म के फिल्म फेयर अवार्ड और आईफा अवार्ड बले मिरुन रली। तो संगवारी मन सुनुंदा को ये गीत के बले।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: संगवारी मैन, इधर अगला गीत सुना से आप मन फिल्म ब्लैकमेल ले, किशोर कुमार जो आवाज ने। गीतकार आत राजन कृष्ण, संगीतकार आत कल्याण जी आनंद जी। तो सुनो ये गीत के।

हाँ संगवारी मन, इधर अगला गीत सुनाऊं दे आप मन की आमी फिल्म दिल है बेताब ले, कृष्ण कविता कृष्णमूर्ति और उदित नारायण चो आवाज ने, गीतकार आनंद बख्शी और संगीत ले सजाला से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। तो सुनो दखो ये गीत के।

0: हाँ तो संगवारी मन आम्ही आशा करू से तुम्ही सपाय के आजीचो युवाणी कार्यक्रम पसंद दिली होती
1: हिदाय आमचो जातो समया बले होली से तो आजी का जी आमके दिया विदा मैं आप मंचो कंपेयर संगवारी नूतन भारद्वाज
0: और मैं गीता ठाकुर शुभ संध्या
1: जोहार।

0: अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी हल्बी बोली में। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय शाम के 6 बजने वाले हैं। अब हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा।

0: करेगा या हम नसीब पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
1: श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1,18,00,000 किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही अपने आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज कहा कि AI नवाचार, पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि AI विश्व में बदलाव लाने और व्यक्तियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए तैयार है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यी जांग दे थापा से मुलाकात की। चर्चा शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर केंद्रित रही। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में सभी राज्य विद्युत नियामक आयोगों और संयुक्त विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्षों के साथ नियामक मंच की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कहा कि विश्वसनीय गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, शिकायतों का त्वरित निवारण और व्यापार करने में सुगमता तथा जीवन यापन में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए एक पारदर्शी, पूर्वानुमानित और उत्तरदायी नियामक ढांचा अत्यंत आवश्यक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को लंदन में आयोजित वार्षिक यूके इंडिया पुरस्कार में भारत और ब्रिटेन के संबंधों को उन्नत बनाने में असाधारण नेतृत्व के लिए विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान सरकारों, व्यवसायों, शिक्षाविदों, संस्कृति और जीवंत प्रवासी समुदाय के उन सभी सेतु निर्माताओं का है जो दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने में निरंतर योगदान दे रहे हैं। श्री गोयल ने कहा कि 15 अगस्त से प्रभावी होने वाला भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता ब्रिटिश संसदीय इतिहास में सबसे तेजी से लागू होने वाला व्यापार समझौता बन जाएगा। कोलकाता के तारातला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए SIT का गठन किया है। बचाव अभियान जारी है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली प्राथमिकी में नामजद 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये प्राथमिकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल की सिफारिश के बाद दर्ज की गई थी। बेलफास्ट में 2 मैचों की T20 क्रिकेट मैच भारत और आयरलैंड के बीच खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर यह आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय शाम के 6:05 हुए हैं।

0: माटी की सौंधी खुशबू के साथ,
1: पवन के ठंडे झोंके के साथ
0: हिलोरे लेगी
1: आकाश की वाणी।
0: आकाशवाणी
2: विज्ञापन के लिए संपर्क करें आकाशवाणी जगदलपुर आकर,
0: या फोन करें 222150 या 222400,
1: 222150 या 222400।
3: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय शाम के 6:10 होने को हैं। अब छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे हैं।
4: छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
5: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग किरण वर्मा के जय जोहार। अब सुनो आज के प्रमुख समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नशा के खिलाफ एकजुट होकर लड़े के आह्वान करें। मुख्यमंत्री ह आज नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण और अधोसंरचना विकास मंडल के नवा लोगों के विमोचन करें। और प्रदेश में यात्री बस के सुरक्षा

श्री चौधरी हा युवा मन ले आग्रह करीन कि ओमन केवल नौकरी ढूंढे तक सीमित झन रहे बल्कि नवाचार और उद्यमिता के दिशा में घलो आगू बढ़े। संग्रा विश्व स्तरीय स्टार्टअप और तकनीकी कंपनी बनाए के लक्ष्य रखें। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाश

0: अर्थाः: गृहमन्त्री अमित शाहः मादक द्रव्यानां विरुद्धं संयुक्त संघर्षस्य आह्वानं कृतवान्। तेन प्रतिपादितं यत् मादक द्रव्यानां विभीषिका राष्ट्रिय सुरक्षायाः यूनां भविष्यस्य कृते च संकटं जनयति। अयोध्यायाः राम मंदिर दान राशि स्तेय प्रकरणे अष्टौ जनाः निगडिताः। पैक सिलिका संधौ कृत्रिम बुद्धिमत्ता आपूर्ति श्रृंखलायै भारतेन सह चतुस्त्रिंशत् देशानां हस्ताक्षरं जातम्। मुहर्रम पर्वणि प्रधानमन्त्रिणा हजरत इमाम हुसैनस्य त्यागाः संस्मृताः। अपि च क्रीडावार्तासु: यूएस ओपन बैडमिंटन प्रतियोगितायां भारतस्य युवा क्रीडकः रौनक चौहानः चीनी ताइपे क्रीडकं चौ तिएनचेन इत्यमुं पराजित्य प्रागुपान्त्य चक्रं प्राविशत्। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन अद्य मादकद्रव्यानां विरुद्धं संयुक्तसङ्घर्षस्य आह्वानं विहितम्। मादकद्रव्यानां प्रकोपः राष्ट्रियसुरक्षायै सामाजिकस्थिरतायै आर्थिकहिताय यूनां देशस्य च भविष्याय भयं जनयति। सः आध्यात्मिकनेतृभ्यः युवभ्यः मातृभ्यः अस्य सङ्घर्षस्य कृते एकस्मिन् मञ्चे आगत्य कार्यं कर्तुं च आग्रहम् अकरोत्। श्रीशाहः नवदिल्ल्यां नार्को कोऑर्डिनेशन केन्द्रस्य दशमशीर्षस्तरीय सभाम् अभिसम्बोधयन् एतानि वक्तव्यानि प्रायच्छत्।
1: आज हमारा देश नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
0: श्री शाह अवोचत यत् चतुरुत्तरद्विसहस्रतः चतुर्दशाधिकद्विसहस्रपर्यन्तम् अधिकारिणः प्रायः 26 लक्ष किलोग्राममितं संश्लेषित मादकद्रव्याणि गृहीतवन्तः। तस्य अपेक्षया 14

अनुसारं द्वाभ्यां मन्त्रिभ्यां भारत दक्षिण कोरिया सम्बन्धेषु नूतन गतिशीलतायाः स्वागतं कृतम्। सहैव भारत दक्षिण कोरिया विशेष रणनीतिक सन्धिम् इतोपि अग्रे नेतुम् अविरतं सम्पर्के स्थातुं सहमतिः प्रकटीकृता। भारतस्य रौनक चौहानेन अद्य फुटलन नगरे यूएस ओपन बैडमिंटन प्रतियोगितायां चीनी ताइपे इत्यस्य पुरुष एकलस्य क्रीडकं चाउ टियेन चेन इत्येतं 1:17, 6:20, 4:24 अंकैः पराभूय प्रागुपान्त्य चक्रीय द्वन्द्वे पदार्पणं कृतम् इति वार्ताः।

मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। आप हमें न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर और FM बैंड 100.1 मेगा हर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। शाम के 6:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज की सभा के शेष और कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। अब से कुछ देर बाद शाम 6:35 पर आप सुनेंगे भीमसेन बघेल और साथियों का गाया हल्बी लोकगीत। शाम 7 बजे कार्यक्रम बस्तर के स्वर का प्रसारण किया जाता है। ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम आमचो गांव का समय होगा शाम 7:21 का। रात 8 बजे कार्यक्रम घलर में सुनिएगा जगार गीत। कलाकार होंगी मुरहीबाई और साथी। रात्रि 8:30 पर कार्यक्रम पीलामन काजे गोट केंद्रित होगा गोस्वामी तुलसीदास पर। प्रस्तुति होगी संतोष कुमार बघेल की। रात 9:15 पर कार्यक्रम नंजर में हम आपको सुनवाएंगे धनेश्वर दास से ली गई भेंट वार्ता। भेंट करता होंगे बलबीर सिंह कच्छ। रात्रि 9:30 पर सुनेगा कार्यक्रम खेल पत्रिका। इसमें आप सुनेंगे नमिता बघेल से बलबीर सिंह कच्छ की ली गई भेंट वार्ता। और रात 10 बजे फरमाइशी लोकगीतों का फोन इन कार्यक्रम लोक रस का प्रसारण किया जाएगा। प्रस्तुति होगी जयराम कवासी की। संयोजिका होंगी चंद्र ऋषि ठाकुर। ये थी जानकारी आज की सभा के शेष कार्यक्रमों की। और अब सुनिए कल की सभाओं के कार्यक्रमों के बारे में। कल सुबह 8:30 पर डॉक्टर की सलाह और सुबह 9 बजे बातों बातों में, ये दोनों कार्यक्रम हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। रात 9:30 पर कार्यक्रम चित्र भारती हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं। प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों में प्रातः 6:05 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना का प्रसारण किया जाएगा। प्रातः 6:20 पर चिंतन आलेख और स्वर होगा मेघराज प्रकाश जैन का। श्री रामचरित मानस का गायन प्रातः 6:25 पर प्रसारित किया जाएगा। स्वर होगा जगजीत सिंह का और संगीत निर्देशक होंगे सतीश भाटिया। कल प्रातः 6:35 पर और दोपहर 1:05 पर होगा कृषि समय की बेड़ा खाड़ा चौकोट का प्रसारण। प्रातः 6:40 पर हुलहुली कार्यक्रम में सुनिएगा सना पाड़। वादक कलाकार होंगे गणपति कड़ियारी और साथी। नमस्कार जगदलपुर, ये दैनिक कार्यक्रम हम लेकर आते हैं रोजाना सुबह 7:05 पर। इसके अंतर्गत काव्य सरिता में सुनिएगा महेश सिन्हा से कविता पाठ और आनंद लीजिएगा मधुर गीतों की मधुरिमा का। सुबह 9:15 पर हम पेश करेंगे फिल्म संगीत एक ही फिल्म से सुबह 9:30 पर। इसमें आप सुनेंगे फिल्म मवाली के गीत। सुबह 10 बजे आजी चोसा गाय इस कार्यक्रम में सुनिएगा डॉक्टर अखिलेश कुमार त्रिपाठी से बलबीर सिंह कच्छ की ली गई भेंट वार्ता। सुबह 10:30 पर गुड़दुम कार्यक्रम में सुनिएगा शत्रुघ्न सिन्हा और साथियों के गाए छत्तीसगढ़ी लोकगीत एक ही कलाकार। सुबह 11 बजे कल का हमारा ये कार्यक्रम केंद्रित होगा मशहूर फिल्म निर्देशक राज खोसला पर। दिन में 11:30 पर गैर फिल्मी गीतों गजल का कार्यक्रम गुलदस्ता पेश किया जाएगा। दिन में 12 बजे फोन इन कार्यक्रम लोकरस का पुनः प्रसारण किया जाएगा। दोपहर 1:10 पर हम पेश करते हैं फरमाइशी फिल्म गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन। दोपहर 2:30 पर प्रस्तुत किया जाएगा प्रायोजित कार्यक्रम हमारे मेहमान। इसके अंतर्गत श्री प्रवीण कुमार वर्मा

जगदलपुर नगर निगम अध्यक्ष से ली गई भेंटवार्ता सुनिएगा। भेंटकर्ता होंगी डॉक्टर मधु जैन और प्रस्तुति होगी चंद्र ऋषि ठाकुर की। शाम 5:10 पर युवाणी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। शाम 6:35 पर सुनिएगा कीचोराम और साथियों का गाया गोंडी गीत, बस्तर के स्वर कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7:00। शाम 7:30 पर कार्यक्रम प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी का प्रसारण होगा। रात 8:00 कार्यक्रम जोनी उजर में सुनिएगा नीला और साथियों का गाया हल्बी लोक गीत। रात्रि 8:30 पर कार्यक्रम पीला मन का जगोट केंद्रित होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर। प्रस्तुति होगी संपत राम नाग की और आमचो रान आमचो जीवना। इस कार्यक्रम में रात 9:15 पर सुनिएगा हल्बी नाटक रुकुराई संग जीवना। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज की सभा के शेष और कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है हल्बी लोकगीत। गायक कलाकार हैं भीमसन बघेल और साथी।

0: अभी आप सुन रहे थे भीमसेन बघेल और साथियों का गाया हल्बी लोकगीत। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। अब हिंदी में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करते हैं।
1: मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
2: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
1: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
2: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
3: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
4: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
2: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
5: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
2: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
5: आकाशवाणी से।
3: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
6: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में यूसीसी लागू करने के लिए कमेटी का गठन कर लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया। प्रदेश में परिवहन विभाग ने सभी बसों में वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य किया और आज छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न भागों में मुहर्रम श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू

0: की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि यूसीसी का प्रारूप तैयार करने के लिए उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित कमेटी हर वर्ग के बीच जाकर रिपोर्ट तैयार करेगी।
1: यूसीसी लागू होगा हमारे छत्तीसगढ़ में और इसके लिए कमेटी का गठन हो गया है। रिटायर जज मैडम देसाई हैं, उनके अध्यक्षता में गठन हुआ है। अब वो लोगों के बीच में, हर वर्ग के बीच में जाके अपना रिपोर्ट देंगे और उसके बाद यूसीसी लागू होगा।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है। उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और महिलाओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की। श्री शाह ने यह बात आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी NCORD की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए कही।
2: आज हमारा देश नार्कोटिक्स के खिलाफ

0: महिलाओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की। श्री शाह ने यह बात आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी NCORD की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए कही।
1: आज हमारा देश नार्कोटिक्स के खिलाफ

₹5,000 होगी। पासपोर्ट की अन्य श्रेणियों में भी शुल्क में बढ़ोतरी की गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नवा रायपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण और अधोसंरचना विकास मंडल के नवीन लोगों का विमोचन किया। इस अवसर पर वर्ष 2025 के आवास मेले में मकान बुक करने वाले हितग्राहियों को लकी ड्रॉ के माध्यम से पुरस्कार वितरित किए गए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने लोगो तैयार करने वाले अंशुल कश्यप को भी प्रतियोगिता की राशि के रूप में ₹2,50,000 का चेक सौंपा। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि गृह निर्माण मंडल अब अधोसंरचना विकास के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिससे प्रदेश के विकास को नई गति मिलेगी। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष दो वर्षों में मंडल ने लगभग 7,388 संपत्तियों का विक्रय कर 1,532 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है। कार्यक्रम में आवास और पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि अब किसी भी नई आवासीय परियोजना का निर्माण तभी प्रारंभ होगा जब पर्याप्त बुकिंग सुनिश्चित हो जाएगी, जिससे अनावश्यक निर्माण और वित्तीय जोखिम से बचा जा सके। मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंहदेव ने बताया कि भविष्य में मांग आधारित गुणवत्तापूर्ण और वित्तीय रूप से व्यावहारिक परियोजनाओं पर विशेष जोर दिया जाएगा। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने प्रदेश के कई विभिन्न नगरीय निकायों के लिए एल्डरमैन की नियुक्ति की है। विभाग की ओर से रायपुर और सरगुजा संभाग के 9 जिलों के 62 नगरीय निकायों में 252 एल्डरमैन नियुक्त किए गए हैं। नगरीय निकायों में एल्डरमैन मनोनीत पार्षद के रूप में कार्य करते हैं। वे निकाय की बैठकों में भाग लेकर स्थानीय समस्याओं और विकास कार्यों पर सुझाव देते हैं। प्रदेश में यात्री बसों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए परिवहन विभाग ने सभी बसों में वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस यानी VLTD लगाना अनिवार्य कर दिया है। परिवहन सचिव ने बस संचालकों को 15 दिनों के भीतर बिना VLTD वाली बसों में उपकरण लगाने और बंद उपकरणों को चालू करने के निर्देश दिए हैं। नियम का पालन नहीं करने वाले संचालकों पर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने युवाओं का आह्वान किया है कि वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI और नई तकनीकों से भयभीत होने के बजाय उन्हें अपने भविष्य के निर्माण का सबसे बड़ा अवसर माने। श्री चौधरी ने यह बात रायपुर में महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवसर चुनौतियां और भविष्य का प्रभाव विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में कही। एंटी करप्शन ब्यूरो ACB ने बेमेतरा जिले के थान खमरिया थाने के प्रधान आरक्षक अजय लहरे को ₹15,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ACB की टीम आरोपी से पूछताछ कर में जुटी हुई है। वहीं ACB की टीम ने बिलासपुर में रतनपुर तहसील के लारपुर हरका पटवारी को भी ₹25,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। पटवारी पर नक्शा बटांकन के लिए रिश्वत लेने का आरोप है। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में इस बार 1 जुलाई से लागू होने वाले VVGRAMG योजना पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा से ली गई भेंटवार्ता का प्रसारण किया जाएगा। इसका प्रसारण कल 27 जून को आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा FM और प्राइमरी चैनल पर सुबह 9 बजे से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। प्रदेश से माओवाद की समस्या खत्म होने के बाद अब सुरक्षा बल के जवान माओवादियों द्वारा छिपाई गई सामग्रियों की बरामदगी में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में नारायणपुर जिले के टेकला के जंगलों से इंसास SLR 303 राइफल समेत भारी मात्रा में गोला बारूद और विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। इसके अलावा छोटे डोंगर के तोयामेटा जंगल पहाड़ी से भी माओवादियों द्वारा छिपा कर रखी गई ₹24,00,000 नगद राशि बरामद की गई है। आज छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न भागों में मुहर्रम श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। करबला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में मुहर्रम मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर संदेश जारी कर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। उन्होंने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। मुहर्रम के मौके पर राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई शहरों में ताजिए निकाले जा रहे हैं। रायपुर के करबला में भी हजरत हुसैन की कुर्बानी को याद करते हुए आज रात मजलिसों यानी धार्मिक बैठकों का आयोजन किया जाएगा। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 2-3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रदेश के बाकी हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। वहीं कल 27 जून से राज्य में मानसून की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने आगामी

दिनों तक प्रदेश के कुछ इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी है। इस बीच बलरामपुर जिले के कंदरी गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से दो युवकों की मौत हो गई। बारिश से बचने के लिए ये युवक पेड़ के नीचे खड़े थे। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी रायपुर की ओर से कल जगदलपुर में वार्तालाप कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम का विषय सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 12 वर्ष, नक्सलवाद से विकास और विश्वास की ओर बढ़ता बस्तर रखा गया है। सक्ती जिले के जोंगरा गांव में आज दो अज्ञात लोगों ने एक युवती को गोली मार दी है, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जाता है कि दोनों युवक मोटरसाइकिल पर पहुंचे थे और पता पूछने के बहाने युवती पर हमला कर दिया। सुशासन तिहार के दौरान मिली शिकायत पर कार्रवाई करते हुए सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला कलेक्टर ने पटवारी बद्री प्रसाद साहू को निलंबित कर दिया है। धमतरी जिले के मगरलोड थाना क्षेत्र स्थित कपालफोड़ी गांव में तालाब में नहाने के दौरान डूबने से दो बच्चियों की मौत हो गई। जांजगीर के प्रकाश इंडस्ट्रीज में काम करने के दौरान ऊंचाई से गिरकर एक ठेका मजदूर की मौत हो गई। और जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र द्वारा कल 27 जून को अंबिकापुर के राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में संभाग स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इस मेले में निजी कंपनियों द्वारा करीब 2000 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में यूसीसी लागू करने के लिए कमेटी का गठन कर लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया। प्रदेश में परिवहन विभाग ने बसों में वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य किया और आज छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न भागों में मुहर्रम श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय शाम के 7 बजने को हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बस्तर के स्वर।

0: राम राम पंडकी, राम राम
1: राम राम चेतवन दादा, राम राम
0: अमर लिस ने
1: हो काय
0: तुझ संगे ठप्पा दिन ले आम्ही भेटघाट होलो
1: ने हो दादा
0: आले तुचो जो नानलो मोरा टाकरा टुकरा केलग उतराव और दादी मन संगे जुवार भेट करू
1: आले मै मडासे तू जुवार करता
0: आले तो ऐसे संग संगे बस्तर के स्वर कार्यक्रम सुनतो सपाय गांवकारी दादा दीदी सियान सजन और संग जौरिया संगवारी मन के मै चेतमन
1: मै पंडकी
0: आम्ही दूनो करू से
1: राम
0: राम राम और देख तू पीला मन के भूलक सित पंड की
1: नहीं दादा रेडियो कठा हाँ। बसला नानी नानी पीला मन के तो हम दोनों चो बाटले खूबे खूबे मया
0: हां देख मया तो करुक लागे सी पीला हाँ। जिला के और मया नहीं करलो नहीं झटके रिसाउंड
1: दे सोत और देख तू ये पीला जिला बल्लो ने आज कल स्कूल स्कूल वाले खुल ली
0: खुल ली खुल
1: के नहीं भूलक तो रही इतरो दिन गर्मी छुट्टी बनाओ नावा खाऊन बसला सोत ने
0: तो एदा स्कूल मन जा सत पीला झीला मन ने मात्र दख पन की अमी जम्माय लोग जो ना गांव पारा ने अमी रहू
1: से हो दादा
0: आई कि नहीं मात्र दख तुई किंड लेक कर सित कन आगे चो जोन गांव गौली कसन रहे और एबे कसन होय
1: हो फिर दख नु को किंड अच्छा अच्छा लोग रसो हाँ। अच्छा अच्छा गोट बात सीख सोत ने नुआ नुआ
0: दक आगे जन गांव पारा ने बोले आमी दक तेरु आगे छु दक पिंदा उड़ा बोले
1: दूसर रली ने? हो दादा
0: किंडिक गोट बात बोले
1: दूसर रली हो
0: मातर दके जन भारती जो समया है नहीं ये भारती जसन होते जाए से
1: हो।
0: तो असनी गांव चो लोग बोले बदलते जा सो
1: एना चेतमन दादा
0: हां
1: हुन मोबाइल फोन भी तिमन बदलक से
0: हां तू पक्की बोल सी आजकल मैं बदल दखन रोपा बाटे कुन कुन रोप सो दादी दिमन हुन बेड़ा भीतर बोल नहीं मोबाइल के कान था ने टेकाउन दे उन गोट बात
1: से ने रोपा बाटे आगे गीत गाते रहला
0: गीत गाते रहला तो मैं बोल दख दख आगे जुगने तो कहीं नहीं रहने।

0: मनोरंजन छ संसाधन एबे हम छो गाँव पारा जो दादा दीदी मनात नहीं
1: हाँ।
0: हुन मन बोले मोबाइल के चलो के जान सो
1: दादा हुन तो हो
0: रेडियो और... तो दक सुनते छी रला ने
1: और दादा आगे नी हम छो दीदी मन बोले हमर बहू मन बोले हम चूल्हा के फुकी उन
0: हाँ, दक और दक एबे तो तू दक्षित की सब घर हुनी गैस सिलेंडर
1: ने
0: हुन थाने रानसो
1: रानसो तुन के ढूंढ मन के डंड नी होय
0: हां नी होय
1: दादा मन के झटके जी भूख लाग से बल्ले गैस ने डंड की उतर से
0: डंड की उतर से और दक आगे नहीं चूल्हा जरा तराय बलते नहीं रान मन बाटे जाओ ने किटका झिटका दारू के
1: बरसा कितरो
0: डंड होय बड़े बयान ले आइक धरन भतर फुकते चिरा तोरे
1: हो दादा
0: द कितरो डंड होते रहे हम जोन मेहरा महामाता जोन बहिन मन आत ने एदाय समय ने दक जुग बदलते लिए और द गैस चूल्हा ने
1: हो
0: जिंदा खतराय बल्ले हुंचो एक घंटा पहिल दक ने
1: गरम
0: गरम होय से
1: और नी दादा
0: हुन
1: जोन लेका लेकी मन परसो जे
0: हाँ।
1: हुन मन के कई फार्म भर तो का जाय काय हाँ। का जाय बोले सर जी आसु पड़े जाऊ पड़े ने
0: हाँ।
1: मातर अबर काय गांव ने कोनी दादा मन ल कंप्यूटर हुन ले
0: हां सत्य बोले बोले
1: हाँ। हुन तन फार्म फार्मेबल भरुक सक्स
0: सक्स होता और द के गांव पारा ने आई नहीं उनी गोटो ग्राहक सेवा केंद्र बसोत कस ने गांव गांव ने बल खुल ली से हुन थाने जासो अपलो आधार के बनासो
1: ने
0: और बोले कई हमन चो जमीन बाड़ी चो कई नक्शा खसरा है हुनके निस बोलो ने दक एबे समय ने आमचो गांव कारी दादी में बोल कितरो बदलते हीला और ने अपन कितरो भारती के करला
1: नगद
0: तो दक पंड की एक गोट तो होली मा तो आमचो लगे और बोल नगद गोट मना से अले मन के अमरों दियो
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्सक्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: जीएसटी काउंसिल ने बीमा पर लगने वाले 18% टैक्स को घटाकर जीरो कर दिया है। ऐसे में जीवन बीमा लेने वालों को अब सिर्फ इंश्योरेंस का प्रीमियम ही भरना होगा और इस पर कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा। ये हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों के लिए बड़ा फायदा है क्योंकि LIC को पहले से ही इनकम टैक्स में छूट मिली हुई है। वहीं अब GST भी हटने से बीमा लेना फायदे का सौदा होगा।
5: GST काउंसिल तोरु वाणिज्यिक कारोबार तगा टैक्स तुन और वन सरल बना की तोड़ बस ट्रक और एम्बुलेंस गाड़ी की नगा इंजे ओंडो लेकिन 18% टैक्स किसी तोड़ मुन्ने अद 28% मत्ता HS कोड क्लासिफिकेशन किन परवा की वलेवा गाड़ी ना सामान तपोरो इंजे ओंडो 18% टैक्स किसी तोड़ इत बुताते यू सामान पाड़नोर और सामान तच इनोड़ा तिप्पाल कम आता और सामान तत्ता ओयना बूता सरल आयना उम्मीद मिंदे इलेक्ट्रिक गाड़ी न पर्रो मुन्नीटा लेकिन 1% टैक्स मंता नेलता माटा इद मिंदे की इलेक्ट्रिक गाड़ी नगा बाताय बदलाव आयो कोंडे इलेक्ट्रिक गाड़ी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और इलेक्ट्रिक मूंड चक्का ना गाड़ी 1% GST मौला तेने दोरकिता अदेन के और सोबेर कम टैक्स ता गाड़ी बने मास मंता।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्सक्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
6: GST परिषद कमर्शियल बिजनेस के और सरल बनाली से बस ट्रक एम्बुलेंस ऊपर एवर एक समान 18% कर लागे दे आगे ये 28% रहे। HS कोड क्लासिफिकेशन चो गिरधा कर लो बिना ऑटो पार्ट्स ऊपर एबर एक समान 18% कर होली से ये काम ले कल पुर्जा बनातो कंपनी अरु घेंतो लोग अरु सप्लायर्स चो चीपा गुचे दे एच ऐ संगे कल पुर्जा चो अमरातो काम भले सरल होए दे। बिजली ले चलतो बीती गाड़ी ऊपरे 5% कर लागे दे ए मन्ने काही बदलाव नहीं होली से। बिजली ले चलतो सपाई गाड़ी दुई चक्का बीती गाड़ी और 3 चक्का बीती गाड़ी ऊपरे 5% कर चो लाभ मिलते रह दे। असन ले ये मन सपाई कम GST दर बीती गाड़ी मंचो विकल्प बनु रह दे।
0: तो पन की
1: ओए चेतमन दादा
0: ए दख कितरो नगत गोट मन के आमी दादी मन के सुनाऊं दिलु ने और मोटरा ने कई धरली सीता थी
1: हो काय फिर दादा दीदी के सुना तो राय
0: हां तो लागे।

0: এসছি নে কাই নল কাই আসন হ্যাঁ
1: চুচাই ফেরি ওয়াস
0: হ্যাঁ লাগেছি আলে তবে তুই জন মোড়া নাল ছি তুনকে নিকরাও তবে
1: এদে আজি আমচো দাদা দিদি কাজি আনলে সে ভেট বার্তা
0: আসন
1: আর হুন ভেট বার্তা কে সাং সোত শ্রী চম্পেশ্বর পাড়ি
0: হ্যাঁ হ্যাঁ
1: আর হুন ভেট বার্তা নে ভেট কর সোত শ্রী বলবীর সিং কচ আর এ ভেট বার্তা আয় স্বরোজগার
0: স্বরোজগার বললো নে নে আপলো খুদে
2: चारो बाटले डोंगरी आसे और मजे गत तुमचो ये गांव आसे ये गांव चो काय नाम
3: आसे ना ये गांव चो नाम है बिंता
2: बिंता
3: हाँ
2: और तुमचो नाम काय
3: है मचो नाम चंपेश्वर पाड़ी है
2: बोलू बे ये जोन बोले चारो बाटले डोंगरी आरे खाली आसे ता किठा नसन गांव आसे
3: ये था तो चार पंचायत आसे
2: अच्छा चार पंचायत
3: हाँ भेजा भिंता करेकोर सतसपुर ये सब जो ना है गांव पंचायत आसे नदी चुहन पाट फिर आसे अलग पंचायत चंदेला पंचायत ककनार पंचायत हुन बाटे आसे
2: अच्छा
3: हाँ और आगे गेलो फिर हुन बाट बारसो रामरा अमरी हर राकोड़े रासे एयरपोर्ट आसे पंचायत मन
2: अच्छा
3: ये डोंगरी खाले जमा है आठ पंचायत आए
2: अच्छा आठ पंचायत देखा बोलू बे ये आठो पंचायत ने कोनी बाटले बोल काही कसन डामर सड़क ना आली सीमेंट ची सड़क काही
3: काय करू ये दुर्भाग्य है जाना आमचो डामर सड़क तो होउक ची नहीं होय ये पिछले बार बोले सड़क जो ना बनू रही काय नाव तुमचो सेंक्शन हो रहे इला आरो सीधा जो ना काय करला कि माटी माटी कुढ़ाऊन दिला हुंचो बाद के उन्हीं बट उठला जाते गेला
2: अच्छा
3: तो बरसात ने भारी तकलीफ आसे आम के तुम डोंगरी बाटली जो नीला साहस ये बे तो पानी निमार लो का जासे
2: अच्छा।
3: पानी बेरा सबसे ज्यादा परेशानी आसे गाड़ी घोड़ा चेक तोर काकी स्वास्थ्य लाभ मी रुक नहीं सके कोनी जज की काज तो बेरा परेशानी आसे आसे स्वास्थ्य विभाग ने बोले आसे
2: अच्छा।
3: सब चीज एम्बुलेंस आसे सब आसे लेकिन ने तो परेशानी भारी तकलीफ आसे था बरसात ने मिट्टी रिकव दे सत बरसात सर ली जाले फिर बरसात ही बल जसन चो सन
2: अच्छा
3: ये था सीसी रोड या डामर रोड बनती बल्ले कम से कम आम के स्वास्थ्य चो लाभ मिलती ये मैं रुक नहीं सके
2: अच्छा नहीं तेवले बोले जसन की आमी ये गुलाब बाट बोलू से हाँ, दखू से हाँ। मतलब खेती बाड़ी ने खूबे उन्नति बढ़ती असन लागे से
3: खेती बाड़ी तो आसे काय था तो कॉम्पिटिशन चले से
2: अच्छा,
3: सब लेकिन काय ऐसु कुमरा ओंडले साइंटिस्ट बले उरला यथा मात्र हुनी मन बल थकला असन असन दवाई आनून आनून छिचलू लेकिन माहू कंट्रोल नहीं होली यथा काय है हमें एक यार निदान कर तोर चाहूं से आगे सस्ता दवाई देतू फिर पाछे महंगा दवाई देतू नहीं आगे हमें अस्थिर न रहू खो बोलू भती अच्छा दवाई आगे देऊ से पाछे हल्का दवाई दिले काम नहीं करे
2: तो फसल हिसाब ने बोलू बे काय चोचादा फसल वैसे
3: धान
2: धान फसल हो बोले ने चमास ने से
3: वैसे चमास ने छे
2: बाकी सब
3: बाकी समय ने सिंचाई सुविधा नहीं है काचो एक झान लगासे तो होनी बल गाय बैला जमा छाणू देसत नाले बे चना काज बल मौका रली अलसी काज मौका रली गेहूं काज मौका रली लेकिन सुविधा नहीं आई अच्छा सुविधा जाचो आसे गाय बैला छाणसत गाय बैला राखा कितरो रुवाओ
2: अच्छा बोलू बे तुम ही बलन काय छो ज्यादा कमाई कर सकते
3: धाने ची आए
2: धाने
3: ची
2: आए और दूसर सब्जी
3: दूसर सब्जी फसल नहीं सांगले काय होनी है परेशानी
2: अच्छा।
3: जानवर चो परेशानी
2: अच्छा।
3: लेबर चो परेशानी शासन तो इतरो ज्यादा राती बेरा बल मैं सुन ले केंद्र सरकार चो तनखा बाढ़ लोर मात्र नानी कर्मचारी नहीं बाढ़े और हुन रेट ने 150-200 रुपया भूती दे उन भती चार घंटा पांच घंटा काम कर काय फायदा मेरू है बियाने आमचो भाई संग हिसाब करूं सामे 15,000 खेती लगलीस 15,000 धान होए से तो धान फसल के छानू दे तो हिसाब होली सामचो
2: अच्छा
3: हाँ यही स्थिति आसे जो कुछ आसे लेबर बाहर जा सत हैदराबाद बाट जा सत 400-500 रुपया रोजी कमाऊ से बल सत मात्र ये था आम के लेबर नहीं मिलत
2: अच्छा बोले ने कमा तो काजे खर्चा ज्यादा लागे उपजन कम
3: उपजन कम होए से कितरे मेहनत कर ले बोले उपजन कम होए से था
2: तो जसन की नवा नवा तरीका ने कमातर हाँ, ने
3: हाँ,
2: बलन कसन काय चीज
3: भाई लेबर नी रलर कहाँ करूँ
2: अच्छा
3: मेन तो लेबर आए अगर लेबर रले नया नया तकनीक कर ले बल फायदा होती मानतर नया तकनीक कर तो काज बल तो लेबर लागे से
2: हाँ,
3: ये धान रोपा लगा तो मशीन आसे हुन बल तो लेबर झिकू है तेबत फिर मशीन ने संगाऊ और मंडाऊ लेबर नाल तो कहीं ची काम नहीं हो घरे रले बले लेबर अस्थिर न रदे ये चौर तो आम के इनाम बर्बाद करून दिली अगर ये चौर सही सलामत रहती हुन बले मेहनत करता कमाता खाता पैसा देऊन घेनता तेवे जाको आम के बल मिरती सिर्फ सौकिया काम काजे सत लेकी मंचो इसनो पाउडर

0: के बिहाय जाले आए होता सिर्फ खेती चिबेरा जो ना चिखला चिखली करून मटाऊन देऊ से फिर आनू से भारा भारी आनू से धान मिंडू से
1: नहीं और जसन की बल्ले ने पढ़तो काजे स्कूल में बल खूब धक्का दे से अस्पताल
0: स्कूल तो आसे स्कूल स्कूल चो कमी नहीं आए हुंचो बाद आम चो स्वास्थ्य चो कमी नहीं आए हर तो काजे दवाई च कमी नहीं आए सिर्फ आना जाना आम के मुख्य आसे मार्ग
1: अच्छा
0: ये बारह मासी सड़क नहीं आया आम चो दो दिन अभी आसे धुरला उठली पानी मार ली बोले सब रोई रोई बना ली उठन गेली
1: अच्छा हाँ नहीं तेबले बोले दूसर बाट चो लोग भिन्ता गांव के सुन लेन बोलेन का है कि एकदम जंगल गांव आए एकदम खाले आए मंतर एता यून आमी दखू से बोले ने बोले कई पढ़े
0: नहीं ये ए था बराबर एबे लोहंडी गुड़ा आगे बाढ़ ली
1: अच्छा।
0: तुम सांगे से आगतले बोले जब ये चो भाई बीता मन जसन पढ़ ला हुदल दाए ले बोले एथा लोग सबसे क्वालिफाइड ने आगे रहो लोहंडी गुड़ा जो ना से लोहंडी गुड़ा ज्यादा पढ़े लिखे आ सकते था
1: अच्छा
0: मंतर का यू नहीं आए एथाले सुविधा नहीं आए कावड़ बोझा बहुन भते आम के माए बाप पढ़ाला ये डोंगरी बाटले जाऊन भाती चाउर नेऊन भाती साग नेऊन भाती आम के जानो शहर मन ने पढ़ाला लोंडी गुड़ा पढ़ाला ये बाटे मात्र का आवागमन चो सुविधा नहीं आए था बारामासी
1: बल्ले ने रोड भी थी बोले सड़क भी
0: मुख्य आसे आमचो सड़क चो समस्या
1: अच्छा
0: हाँ हुंचो बाद दूसरा नंबर आसे था टावर नहीं दे
1: अच्छा
0: कोनी आमचो खास मनुकासे काई गोठे आले बिपती पोडली बल उपरे जातो राय नाल कोनी दिने खोज तो राय फिर कोन लग टावर आसे आमचो सगा संबंधी काई दुख आए सुख आए सारा चीज जो ना किने हुक नहीं सके आमचो
1: अच्छा
0: सुविधा यही चीज दुख आसे आरे था काई दुख ही नहीं है
1: अच्छा बल्ले कोके तुरंत खबर देउन बल्ले काई सुविधा
0: नहीं सुविधा नहीं आए था
1: तो ये था काई जसन की बस वगैरह कहीं चले से गाड़ी
0: नहीं कहीं ची नहीं देसी पिला मन चुआ से कमांडर मन सवारी गाड़ी मन यही मन चले से यार कहीं नहीं आया था
1: अच्छा
0: बस बिता मन बोले एक दो बार चलाऊ दखला रोड चो परेशानी काजे दिन के टायर फुट तरल कहाँ चला हुआ था
1: बोले सबले मुख्य जरूरत था काई चीज
0: सड़क चो यहाँ से सड़क टावर
1: अच्छा
0: हुन चो बाद में बाहर चो दुनिया संग जुड़ू आऊ
1: बोले ने सड़क और टावर ने बाटते किनिक बाट
0: हो खूबे बाड़ू है हुन चोले और कई चीज चो हमके परेशानी नहीं है हो तो काजे बरसात तो नहीं है ठंड चो नहीं है गर्मी चो नहीं है सब था क्लाइमेट सही आसे सिर्फ तकलीफ आई होत रहे हम चो
1: अच्छा
0: और समस्या आसे भी लेबर चो
1: अच्छा
0: खेती कर तो काजे
1: और कहीं जैसन की बीमार सीमार चो कहीं ज्यादा ये था प्रकोप धक्का दे
0: नहीं होत्रो कहीं नो है क्षेत्र चो प्रदू ये वातावरण यथाच क्लाइमेट जो नासे आमचो ये अच्छा आसे
1: अच्छा
0: प्रदूषित नहीं होए
1: बल्ले लहरा वगैरह पूरा
0: सब सब शुद्ध आसे बड़े बयान के भी एक दिन थे बुन भाती बड़े बयान निकरू जहा घर जा तो मन ये तो मन नहीं करे और शहर मन ने नुआ किदले दे वो धुआं च धरते रहे से
1: अच्छा
0: तो ये चीज मेन आसे आमचो
1: तो बल्ले ने रोज दिन चो जसन की जरूरत चो सामान है बोलू भी एता कसन ने उपलब्ध हो सका ने मेरे से
0: ये था ले फिर लोहंडी गुड़ा जाऊं आऊं शहर जाऊं आऊं हुन बाटले आनू रू आऊं छोट छोट दुकान मन आसे
1: अच्छा
0: नन नानी गाड़ी मन चले सुन मन लथुन आन सत अरे था फिर बिक्री कर सत
1: अच्छा
0: बुधवार बुधवार हाट बसे से शहर ले बली हुआ लोग
1: अच्छा हाट बसे
0: से हाट बसे से
1: बल्ले ने हाट ने पूरा सामान मेरे
0: से पूरा सामान मेरे से
1: कपड़ा
0: लत्ता हां सब
1: अच्छा
0: दैनिक उपयोग चो सब चीज मेरे से
1: बोले ने साप्ताहिक बाजार
0: है साप्ताहिक बाजार है
1: जैसन की ये था अगर कोनी पढ़े लिखे लोग बोले ने कितलो असर नौकरी वगैरह ने आसत
0: खूब आसत नौकरी ने आगे लोग मन आसत मात्र एबे लोग के तो तकदीर फूटली कितरे पढ़ू रल बल नौकरी नहीं आया था कोटा ही नहीं करे आमचो
1: अच्छा
0: और आगे बीता मन जा सब आसत नौकरी
1: सब नौकरी
0: सब नौकरी
1: मंत्र लोग मन पढ़ा लिखा करून आसत बोले
0: हाँ लोग पढ़ा लिखा करून आसत खाली आसत
1: अच्छा
0: कौन शहर मन ने जासत काचे बनिया घर ने काचे किराना दुकान ने काचे कहाँ कहाँ जो गिहो सत 5,000-6,000 हुन महीना धर सतार होता है जीविका कर सत कितरे लोग घर आसत खेती करूँ दुखों से खेती बल फायदा नहीं आए हाँ आम बोले बिल्कुल निस्तेज हो ना सु खेती बारे ने खेती नहीं कर ले काय करूँ आए चो साधन नहीं आए ये दूर ने जो ना बिजनेस करूँ कौन करूँ है बिजनेस कौन धरू है शहर मन ने सब बाटले लोग जा सद गुन तो बिजनेस चले से ये गोट की गांव ने कहाँ चले दे
1: हाँ तो आए मंत्र अगर रान बंचो कहीं उपज बल लेने था
0: कहीं ची नहीं आया था रान बंचो उपज
1: कहीं
0: ची नहीं आए
1: अच्छा बोले ने ये था जीवन चो साधन बोले ने साल ने एक बार खेती की
0: बस उतरे आए हाँ
1: हाँ हाँ तो अब तक बल्लेन कहीं पूरा गांव चो लोग कुस

अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम बस्तर के स्वर। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। आप हमें न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी इस वक्त सुन रहे हैं। शाम के 7:21 हुए हैं। अब सुनिए ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम आम चौगांव।

0: जुहार पणकी जुहार
1: जुहार चेतमन दादा जुहार
0: अमरलीस ने
1: हो दादा
0: आले तुचो मोटा गडरा टाकरा टुकना केले उतराव
1: आले किन हो जासे काय
0: हां आले मैं बोल उतरो कुलाई लागे ने आले मंडवन देवर दादी मन संगे जुहार भेट बल कर
1: आले मैं मडासे तू
0: आले भेट कर आले छी संग संगे आमचो गांव कार्यक्रम सुन तो सप्पाए गांवकारी दादी दीदी सियान सजन और संगजोरिया संगवरी मन के मैं चेतमन
1: मैं पंडकी
0: आमी दोनों करू से
1: जुहार
0: और नन्ना ने पीला उन बोले आमी दोनों चुबाटले खूबे खूबे मया तो दक पीला जिला लाड मया तो कर लू
1: हो दादा
0: मात्र तु दक जान सी तेबे रोपा चो समय अमरे से और गोटो गोट तु लेख कर सीत कहन रोपा रोपसोत नहीं दक मन गीत गावते गावते रोपते रुआ।

0: हो काय फिरून गीत नी गावले फिरून बेडा ने नले
1: मिला का जे गीत गावत बोललो ने दखमन खिंड काय थाकले बोले नहीं गीत गाउन गाउन बुता करलो ने काय थाकलो महा नहीं लागे
0: समय आचो
1: पता ही नहीं चले मातर तू जान से जन की दूसर आमचो गीत मन नाम दखू से छत्तीसगढ़ी हिंदी गीत में हमन सफाई लिख लो रासे ने अब हम क्या पूर्ण मातर तू ये जो ने आमचो गाँव पारा जो गाँव सोत नहीं मेहरार मन होता है कहाँ लिख ली से
0: नहीं नहीं नहीं कहा उनके सुनून सुनून हाँ
1: सुनून सुनून बोले दख इतरो सर सरा बोलो ने एक घंटा दुई घंटा गीत के गाँव सोत और भूलकोत नहीं सर सरा सुरता
0: उनके फिर लिख हुआ उनके सीख तो रहे
1: जसन की बड़े लोग संग नन नन मन जौन भतर बिया घरे ने तो कसन गाव सो थुमन सीख सो उसने गाउन गाउन और हुमन के बले सुरता रहे से
0: जसन कोनी बीती के बलाय आम चो आग चो झुक चो चीज के हुन मन के काया सीख तो रहे दादा दीदी मन के असन कर तो रहे कि हुन नानी पिला मन के सिखाओ ने बस हम भत कितले दे गाउन गाउन सन मेरा बसला सोता रहे उनके सिखाओ उनके काया भूल कुक नहीं देओ
1: नहीं देओ
0: उन भूलकले भर आग चो पूरी काय सीखे दे
1: और देख लिख लो बीती तो भूलकुक बल होते महातर जो आपलो मन ने नहीं आपलो दिमाग ने जे की आमी सुरता रखु रहूं उसने एक हार आमी उनके बलो ने हुन जीवना भर का जे आमचो काम दे से ने असनी ची दख आमी जगार घर बल दखू से गुरमाए मन ने हुन जगार गीत के काय मजा हुन धनु कान कसम बाजाक बजाउन भातिर नहीं और सर सरा हुन गीत के फिर गाउन दे सर
0: हो फिर लेकी मन के काय हुन थन जाउन जाउन सीख तो रहे ने हुन सीख ले फिर आगे जो पीढ़ी के काम
1: दे दे
0: उनके नहीं सीख ले फिर सफाई जन भूल कुन जाओ हां
1: उन दख आगे गुरु माए मन हुमन ले पहिल जोन रो थुमन थान ले सीखला
0: ने और गुरु माए बनाला
1: असनी दख नाट मन बल होय से ने नाट गीत बल रात भर गाव से
0: नाट नी होला फिर गाव ने चल
1: हां दख शादी बियाह दु खोलो ने तो नाट आई छी ने और दख एबे खिंडी कम होते ही गेली मात्र एबे बोले कुन कुन गांव पारा ने चले से
0: काय हुन के काय कोनी कोनी जन सीख सोत हुन मन कर सोत
1: और दख हुमन बल मैं

0: 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
1: जीएसटी काउंसिल तोरु वाणिज्यिक कारोबार तगा टैक्स तुन और वेंट सरल बना की तोड़ बस ट्रक और एम्बुलेंस गाड़ी की नगा इंजे ओंडोई लेकिन 18% टैक्स किसी तोड़ मुन्ने अद 28% मत्ता एचएस कोड क्लासिफिकेशन किन परवा की वलेवा गाड़ी ना सामान तपोरो इंजे ओंडोई 18% टैक्स किसी तोड़ इत बुताते यू सामान पाड़नोर और सामान तच इनोड़ तिप्पाल कम आता और सामान तत्ता ओयन बूता सरल आयना उम्मीद मिंदे इलेक्ट्रिक गाड़ी न पर्रो मुन्नीटा लेकिन 1% टैक्स मंता नेलता माटा इद मिंदे की इलेक्ट्रिक गाड़ी नगा बाताय बदलाव आयो कोंडे इलेक्ट्रिक गाड़ी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और इलेक्ट्रिक मूड चक्का न गाड़ी 1% जीएसटी मोला तेने दोरकिता अदेन के और सोबेर कम टैक्स त गाड़ी बने मास मंता।
2: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 cc तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
3: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
0: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: जीएसटी परिषद कमर्शियल बिजनेस के और सरल बनाली से बस ट्रक एम्बुलेंस उपरे एवर एक समान 18% कर लागे दे आगे ये 28% रहे। एचएस कोड क्लासिफिकेशन चो गिरधा करलो बिना ऑटो पार्ट्स उपरे एबर एक समान 18% कर होली से ये काम ले कल पुर्जा बनातो कंपनी अरु घेंतो लोग अरु सप्लायर्स चो चिपा गुचे दे एचई संगे कल पुर्जा चो अमरातो काम बले सरल होए दे। बिजली ले चलतो बीती गाड़ी उपरे 5% कर लागे दे ए मने काही बदलाव नहीं होली से। बिजली ले चलतो सपाई गाड़ी दुई चक्का बीती गाड़ी और 3 चक्का बीती गाड़ी उपरे 5% कर चो लाभ मिलते रह दे। असल ले ये मन सपाई कम जीएसटी दर बीती गाड़ी मंचो विकल्प बनू रह दे।
5: शादी
6: हाँ तो दखपन की
5: ओए दादा
6: आमी तो अमरलू
5: हाँ।
6: और दख तु जहन बोलते रलीस नहीं शादी ब्याह ने बल लोक गाथा मा हसन जहन गावत
5: ने हाँ, हाँ, हाँ, ने उन्हीं के तो बोलते
6: हाँ, तो दख ये सत्य बोल से तु ये जोन लोक गाथा हासे नहीं ये के उसनी शादी ब्याह ने बल हसन गाव सो तो ने
5: हाँ,
6: और बेड़ा खड़ा ने बल गाव सो तो ये जो न बोलो ने ये दशा दई भाभी ने
5: दशा दई भाभीचो
6: भाभीचो ये गीत आए लोक गाथा हसन और एक गाव सोते पारो नाग तो मैं बोलते रले की जोन लोक गाथा है कि आमी दादी में लगे हमारा उन्दे
5: आले
7: सराना लागो ये वे लखे जुआरो लागो ये वे सोए सोरन लागो प्रभु जे लखे जुआरो लागो गाँव चो भूए चो माटी मतके गाँव चो भूए चो माटी मतके सोब के सोरन करें प्रभु मैं सोब के जुहर करें जुआर जुआर तीनी जुआर तीनी जुआर ऊपर जुआरो लागो प्रभु जे ऊपर जुआरो लागो तोलर जुआर नाग नागनी तोलर जुआर नाग नागनी ऊपर जुआरो मने प्रभु जे चंदा सूरी जोआ सोए सोरन लागो प्रभु जे लखे जुआर लागो सोए सोरन लागो मने लखे जुआर लागो मने सोए सोरन लागो प्रभु जे लखे जुआ।

करचा करवास तमने कमिया धमिया यासो अत पुर बूजे टूरी टनकी यासो जो मा बानी आसे पुर बूजे जो मा बानी आसे राज पाड़ो तो वाड़े मने देश वाड़ो तो वाड़े मने राज

बाबू गोड़ भितरे जाहा बाबू बुलाव करु न माना लगे लगे तोड़ारा बुले लगे लगे तोड़ारा बुले धूरे ढिंडरा पड़े प्रभु जे धूरे ढिंडरा पड़े राजा घरे तो बोले ये बे कोदा भाटाने मने हांदे ठूलो हो तो रोवाय प्रभु ठूलो हो तो रोवाय ए गाँव चो लोग के संगला प्रभु जे पारा चो लोग के संगला ए लगे लगे डारा बुलली प्रभु लापिरे ढिंडरा पड़ली काना खोड़ी आए तरवाए काना खोड़ी आए तरवाए जो माए तो रोवाए प्रभु मौज पूरा चो तो लो ए नहलो गरीब लोग प्रभु जे काना खोड़े आलो जितलो ती तो लो मौज पूरा चो नर नारी जे जो मामने कोदा भाटा ने आए प्रभु रूंडा हो तो रोवाए ए कोदा भाटा ने आए प्रभु ठूल हो तो रोवाए राज चलो गो तो झूला मने देश चलो गो तो झूला मने राज चलो गो मने पोरू एक घड़ीला ए लोक मन चौकन ये वे हुआ जजाले तो गेली मने झूली पाई कबूलला प्रभु खोरी खोरी बुलला ए गाँव गाँव बुलला प्रभु घर घर बुलला राजा बोलाओ आए मने राजा बोलाओ आए मने जातरो आए बोलला प्रभु जातरो आए बोलला गाँव चलो गो तो कोदा भटने गाँव चलो गो तो कोदा भटने छाता बड़गी धरो तो प्रभु छाता ओड़ु नए ओ बड़गी ठेगा तोरो लो लो गो हाते बड़गी धर तमने मुंडे पागा बांधो प्रभु करने कपड़ा पींदो ए छाता धोरु न जाओ अत प्रभु छाता ओड़ु न जाओ छाता रो लो तो लो गो मने छाता ओड़ु न जाओ तमने छाता नो लो लो गो प्रभु कपड़ा ओड़ु न जाओ एठाए ठाए घाम छेके प्रभु राय राय घाम छेके बाए बिकालो घाम छेके खाले च तो पोतो होए मने ऊपर चो घाम होए प्रभु मजी गताज भूक होए पानी कांजी तो धरलो लोगो पानी खाते तो पेज खाते कोदा भटने अमरो प्रभु औरा भटने अमरो ठाए ठाए तो घामो मने ठाए ठाए तो घामो मने बाए मुकड़ाया प्रभु घाम तो पोतो आए पेज खाए तो आए प्रभु पानी खाए तो आए राज चो लोगो तो झूला मने देश चो लोगो तो झूला मने कोदा भाटा भोरे प्रभु औरा भाटा भोरे बाए भी कल इला प्रभु चाटी चो धारे इला ए माटी चो भारे इला प्रभु माटी चो भारे इला बाए भी कालो गोजो गोजुन जाय से मने तो कोदा भाटा गोजो गोजुन जाय से प्रभु कोदा भाटा मने राजा रानी तो माए बेटा राजा रानी तो माए बेटा रावटी टांगुन रोहो अत प्रभु कोदा भाटा ने आए ए खटिया टेबुल ने आए प्रभु पलंग उलंग ने आए काए रसिया माए बेटा वो सुनो जाले तो रो तमने माए बेटा बोले प्रभु वो सुन रो तमने देश चलो गो तो ये उन सरला राज चलो गो तो ये उन सरला माए बेटा के पूछो अत प्रभु माए बेटा के पूछो

हामी सुन्दे कहाँले हामी जानु दे प्रभु यसने शरण पस धुरे जाउन बसत प्रभु धुरे जाउन बस सबु लोगो तो जुहर करला सबु लोगो तो शरण करला माए बेटा के आए प्रभु माए बेटा के आ फूल गुतलो लोगो मने फूल गुतलो लोगो मने फूल पिंदन जाओ प्रभु कानने फूल पिंद ए पाए पोड़ न जाओ प्रभु हाथ जोड़ न जाओ राजा रानी तो संगला मने माए बेटा तो संगला मने सुनरे रहे तो तुमी प्रभु राज चरए तो सुना आया बोलो ले नाही हमके बाबा बोलो ले नाही हमके जांगी।

कोनी थाने जोड़ गरजा कोनी थाने तुम्हें खोज गजा मोचो बेटा का जे प्रभु कन्या सूत्र करा ए मोचो बेटा का जे प्रभु कन्या नुन दिया से मोचो गुरना के सुना से तुम्हें मोचो गुरना के सुना से तुम्हें मोचो गुहर के सुना प्रभु मोचो बात के माना हुसने बोलो तो के गाँव चलो गो हुसने बोलो तो के गाँव चलो गो जाऊं दे जानू बोलला प्रभु।

के सुना से तुम्ही मोचो गुहर के सुना प्रभु मोचो बात के माना हुसने बोलो तो के गाँव चलो गो।

0: तो ये दादा तो लोक गाथा के सुन लू
1: हाँ हाँ हाँ।
0: तो मैं क्या बोलते रहे समय आसे
1: हाँ।
0: दादा दीदी खिंडी के गीत सुनाऊं बोला हरिक करूं
1: हाँ द कहनी कविता ने और संगे संगे गीत हो फिर तो निशान ने
0: हाँ होनी के तो बोले से तो दादा दीदी मन के गीत सुनाऊं
1: हाँ
0: ये गीत कुरिया मन सुनाऊं के पाछे सांगवा
1: आले आले।

0: तो पण की
1: होय दादा
0: काय मजा आहे गीत रली ने
1: हो
0: अरे गीत कुरिया जो नाव के सांगून दे
1: ए गीत कुरिया मन रला जलधर और हनुमंत चो
0: संगवारी
1: मन
0: द कितरो नगद गीत के मन सुना ला ने तो बलतरल गीत सुन ले तो मन हरिक लागेस छी ने और समय आ रलो ने गीत गोविंद सुनतोर भले
1: सुनतोर आय
0: के चले काय मन भले हरिक लागे से ने और बूता भयना करलो दुखा पाका भले पराय
1: पराय दे
0: तो वसनीची गोटोक ये गीत आसे मोनरा ने एक वाला में दादी मन के अमरौंदी और गीत कुरिया मन के पाछे सांगो।

0: तो पण की
1: ओय दादा
0: देख काय म्हणजे एक गीत तो रली ने मात्र गीत कुरिया बल सब लोग पक्की शीतल
1: हो काय
0: तो एक गीत के गौरव मेघनाथ पटनायक और हूं मंजो संगवारी में तो दखस नी गीत समय ने गीत गोविंद सुन लो ने मन तो कितरो हरी लागे से
1: हो दादा मंतर हुन घड़ी बटे दो समय
0: पर दख समय तो युक लागे से और समय ने जौक बोले लागे से तो मुंडरा गडरा के सकलू और विदा मांगू
1: आले मैं सकल से
0: आले तो जातो पूरे आमचो गांव कार्यक्रम सुन तो सप्पा गांव करी दादा दीदी सियान सजन और संगजौरिया संगवारी मन के मैं चेतमन
1: मैं पंडकी
0: आमी दोनों करूं से जुहार।

0: अभी ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम आम जो गांव का प्रसारण किया गया। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय रात के ठीक 8 बजे हैं।
1: मेरे और मेरे परिवार की तरफ से हमारी छोटी सी ननिरी प्यारी पाही को जन्मदिन की बेहद बेहद शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे पाही।
0: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। लोक गीतों के कार्यक्रम घलर में प्रस्तुत है जगार गीत। स्वर है मुरहीबाई और साथियों का।

0: लोक गीतों के कार्यक्रम घलर में अभी आप जगार गीत सुन रहे थे। कलाकार थे मुरहीबाई और साथी। ये आकाशवाणी जगदलपुर है।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय रात के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम पीला मन काजे गोट। प्रस्तुति है संतोष कुमार बघेल की।

पीला मन का जी गोट ये कार्यक्रम सुन तो सब पाए पीला मन के मोचो बाटली खूबे खूबे माया और लाड। तो पीला मन हम जो ये कार्यक्रम ने महान पुरुष लेखक महापुरुष मंचो कहनी के धरुन हमी एवरूम से असनी आजी बले हमी गोस्वामी तुलसीदास जो जीवन कहन के तुम चो काजे अनलो से। तो पीला मन गोस्वामी तुलसीदास जो जन्म श्रावण मास ने शुक्ल पक्ष ने 1511 उत्तर प्रदेश जो सोरन गांव ने होली। तुलसीदास जो माता जो नाव हुलसी और पिता आत्माराम दुबे रो ये भारद्वाज गोत्र वंश के सानड्य ब्राह्मण जाति ने जन्म धरला। तुलसीदास जो जन्म 12 माह गर्भ ने रलो पाचे जन्म होला। जन्म होलो बेरा हुनमन जो टोंडले टोंडने पूरा 32 दांत रली और जन्म ते खन हुनचो टोंडले राम शब्द निकरली। सपाय पिलामन जन्म होलो पाचे गगुआत और कोनी कोनी उगाय बल रुवात। मांतर कि ये तुलसीदास जो टोंडले जन्म ते खन राम शब्द निकरली यही काजे तुलसीदास के राम बोला भले बलते रहो। जन्म लो बेरा हुनचो शरीर और रूप 5 साल चो पीला असन रो। ये मन चो जन्म अवतकाल नक्षत्र ने होली। हिंदू ज्योतिष चो हिसाब ने बाप चो

जीवन का जी खतरा संकट रली हुनी का जी चार रात पाचे माँ बाप मन तुलसी दास चो आपलो ले हमेशा का जी त्याग कर ला चुनिया नाव चो आपलो संगे हरिपुर आनली और 5.5 साल तक हुंचो देखभाल कर ली। पाचे चुनिया मरुन गेली हुंचो पाचे तुलसी दास खुबे डुक डंड पावला भीख मंगुन मंगुन आपलो जीवना के अपन चलाते रहो। हुंचो पाचे पीला मन 7.5 साल चो तुलसीदास चो उम्र होली महीना जनवरी फरवरी चो शुक्ल पक्ष चो 5वां दिने अयोध्या ने गुरु नरहरिदास चो पवित्र धागा समारोह चलते रहे जो कि भगवान श्री राम चो तीर्थ स्थल रली। तुलसीदास ने अयोध्या ने आपलो शिक्षा दीक्षा शुरू कर ला। खिनिक समय पाचे नरहरिदास तुलसीदास के विशेष वरहा क्षेत्र सोरो मंदिर पवित्र स्थान नीला और पहली बार रामायण के सुनाला। सांग तो हिसाब ने गुरु ने तुलसीदास के खुबे हार रामायण के सांगला तेवे तुलसीदास के समझ एते गेली कि रामायण काया है। और एता तुलसीदास पाचे पवित्र शहर वाराणसी इला और गुरु सनातन ले 15-16 साल जो समय ने संस्कृत व्याकरण 4 वेद 6 वेदांग ज्योतिषी और हिंदू दर्शन के 6 विद्यालय जो अध्ययन कर ला। तुलसीदास जो विवाह 1561 ने कार्तिक मास शुक्ल पक्ष जो 11 तारीख के गोंडा जिला जो नारायणपुर गांव जो उनकी पराशर गोत्र जो ब्राह्मण दीन बंधु जो पुत्री रत्नावली ले होली। एक हार तुलसीदास हनुमान मंदिर जाओ रोत और रत्नावली आपलो भाई संगे आपलो बाप चो घरे इली। जब तुलसीदास ये जानला तो हुन रोक नहीं सकला और आपलो रत्नावली चो घरे जातो काजे विचार करला। मानतर हुन दिन इतलो लहरा धुका परसा बीज खसरते रहे असहन समय आने बले मानतर पीछे नहीं हटला और राती बेरा जी जंगल नदी के पार करून सरजू नदी के पोरुन पार करला और अपनी आपलो पत्नी रत्नावली जो घरे अमरला। मानतर रत्नावली तुलसीदास के खुबे खींचली कि असन समय ने तुम्हें इलास मोचो घरे इतलो लहरा धुका जंगल जानवर के तुम्हें निडरून भाती नदी पारून पार करून इलास। ये गोट के सुनून खूब खींचली ये गोट के सुनून तुलसीदास बले मन के खुबे सोचला मने मन खूब सोचला कि आपलो जीव के संकट ने डालून असन बेरा मैं एता काय काजे इले बलते और हुनी दिन ले आपलो पत्नी चो त्याग करला और प्रयागराज चो बाट के धरला आपलो गृहस्थ जीवना के त्याग करून साधु चो भेस धरला। कुछ समय पाचे राजापुर रौन भाती फिर ले काशी चो बाट धरला। लोग मन के राम कथा सुनाते सुनाते कथा सांगुन सांगुन एक दिना मनुक रूप ने प्रेत के भेटला और उन प्रेत तुलसीदास के हनुमान जी चो पता के सांगलो। हनुमान संगे भेट होन तुलसीदास श्री राम जो दर्शन करातो का जी प्रार्थना करला। हनुमान सांगला कि तुम के श्री राम जो दर्शन होए दे चित्रकूट ने। ये सुनून भाती तुलसीदास चित्रकूट जो बाट के धरुन रेंगला चित्रकूट अमरुन राम घाट ने आपलो आसन जमाला। एक दिन तुलसीदास प्रदक्षिणा काजे निकुरो कि बाटे उदुपनाय श्री राम चो दर्शन होली। मांतर की दुई नानी नानी राजकुमार गोड़ा ने बसुन धनु कांड के धरुन जाय सोत। तुलसीदास हुनमन चो उपरे मोहला मांतर की पहचानुक नि सकला इतलो रूप इतलो उनके दकुन भाती हनुमान चो बुद्धि काम नी कर ली और हनुमान चो पूरे ले दुई नानी नानी राजकुमार मन घोड़ा ने बसुन गेला। हुंचो पाट पाट हनुमान अमर लो और सांगलो सपाय गोट के तुलसीदास खुबे पछताला कि मैं श्री राम के चितव नी सकले। तेबे फिर हनुमान सांगला काली के बड़े बियान तुमके फिर श्री राम चो दर्शन होए दे। बड़े बियाने भगवान श्री राम फिर ले इला पीला बालक होन तुलसीदास के बल्ला बाबा हम के चंदन हो तो राय तुम्ही हम के चंदन देव लाए सकासे बलते बल्ला श्री राम। हुन समय तुलसीदास भाम च पालो महासन होली श्री राम जो सूरत मुरुत शरीर के दकुन ज्ञान गेलो असन होला। तुलसीदास जो माँ और श्री राम

आपलो हाते चंदन के अंडकी ने लगाऊन तुलसीदास जो माथा ने टीकला और हुताले अंतर ध्यान होला। हुनी समया हनुमान चो आज्ञा धरुन हनुमान चो बाटे धरुन गेला गेला। हुन दिन मन मांग मंडी होते रहे हुनी का जे खिनिक दिन ठेबला मंडी चो छह दिन पाचे बड़ रूप खाले भारत द्वाज और याज्ञ क्लव्य मुनि चो दर्शन होली हुता कथा होते रहे जोन कथा के सुकुर क्षेत्र ने आप लोग गुरु ले सुनूरला। मांग मंडी सरते चिकी प्रयाग ले काशी का निकरला और हुता प्रहाद घाट ने कोटुक ब्राह्मण चो करे ठेबला। हुता रो रो तुलसीदास के मने मने कवित्व शक्ति चो बाटे मन लागली और हुन कविता मन लिखुक मुरियाला। मांतर हुन कविता के हुन मन दिन ने लिखते रोत तो राति हुन नींद का देते रहे। आठवां दिने तुलसीदास के सपना ने भगवान शंकर आदेश दिलो कि तुम्ही आप लो भाषा ने रचना के लिखा। तुलसीदास सपना दुखुन उठुन बसला हुनी समया भगवान शंकर और पार्वती पूरी इला। तुलसीदास ने हुन मंचो हाथ पाए जोड़ून पाए पढ़ला भगवान शंकर सांगला कि तू अयोध्या ने जाऊन रा और हिंदी ने रचना लिखा। मैं तुके आशीर्वाद दे से कि तू सफल हो से बलून होताले जाते गेला। देवे तुलसीदास हुन आज्ञा के मानून उपड़े धापड़े निकरला अयोध्या चो भाट ने। रामचरित मानस 1631 में देव युग हुन वर्ष रामनवमी इली त्रेतायुग ने राम जन्म चो दिन इली। हुनी दिने तुलसीदास श्री रामचरित मानस चो रचना के शुरू करला। ये रचना 2 बरख 7 माह और 26 दिन चो समय ने पूरा होली। हुन चो पाचे भगवान चो आज्ञा ले तुलसीदास काशी इला और भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा के श्री रामचरित मानस के सुनाला और राती के पुस्तक के विश्वनाथ मंदिर ने संगान दिला। बड़े बिहाने मंदिर चो दरवाजा खोलला और दखला की पुस्तक चोपरे सत्यम शिवम सुंदरम लिखु रे। शंकर भगवान चो चीना बले मिरली हुनी संगे समया सपाय लोग मन चो काने सत्यम शिवम सुंदरम चो आवाज के ली। ये गोट के सुनून काशी चो पंडित मन तुलसीदास के ईर्खा होला। हुन मन तुलसीदास चो बकना चकना करुक मुरियाला बदनाम कर तो खूब कोशिश करला और हुनिया समय पुस्तक के चोर तो काजे उपाय बनाला। दुई चोर के तुलिस तुलसीदास चो कुटिया ने पटाला। मांतर चोर मन दखला की बाहरी दुई सुंदर युवक धनुकांड के धरुन पहरा देश होत। हुन मन के दर्दकतों के हुन मन चो बुद्धि भ्रष्ट होली और सदबुद्धि ली और हुनी दिन ले हुन चोर काम के छानुन दिला। तुलसीदास सोचला कि भगवान के कष्ट होली और यही सोचुन आप लो पूरा सामान चमक के देन दिला और पुस्तक के आप लो जोड़ी डोंडरमल अकबर चो नवरत्न ने एकलो चो थाने संगान दिला। उन चो पाचे आप लो स्मरण शक्ति ले दूसरा रचना करला। ये पुस्तक के लोग मन ने मांग बाढ़ते गेली। ईर्खा पंडित मन के बल निपुरली मने मने और बल ईर्खा होते गेला। तुलसीदास के तो आखिरी ने विश्वनाथ मंदिर ने रलो सबले उपरे रामचरित मानस चो पुस्तक के सबले खाले संगाउन उन चो उपरे कुछ शास्त्र मन के संगाउन दिला। बड़े बिहाने मंदिर खोला दखला की श्री रामचरित मानस चो पुस्तक आपले आप सबले ऊपर रे। तेबे ईर्खा पंडित मन लाज पड़ुन तुलसी दास के माफी मांगला। असन तो खुबे रचना आसे तुलसीदास चो मांतर की मुख्य रचना मनाए रामचरित मानस कवितावली संकट मोचन राम ललान नछु वैराग्य संदीपनी गीतांबली करखा रामायण बरबे रामायण श्री कृष्ण गीतावली रीता रामायण पार्वती मंगल विनय पत्रिका झुलना जानकी मंगल सत्सई छंदावली रामायण रामाज्ञाप्रस कुंडलियां रामायण काली धर्माधर्म निरूपण दोहावली राम सलाका हनुमान चालीसा और बहुत सी रचना तुलसीदास ने करला।

आपलो समय ने गोस्वामी तुलसीदास के भारतीय और पश्चिमी विद्वान मन करलो रचना काजे कविता लिख तो काजे हिंदू समाज लेवल प्रभाव डाल तो काजे खूब सम्मानित करला। गोस्वामी तुलसीदास बिलवात ये संसार में कई प्रकार जो लोग आसोत रतो ढंग लगाए रब जो रहन सहन आए भिने भिने आत हम के सपाए लोग के गोठिया तो राय मिलुन मिसुन रतो राय जसन नाव नदी ले दोस्ती करुन आप लोग बाट बनावाए और पार करवाए असनी हामी बले नंगत कोट बात ले आप लोग व्यवहार चलन के नंगत चलाऊं ये संसार जो भंवर सागर के पार करवा। तुलसीदास असनी रचना करते करते 30 अगस्त 1623 ने वाराणसी ने आप लोग देह के छाणुन गेला। तो पिला मन ए रहे गोस्वामी तुलसीदास जो जीवन जो कहनी। तो ये कार्यक्रम सुन तो सब पै पीला मन के मैं जातो पूरे मुझो बाटले खुबे खुबे मया और लाड़।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पीला मन काजीगोट। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था गोस्वामी तुलसीदास पर। प्रस्तुति थी संतोष कुमार बघेल की। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय रात के 8:45 होने वाले हैं। अब समाचार संध्या हम आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ

0: भारत ने वायुसेना के दो जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अमेरिका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे और US ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान, किदांबी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपये है। गृह मंत्री ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया।
1: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को, जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
0: गृह मंत्री ने कहा कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों और इससे संबंधित तस्करी नेटवर्क के खिलाफ अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
1: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज कार्गो, डार्कनेट, क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
0: श्री अमित शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1,18,00,000 किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1,000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि समझौते में पात्र भारतीय पेशेवरों को ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत फ्रेजाइल 5 से निकलकर विश्व के सर्वाधिक संभावनाओं वाले देश के रूप में सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के हितों पर केंद्रित है। इस बीच श्री गोयल ने लंदन में HSBC के ग्लोबल ट्रेड सॉल्यूशंस के प्रमुख विवेक रामचंद्रन से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत UK व्यापार आर्थिक और व्यापार समझौते से कारोबारी विस्तार का परिवेश निर्मित करने के बारे में बात की। श्री गोयल ने कहा कि मजबूत व्यापार हित और सीमा पार बैंकिंग व्यवस्था के जरिए नए बाजारों में उद्योगों की मदद करने में वित्तीय संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए

ऑपरेशन अमिस्तात के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के दो विमानों से भेजे हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि अमिस्तात का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत सेना की फील्ड अस्पताल इकाई भी भेजी गई है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर और अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। इस बीच अमेरिका और खाड़ी सहयोग परिषद ने आज बहरीन के मनामा में एक मंत्रिस्तरीय बैठक में अपनी रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में यूरोपीय देशों के पत्रकारों के समूह से बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने भारत में क्रांतिकारी बदलाव और वैश्विक स्थिति तथा भारत और यूरोप के बीच बढ़ते संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने भरोसा जताया कि यूरोपीय पत्रकारों की भारत यात्रा से उनकी भारत और भारत यूरोप भागीदारी की संभावनाओं के बारे में समझ बढ़ेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यीजांग दे थापा से मुलाकात की। इस दौरान शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर चर्चा हुई। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि इस मिशन की गति भारत की बढ़ती वैज्ञानिक क्षमताओं और उभरती प्रौद्योगिकियों में वैश्विक के नेता बनने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि AI नवाचार, पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार विकसित भारत के संकल्प

0: में सभी राज्य विद्युत नियामक आयोगों और संयुक्त विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्षों के साथ नियामक मंच की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कहा कि विश्वसनीय गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, शिकायतों के त्वरित निवारण और व्यापार में सुगमता तथा जीवन यापन में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए एक पारदर्शी, पूर्वानुमानित और उत्तरदायी नियामक ढांचा अत्यंत आवश्यक है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 28 जून को नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। दो दिन के सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी तथा विशेषज्ञ समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित होंगे। बैठक में प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा और ग्रामीण भारत के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अयोध्या की एक अदालत ने राम मंदिर दान में कथित अनियमितता बरतने के मामले में सभी गिरफ्तार 8 आरोपियों को आज 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोपियों से 79,85,000 से अधिक रुपए बरामद किए गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्य कृष्ण मोहन ने कल प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कोलकाता के ताराताला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए SIT का गठन किया है। बचाव अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की। राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई, बेंगलुरु और विशाखापट्टनम में कई अभियानों में 23 करोड़ रुपए का 15 किलो सोना जब्त किया है। संगठित सोने की तस्करी करने वाले गिरोह से जुड़े इस मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान सूरत में 2 किलो कोकेन जब्त कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पिछले महीने से अब तक निदेशालय ने कुल 26 किलो कोकेन जब्त की है और 14 विदेशी नागरिकों सहित 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज देश भर में आशूराए मुहर्रम पूरे श्रद्धा और सद्भाव के साथ मनाया गया। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके समर्पित साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस अवसर पर ताजिया जुलूस निकाले गए, जिन्हें बाद में शाम को निर्धारित स्थानों पर दफनाया गया। मजलिसें या धार्मिक सभाएं भी आयोजित की गईं। इस अवसर पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में इस सप्ताह मूसलाधार बारिश की संभावना है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भारी वर्षा की संभावना जताई है। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर रविवार तक लू चलने की संभावना भी व्यक्त की है। इशू के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: और अब कुछ खेल खबरें। भारतीय निशानेबाजों ने जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान हासिल कर अपने अभियान का समापन किया। जर्मनी के सुहल में आयोजित इस प्रतियोगिता में भारत ने 7 स्वर्ण, 8 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 24 पदक अपने नाम किए। US ओपन बैडमिंटन में किदांबी श्रीकांत, रौनक चौहान सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुरुष सिंगल्स में रौनक चौहान ने चीनी ताइपे के चो तियन चेन को और किदांबी श्रीकांत ने मलेशिया के ली जी जिया को हराया। वहीं महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की तोंग सियू टोंग को हराया, तो रक्षिता ने चेन सू यू को पराजित किया और देविका ने थाईलैंड की टोन रुक साई हिंग को हराया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई मुकाबले में देर रात नॉर्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इराक और सेनेगल आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच इक्वाडोर, आइवरी कोस्ट, नीदरलैंड्स और तुर्की ने अपने अपने मुकाबले जीते हैं। अब अंत में मुख्य समाचार।

0: in the pistol and rifle events, bagging 7 gold, 8 silver and 9 bronze, leaving behind the individual neutral athletes who claimed 14 medals and Italy at third position with 10 medals. In badminton, India's Ronak Chahan created the biggest upset of the US Open tournament in Fullerton today when he pegged off world number 6 and men's singles top seed Shou Tian Zhen of Chinese Taipei in straight games 21-17, 26-24 to reach quarters. In another men's singles, Kidambi Srikanth registered a 21-14, 21-13 win over Lee Zijia of Malaysia to enter quarterfinals. In women's singles, Tanvi Sharma, Rakshita Shree and Devika Sehag also advanced to the last 8 stage, winning their respective matches. In men's hockey, India will face arch rivals Pakistan in its penultimate FIH Pro League match at the Lee Valley Hockey and Tennis Centre in London this evening. The match is scheduled to begin at 10:30 p.m. In men's cricket, hosts Ireland have set a target of 183 runs for India in the first T20 international match of the two-match series in Belfast. Put into bat, Ireland scored 182 for 9 wickets in stipulated 20 overs. In reply, India were 129 for 6 in 15 overs when reports last came in. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Home Minister Amit Shah launches 3-year vision document for narcotics control, calls for better coordination and use of technology to strengthen anti-drug campaign. Centre to deploy 1,000 advisory personnel across the country and upgrade trade portal to maximise benefits of India-UK trade agreement. Death toll in Venezuela earthquakes rises to 589. India sends 2 Air Force planes with emergency relief material. US and Iran agree to establish direct military communication channel to reduce risk of further conflict, says US Vice President J.D. Vance. And in US Open badminton, India's Ronak Chahan stuns top seed Shou Tian Zhen of Chinese Taipei to enter quarterfinals of men's singles. Kidambi Srikant and 3 women shuttlers also reach the quarters. That is all in the news at 9. Good night.
1: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय रात्रि के 9:15 हुए हैं। कार्यक्रम नंजर में प्रस्तुत है धनेश्वर दास से ली गई भेंट वार्ता। भेंट करता है बलबीर सिंह कच।
2: रेडियो सुन तो भाई बहन मन सबके सेवा जुहार। जसन की आमी आमचो ये नंजर कार्यक्रम ने कई कसन बल्ले ने अनुभव बल्ले जान तो वसन बल्ले ने आमचो भाई बहन मन संग गोट बात करुन बाती अपन मन के सुनाओ से कसन बल्ले काय की जीवना ने कई कसन बल्ले ने तकलीफ होए से चीपा होए से समस्या होए से ये तो होए से ची मानतर काय की शारीरिक रूप ने बल्ले जसन कई अंग जो है ना आमचो जो तकलीफ होए से चल तो फिर तो गोट बात ने मानतर काय की संघर्ष आरु मेहनत करुन बल्ले ने आप लोग जीवना के कसन आगे बढ़ातर होए से असने ची में आज ही गोड बात करें से तो सब ले आगे तुचो नाव आरु गांव चुनाव संग
3: दादा सब ले पहले तो मैं सुन तो भाई बन के जुआर करें से हर तुम केवल जुआर करें से
2: जुआर
3: दादा मैं मुझे गांव बोले में ग्राम सोनपुर बकाउंड ब्लॉक चंतर गति हुआ है बकाउंड 7 किलोमीटर दूर आते उन्हीं थन मुझे जन्म बारन होली और रही बात पुचापंग ये मुझो जन्म चो 2 महीना चो बाद असन होली जो कि पोलियो चो ड्रॉप नहीं पिलाल कारण ने
2: अच्छा
3: हाँ और ये मुझे बाबा बोले नाकेदार में रहला उन्हीं गांव में बाबा मनसंग में रहते रहले
2: अच्छा
3: हाँ
2: तो बोले ने ये पीला बेरा ले आए बोले तू चुने
3: हाँ पीला ही बेरा ले
2: अच्छा मतलब पाए ने अपन आसे भी
3: हाँ
2: अच्छा एक ही टन पाए ने बोले ने
3: एक ही टन पाए ने
2: अच्छा तो दक धनेश्वर दास ये सांग जसन की तू पीला बेरा ले जसन की अपंग होलिस मंत्र पढ़ाई लिखाई बोल तो कर लिस होती
3: हाँ पढ़ाई लिखाई तो ज्यादा तो नहीं पढ़ ले दादा 10वीं तक असनी पढ़ ले से
2: अच्छा
3: हाँ मुझे बाप जो नहीं पढ़ा तो खूब कोशिश कर ला लेकिन थोड़े परिस्थिति अलग रही मुझे बाबा सर्विस में रहे फॉरेस्टर में रहे तो बाहर बाहर रहते रहे तो मुझे 3-4 पत्नी चिकाने उन घर रहते बाहर बाहर रहते रहे
2: अच्छा
3: और मैं मुझे माँ छोटे समय ने 2 महीना जब रहे तो छाड़ून पढ़ा ली तो उनके बाद दादा दादी मुख संभाल ला
2: अच्छा
3: हाँ दादा दादी सहारा में मैं 6वीं तक गांव में ही पढ़ाई कर ले मिडिल स्कूल में और मिडिल स्कूल पास कर मत हाई स्कूल तक तो मैं ये जगदलपुर में ले मुझे बड़े बाबा बड़े माँ ये मन सब संभाल ला उन संग्रह में और जसने में पढ़ाई छाड़ ले 10वीं तक पढ़ते के आगे पढ़ूक नहीं सकले कल पढ़ते लोग

0: लिख तो लोग के का है, हर चीज चो सुविधा
1: हाँ
0: फैसिलिटी और जो मुझे जरूरत है पूरा कर तो करूँ पड़ू है, तो उस टाइप जो थोड़ी कमी रहते रहे। मैं हम बड़े बाबा मड़े मामन संग रहते रहे, मैं कहीं बोलूक नहीं सकते रहे, जितलो मन अपनों बाटले फर्ज बनते रहे उतलो पूरा करते रहला। फिर बल में कुछ कमी रही, आप बाबा पास रहो हम कहीं बोलूक होती
1: हाँ,
0: बोलूक नहीं सकते रहे, तो अब पढ़ाई में कुछ कमजोरी हो तो कारण में मैं पढ़ाई बोले आगे रुक नहीं सकले छाड़न दिले।
1: अच्छा,
0: जिसने मैं पढ़ाई छाड़ ले तो उसने एक बिजनेस कुछ कर तो भावना मुझे भीतर रही, और पहले लेवल में काम कर तो इच्छा ज़्यादा रहे कुछ ना कुछ करते रहे, तो मुझे शौक ज़्यादा रहे फोटोग्राफी लाइन।
1: अच्छा, फोटोग्राफी।
0: हाँ, तो ये मुझे खूब शौक रही, कैमरा शौकीन रहे और फोटोग्राफी करते, तो उन चीज़ के मैं कहे अपने शौक पूरा करता कहे कि उनके मांगन बातें में सीख ले। एक जन भाई रोत खास जान पहचान रह, तो हम मन लग गोट कैमरा रही जो कि रील वीती कैमरा रहे, और रील में 36 पोज बनते रहे।
1: अच्छा,
0: 36 पोज में दिन भर में घूम लूँ 36 पोज सारते रहे, तो सार लो में 360 रुपया बने, अब उनके मुख डबल करते रहे।
1: अच्छा,
0: हाँ, तो उन समय फोटो का है 4:6 बोलो में पोस्ट कार्ड साइज छो,
1: हाँ
0: उन साइज छो फोटो में ज़्यादातर चलते रहे, रील वीती कैमरा उन समय चलते रहे, तो उन फोटो मत में कहे 36 74 कर लो में मके 720 रुपया से कुछ बनते रहे, 720 में रील चो मुके 60 रुपया 160 असन नहीं करते रहे। फिर फोटो वॉशिंग करा तो कहे बोले उन्हीं थान ले मैं अपना मेकअप करते रहे एडजस्ट करते रहे, और जो पैसा बचते रहे 250 रुपया मुझे खर्चा चलते रहे।
1: अच्छा,
0: तो उसने मुझे शौक बढ़ते गेली ना, ये चीज़ ने अच्छा फायदा हो बोलते उनके मैं धीरे धीरे बढ़ा ले बढ़ाउन बाती। फिर एक दिन अपना स्टूडियो जो सबले पुराना स्टूडियो सपना स्टूडियो उनचो मालकिन रहे, उनसे अच्छा परिचय रहे, उन खुद अपने कैमरा के बल दे रहे जाओ काम लेके आओ बोलते। मैं हर एरिया में जाते रहे कैमरा धरम बाती, उड़ीसा तक गए थे।
1: अच्छा,
0: उड़ीसा जाऊन बाती काम आने उनके देते रहे, लेकिन उन मन कहे जैसे कि जहाँ मैं 150 में काम करते रहे तो 150 जगह में उनमें 200-250 मक धरे तो कुछ नहीं बात रहे।
1: अच्छा,
0: हाँ पूरा पैसा होनी मनने जाते रहे, तो दो चीज जो कमी रही मुझे लगे, एक तो फोटो फ्रेमिंग करतर फोटो प्रिंट करतर फोटो एडिटिंग जो कमी रहे, क्योंकि मैं दूसरा स्थान ले काम कराते रहे। अब उन चीज अपना पैसा बचाते का जी कुछ बचत करते का जी मैं खुद धीरे धीरे पास सीख ले।
1: अच्छा,
0: हाँ सीखन बाती फिर पाँच मुझे लग खुद जो कैमरा होली कैमरा हो तो फिर पाचे सरकारी योजना जो चलते रहे मुद्रा लोन मिलती हम बाटले अप्लाई करते के सरकार बाटले कुछ मदद मिली 50,000 कुछ तुम मैं कुछ सामान दिला, लेकिन असन समय फिर ली कि समय ने ये लॉकडाउन लगली।
1: हाँ हाँ, लॉकडाउन।
0: हाँ, लॉकडाउन समय ने मैं कोनी बट जाओ नहीं सकले कहीं नहीं मुझे सामान को दाम चो मौसी घर संग आउन दिले, पूरा सामान पूरा जाम होन गेले, चूहा मन खाद लकायत करला बर्बाद होन गेले, ये बोलून सामान असनी पड़ ली से जी।
1: अच्छा,
0: तो तेबले बोले मैं अपना जो धंधा है बिजनेस है उनके छाड़ूक नहीं चाह सर बोले बोले चले से ची मुझे।
1: अच्छा, हाँ, तो धनेश्वर दास दक बोले ने गोटोक विचित्र कहानी असनाए बोलूबे तो कि पीला बेराले तू चो माए बाप चो कहीं लाड़ प्यार आरो सहयोग नहीं
0: दादा नहीं
1: आई कि नहीं भले ने तुझो मेहनत तुझो मसागत और तुझो बल्लेस की बड़े बाबा माए घर रोहन बाती पढ़ा लिखा कर लेस।
0: हाँ।
1: मंत्र दक तु 10वीं पास करुन बाती फिर ये जोन तुझो
0: शौक
1: फेल होली। हाँ, दसन की तु फिर जोन शौक तुझ रहे कैमरा फोटो खींचते भी थी, अरे बोले कि तु मतलब उड़ीसा बाटे बोले कैमरा धरून जाते रहे बोले, तो साधन काय नहीं जाते रहे इसने बाटे में?
0: साधन पहले मुझे लगे कुछ साधन नहीं रही, बस उसमें बल जाते रहे, बस में जाऊन बात उतरून फिर 2-3 दिन में कुछ ठेबुक बल पड़ते रहे।
1: अच्छा,
0: उतरून धीरे धीरे बोले 1-2 किलोमीटर पहले चलते रहे पैदल बोले जाते रहे मैं।
1: अच्छा,
0: पैसा के सहारा में 1-2 किलोमीटर पैदल बोले जाते रहे।
1: अच्छा,
0: हाँ, ये तो समाज कल्याण बाटले में कुछ साधन मिलली से।
1: अच्छा,
0: हाँ,
1: का है उन ट्राइसाइकल?
0: हाँ, मोटर राइसाइकिल बोलते एक नाम से मैडम रला वैशाली मैडम वाल जिनकी महाराष्ट्र रला ये मुझे ट्रांसफर होली नारायणपुर क्षेत्र में मुझे खूब खूब मैं आभारी आसे मंच द्वारा मके रतो का जगह बल मिल रे और साइकिल बल दिला ला।
1: अच्छा,
0: हाँ मातर फोटो प्रिंटर जो सामान खराब उन चीज अप्लाई करते उन चीज मुझे पूरा हो नहीं सकली।
1: अच्छा,
0: हाँ, उन्हें कमी आ।
1: अच्छा, तो समाज कल्याण बाटले बोले उन मोटर जो साइकिल बोले।
0: हाँ,
1: और कहीं ठान घर का ही मिल ली से का मिल
0: ली नहीं से? घर देव रहा फिर बोलू था सरकारी चीज है हम चुके कुछ अधिकार नहीं उन खाली करा तो खाली कर दिलो।
1: अच्छा,
0: हाँ
1: हाँ, बोले इसने काम कर तो काजे देव रहा बोले।

0: तो बोले ने एबे बोले ने ओनेच काम कर सकती है जैसे
1: हाँ
0: फोटो
1: फोटो
0: को।
1: ही काम कर रहे हैं दादा।
0: अच्छा
1: हाँ
0: हाँ, तो बोले ने एबे कसन कहाँ तुझे रह तो कहाँ हो ऐसे कहीं घर
1: रह
0: बना ले।
1: तो मैं भी धर्मपुरा पीजी कॉलेज सामने
0: हाँ
1: जहाँ चौकी आ से चौकी जो लोकमान्य तिलक वार्ड बोलवा उन थाना से किराए में रहूँ और किराया के रेट थोड़े महंगा पड़े से मके 5 1 हज़ार पड़ुआ। फिर बोले आप उन मेंटेनेंस कर रहे से मैं मुझ परिवार मुझ बाबू आ एक ठन मुझ पत्नी उन तीनों परिवार होनी थान रहूँ।
0: अच्छा,
1: हाँ
0: तो जैसन कि तुझो जोन पत्नी है बल कहीं करे से काम वगैरह
1: नहीं
0: का।
1: उन कुछ नहीं करा मल विकलांग है यहाँ कले।
0: अच्छा, उन मल विकलांग है।
1: हाँ
0: हाँ, तो दक्कत बोले तू दोनों चो तकलीस बोले ने शारीरिक रूप ने आसे है कि
1: हाँ
0: नहीं। तो ये फोटोग्राफी ने बोले ने उतलो तुम चो जीवना चो इतलो तू कि मेरे से जैसन कि किराए ने बोले आसे ऐसे था।
1: हाँ तो कोशिश कर लो मेरे भाई भले कुछ अप डाउन उतर तले ऊपरे तो होते चीर हुए
0: हाँ,
1: फिर बोले एडजस्ट कर पड़ भाई
0: अच्छा।
1: उन्हीं का जे फिर उन दिन जौन बाती मैं साहब के बोले अप्लाई कर लेस बैंक साहब के ये भी जो योजना चले से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना उन बात उनका बोले मैं अप्लाई कर ले से तो बैंक मैनेजर साहब से बोल बात होली से हक दिला से
0: अच्छा
1: अगर उमन बाटले कुछ सपोर्ट मिलो फिर अपना काम के आगे बढ़ा तो मुझे विचार आते।
0: अच्छा
1: हाँ
0: तो ये भी जैसन की फोटो खींच तो बीती लेमिनेशन बीती ये पूरा मतलब ये भी कसन कर सी तो सामान जैसन की
1: सामान
0: खट।
1: मुझे लगे सिर्फ लेमिनेशन आसे लेमिनेटर आसे।
0: अच्छा,
1: हाँ फोटो फ्रेम तो हूँ तो मटेरियल है।
0: मटेरियल है।
1: हाँ
0: हाँ
1: प्रिंटर उन खराब हुई से मुझे जो कैमरा रहे
0: हाँ
1: वीडियो भी थी उन खराब हुई कैमरा उन खराब हुई कैमरा के साल 2 साल ले ज़्यादा चल रहा लेंस क्लियरिटी इतना नहीं है हुआ है
0: अच्छा।
1: बदलुक पड़ हुआ है वारंटी इतना नहीं हुआ है उनको। हाँ तो उन
0: अच्छा,
1: सामान भी मुझे लगे नहीं आए।
0: नहीं है तो
1: हाँ
0: ये काम कहाँ लेकर इस पे लेमिनेशन वगैरह ये सब फोटो को
1: ये
0: निकलाते
1: लेमिनेशन मैं खुद करूँ है
0: खुद
1: घर ही
0: कर।
1: करूँ है
0: अच्छा, आप फोटो प्रिंट निकला तो भी थी।
1: फोटो प्रिंट करते हैं उन पीजी कॉलेज सामने आते मोहर स्टेशनरी बोलते गोटे।
0: हाँ,
1: हाँ स्पोर्ट्स एंड स्टेशनरी उन थान ले मैं प्रिंट निकलाती खुद करूँ है।
0: अच्छा।
1: हाँ
0: हाँ, तो जैसन कि तुझ लोग भी कहीं असन रोतो कहीं दुकान असन असन कहीं बोल ठान बोल नहीं आए होती तो असन
1: दुख
0: जाऊन बाती बोले फोटोग्राफ खींचे बस बाहर ही जाऊन जाऊन का
1: हाँ
0: कसन।
1: बाहर ही बाहर जाऊँ मैं गाँव
0: अच्छा
1: गाँव ने।
0: अच्छा गांव गांव ने।
1: हाँ गाँव गाँव जाऊन बाती खींचना ना जैसे ने भी कुछ फोटो मुझे लगा से।
0: हाँ, तो ये सब के बोले ने गांव गांव ने फिर तू सांग हुआ भुगता जाऊन बाती।
1: हाँ सांग हुआ और जहाँ जहाँ मुझ परिचय मन बनाते गए थे
0: हाँ,
1: वो मन बल दख लो मग जानत कि ये
0: अच्छा
1: फोटो बीता है बोलते
0: अच्छा
1: तो मन खुदे आप लोग पुराना आसन फोटो मन रलम निकरान मत देवत बाबू एक बनाऊन दे
0: हाँ
1: बोलते तो ऐसनी ऐसनी कई जगह में बुलू है
0: अच्छा
1: ये फोटो मन सब बना तो बीते मन।
0: अच्छा
1: हाँ
0: हाँ, तो ये सब फोटो जैसन की खींच सीच लेमिनेशन कर सी चुपल कहीं साइज हिसाब ने उनचो कहीं रेट रहे से
1: हाँ दादा
0: कसन
1: जैसे
0: कसन।
1: कि ये फोटो एक बोला 4 6 जो
0: हाँ
1: पोस्ट कार्ड साइज एक 8 12 जो बोर्ड में हम लेमिनेशन करवाऊँ असन फ्रेम करवाऊँ
0: हाँ,
1: तो उन हिसाब में मैं रेट लगा मैं 250 रुपया।
0: अच्छा
1: हाँ 250 अपना हिसाब में लगा पड़ो
0: हाँ
1: और ये सिर्फ कॉपी होलो में 8 12 जगह बोलवाऊँ A4 में तो एक कॉपी उन लेमिनेशन करूँ 150 रुपया दिल में पड़ो है।
0: अच्छा
1: हाँ
0: अच्छा एक कापी चुने। हाँ, तो दक बोले ने जात्र लेने बोले ने आस पास कौन कौन बोले ज़्यादा कौन ब्लॉक वगैरह ने कौन गांव मन बांटे जाए से ना।
1: मैं ज़्यादा दादा एक बार बनिया गांव 1 महीना तक रह ले मैं
0: अच्छा
1: केसरपाल बनिया गांव।
0: अच्छा केसरपाल बनिया गांव।
1: हाँ 1 महीना लगातार मुझे चल ली
0: हाँ,
1: और उनके बाद में मैं अलग अलग एरिया जाऊँ।
0: अच्छा
1: हाँ हफ्ता दिन 2 हफ्ता 4 दिन टाइम निकल रहा हूँ मैं।
0: अच्छा
1: हाँ हफ्ता में रूट बनाऊ है एरिया जाता तो एरिया में 1 हफ्ता इतवार या शनिवार गेलो फिर अगले हफ्ता शनिवार इतवार को जाऊँ है
0: अच्छा
1: अलग अलग जगह से मैं अपना रूट बनाऊँ।
0: अच्छा
1: हाँ
0: भले जाओ हम बाटे एक सप्ताह 2 सप्ताह ठेबुआ सुनी बाटे।
1: नहीं नहीं ठेबे
0: अच्छा
1: मतलब एक दिन जाऊँ 1 2 दिन काम करूँ वापस ऐतो रहे फिर
0: हाँ
1: हफ्ता दिन मन टाइम देव रहता रहे
0: हाँ हाँ
1: हफ्ता दिन में पूरा काम अपना कंप्लीट करूँ बाटुक जाता है।
0: अच्छा
1: हाँ
0: हाँ, तो बोले नहीं चुका पूरा तुरते तो के जो पैसा वगैरह मेहनत था मेरे से होती ना
1: हाँ हाँ तुरते मेरे दे
0: मेरे से।
1: मेरे से
0: अच्छा, जसन की बाहर ही जायसीस तो तू जातर बोले समय तो लागे सी है
1: समय लागे दादा
0: कि नहीं।
1: समय लागू है।
0: तो जसन की तुझो खाना पीना है
1: हाँ
0: रतुआ ये कसन
1: हाँ
0: करसी साले उन माटे।
1: नहीं खाना पीना का जैसन ये लोग चुका जो अलग ले निकला पूरा नाश्ता पानी या कोई होटल होटल देख लो खा दिले या फिर परिचित लोग मिल रहा तो होनी मंथन बोले ठेबू फूड है 2 4 आना दे तो धर तो लोग धर ऊपर नहीं धर तो लोग नहीं बोल धरत
0: अच्छा
1: व्यवस्था होनी थन बोले हुए
0: हाँ हाँ
1: और एक दो दिन ठेबुक बोल

0: पूर्व है।
1: अच्छा
0: हाँ
1: हाँ हाँ तो धनेश्वर दास रखतुके आसन जसन की विकलांग बोले आस इतलो मेहनत मसागत कर सी तो बोले ने कहीं मन ने सन कहीं झंझट एकदम कहीं नहीं लागे।
0: नहीं दादा ये तो झंझट तो नहीं लागे, हालांकि थोड़े परेशानी तकलीफ तो हुआ है। जब तक हम परेशानी और तकलीफ की नहीं झेलू तब तक आगे हमके उनचो मतलब सुख जो अनुभव नहीं हुए।
1: नहीं हुए
0: सुख मिल तो पहले तकलीफ तो ऊँची है।
1: हाँ हम तो आए थी।
0: हाँ
1: हाँ
0: तो ये मुझे पहले ले आदत है उनके लिए।
1: हाँ
0: इसने मेहनत करते कुछ भी तकलीफ मिल हम झेल तो।
1: हाँ
0: तो मैं अपना तकलीफ का के संग हुए
1: हाँ
0: नहीं
1: तो
0: संग
1: है।
0: मैं खुद उनके
1: हाँ
0: झेल तो आदत बनल।
1: हाँ हाँ बोले ने पिलार बेराल तू तू तकलीफ ने ची सहते ही ली सही कि नहीं।
0: हाँ दादा काय करूँ।
1: हाँ तू बोले ने दख धनेश्वर ये भी बोले ने यही जो फोटो बीती ग्राफी बीती आए कि बड़ा तो काजे और विस्तार कर तो काजे संगति बैंकन बोल जाओ नहीं बोल से
0: हाँ
1: और तू चो काय सोच आसे कहीं असन को नहीं लगा सन दुकान असन जसन बना से कि कसन कर से काय
0: मुझे सोच तो दादा परमानेंट स्थायी दुकान बना तो विचार ही आते कसम बोले ये असन समय है कि स्थायी ये भी कर लो। मैं इतना मुझे लगे ये जो मार्केटिंग नहीं बढ़े ये चूंकि अच्छा पहले सो तो रहते।
1: अच्छा
0: हाँ और जो जगह मैं आसे उन तन मन को उम्मीद नहीं है इतना बड़े दे बोलते फिर बोले चले दे जहाँ तक हम चु गुजारा खर्चा ये सब चीज़ चले दे बाहर गेलो में काम में रुचि है।
1: अच्छा बाहर गेले ने
0: हाँ
1: काम मेरे से
0: काम मेरे दीजिए।
1: अच्छा
0: हाँ
1: तो ये भी जैसन कि तू ये भी धर्म पूरा किराए ने आसे बोलसे तू चो जोन रतो तुम चो जोन मूल गांव आए बोले भी बकावन सोनपुर आए बोलसे
0: हाँ
1: है कि नहीं। तू ये बाटे जाऊन रतो असन कहीं तुम चो खर पुर का बेराज कहीं खेती बाड़ी वगैरह।
0: हाँ आशी दादा हम थाने मुझे दोनों दादा दादी जो थोड़े बहुत जगह जमीन आ से जहाँ मुझे बचपन आ बीतली से ज़्यादा नहीं है 3 एकड़ असनी खेती हुए दे और जोन बाड़ी है उन भले 25-30 डिसमिल असनी हुए दे
1: अच्छा
0: घर बाड़ी।
1: हाँ हाँ
0: हाँ उन थान लेके हम 6 भाई हूँ से
1: अच्छा
0: अलग अलग माचो अलग अलग कहे थे
1: अलग
0: उनसे
1: अलग अच्छा
0: अलग अलग आते
1: हाँ हाँ
0: तो उन भले हम चो कुछ
1: हाँ
0: मतलब पूर्ति ही नहीं हुई।
1: नहीं हुए अच्छा
0: उन्हीं कहा मैं अपना विचार बनाऊँ ना अलग रह तो कुछ पहले पहल कोशिश करते रहे
1: हाँ हाँ
0: कि ये सब चीज़ आम के पूर्ति तो नहीं हुए
1: नहीं हुए हाँ हाँ
0: कहीं ना कहीं और थोड़े बहुत धर दर्शन जमाऊ रहे बोलते मोचो विचार।
1: अच्छा हाँ हाँ बोले ने तुचो जीवना का जे तुचो गुटुक अलग सोच अलग विचार है कि नहीं।
0: हाँ
1: खुदे आत्मविश्वास उन बातें खुद चो उन्नति बाढ़ती काजे बोले ने तुझ खुद मेहनत मसागत कर सी बोले
0: हाँ दादा
1: है कि नहीं। सरासरी ने बोले ने तुची असन कईक विकलांग भाई बहन मन बोले आसोत नाले असनी बोले आसोत जोन पढ़े लिखे होन बाती जोन बेरोजगार अवसा तो असन लोग मन के बोले तुच बाटले कहीं बोलुक चाहे से।
0: हाँ दादा जसन मुझे असन कई लोग तो आते हैं मैं जाने से तो हम उनके मुझे बाटल यही बोलुक चाहे से अब केबी भी विकलांग वालों में या फिर शारीरिक कमजोरी के धरून बात ही अपने आप के कमजोर नहीं समझ रहे। हर आदमी भीतर एक ठन कला रहू है अपना एक ठन शौक रहू है उन्हीं शौक के अपना जीव तो साधन बना सकूँ। अब उन चीज़ में उत्साहित और उन चीज़ का तो इंटरेस्ट धर लो में जीवन के रास्ता सरल हुआ है। कभी भी अपने आप के कमजोर नहीं समझ भाई बहन मन मैं तुमकी यही बोलूँ चाहें से कहते बोली ये मुझे भीतर ये जी भावना और ये शौक रहे यही चीज़ आज मुझे जीवन जो साधन बन ली और आज ही इतलो मुझे कहीं परेशानी नहीं आए।
1: तो अलना धनेश्वर दास तुझ संग इतलो अच्छा गुड बात होली तुझो जोन मेहनत मसागत कर तो भी थी ये सब कहने के सांगलिस तुझे असन कई कसन लोग मन आसोत जसन कि शारीरिक रूप लेकिन एक अच्छा नंगत रोलेबल का है कि हुन मन असनी फोका बुलुन बुलुन रहसत का मेहनत मसागत नहीं कर सोत मंत्र तु इतलो शारीरिक रूप ले बोले अपंग होन बाती जोन तुझ सोच आए बोले ने गुटुक मेहनत मसागत करुन बाती जीवना के हरी कुदिम ने कर तो जोन विचार आए ये बोले ने लोग मन के सीखतो सनाए उन मन प्रेरणा मार्ग न धरतो सनाए इतलो अच्छा तो चुप कहने के सांगलीस आल खूब खूब जुआर ना जी मैं।
2: अभी आप नंजर कार्यक्रम में भेंट वार्ता सुन रहे थे। धनेश्वर दास से बातचीत कर रहे थे बलबीर सिंह काज। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है।
3: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
4: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट

0: appropriate choice.
1: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। अब सुनिए खेल पत्रिका। आज इस कार्यक्रम में सुनिए नमिता बघेल से ली गई भेंट वार्ता। भेंट करता है बलबीर सिंह कच्छ।
2: रेडियो सुन तो भाई बहन मन सपाय के सेवा जुहार। खेल पत्रिका कार्यक्रम ने आज यहाँ में फिर असन गोटो खिलाड़ी नौनी संगे भेंट गात करूँ से एमन खुद तो खिलाड़ियात मानतर संगे संग काय कि कई कसन खेल मन के सिखातो काम बल करुआ। सब ले आगे तुचो नाव सांग।
3: मुचो नाव नमिता बघेल।
2: नमिता बघेल।
3: हाँ नमिता बघेल। अच्छा। मैं बस्तर ले रहे तो बीती हैं।
2: हाँ हाँ तो नमिता बघेल ये सांग जसन की बल्ले ने आगे तु ही सांग बल्ले ने एबे बल्लन काय कर सकते
3: एबे एबे तो मुझ पढ़ाई चले से और संगे संगे मैं पीला मन के सिखाऊं बोले हैं कराठा कराठा सिखावा है जूडो सिखावा है और आगे कसन मतलब आत्मरक्षा करते रहे खुद चो खासकर लेकी मन का जे मैं ये सिखाते मतलब आगे सिखाए
2: सिखाए से। अच्छा तो ये भी पढ़ाई बोले ने काय
3: मैं ये भी एमए ने आसे
2: एमए
3: हाँ एमए करें से
2: काय सब्जेक्ट दले से
3: हिंदी साहित्य ले करें से
2: हिंदी साहित्य
3: हाँ
2: तो जसन की ते बोले से पढ़ाई बल कर सीस
3: हाँ
2: और जूडो कराटे सिखाए से तो सबले पहले सांग तू ये जो आए जूडो सुराटे
3: हाँ।
2: जूडो कराटे
3: कराटे
2: कहाँ ले सीख ले
3: ये मैं स्कूल बेराल सीख ले आम चो थान बल जसन मैं ये भी सिखाए से उसनी आम चो स्कूल ने बल गोटक मैडम इतरे आम चो कोच हुन सिखाए मोके फिर उसनी फिर हुन एकेडमी ले जुड़ते गए ले मैं फिर एक टाइम ऐसा नहीं ली कि स्कूल गेम हुआ है आम चो तो हुन लेवल में पार होते गेले और मोचो क्या सिलेक्शन होली स्टेट राज्य स्तरीय खेलने जूडो नीचे तो हुताबल में जीतले गोल्ड मेडल आनले फिर हुनचे बाद ले गेले में दिल्ली नेशनल खेलुक
2: फिर और एच संग संग और दूसर बल खेल
3: हाँ और एच संग संग में खेल ले से बॉक्सिंग खिनिक जाने और कुश्ती खेल ले से और कॉलेज ने मैं कबड्डी खेले और
2: अच्छा
3: कबड्डी क्रिकेट हाँ
2: तो ये तो अच्छा है मंत्र सबले पहले सांग की जैसन की जूडो खेल है बोले कराटे बोले का है कि गांव चो लोग जोगे नहीं जानो है कि नहीं कबड्डी खो खो के तो जानो मंत्र ये कसन बीती हो ऐसे ये चो मतलब का है खेल
3: कराठा बोले जैसन आज चो आजकल चो देश दुनिया तो लेकिन मन संग कितरो काय काय हो ऐसे तो हुन हिसाब ले देखें बोले कराठा सबले अच्छा चीज है कि हुन मन खुद के मतलब बचा सकोत जसन छेड़छाड़ होए से और जितरो बल्ले की मन संग व्यवहार होए से हुन मन खुद के बचा सकोत खुद लड़ुक सकोत मारुक ए मतलब कराठा सीख ले कौन हाथ ले कसन मारत रहा है कहाँ मारत रहा है ये सब जानकारी मिले से पाए चो यूज कहाँ करुआत पाए ले कसन मारुआत कौन हिस्सा ने मार ले कसन पावा ये सब चो ये सब चो जानकारी मन दिमाग में पीला मन के और बड़े लोग के मन हाई स्कूल चो पीला मन के भी दिमाग
2: अच्छा तो ये सांग जैसन की ये चो जो कराठा जन सिख तो का जी है बोले जैसन की क्रिकेट वगैरह बहुत सारा सामान मन लागे से
3: हाँ।
2: तो उसने भी इतना बोले
3: ए चुका जो टुक ड्रेस मिरु है उनके कराठा लोग पिंदुर वाट सफेद ड्रेस रु है तो हुन चो और एक बेल्ट रु है हुन बेल्ट बल्ले आम चो हुन भगवान है बेल्ट हाँ
2: अच्छा
3: तो हुन जहन हमी पहली दूसरी पढ़वाऊ तो उसन हुन चो कलर हिसाब ले आगे क्लास बढ़ते जावे है हुन चो
2: अच्छा
3: सबसे पहले व्हाइट बेल्ट हुआ है फिर पीला हुआ है फिर ऑरेंज हुन चो पेपर होते जावे हुन चो पेपर देते गेले आगे प्रमोशन जसन हुआ है तो उसनी आम चो बल क्लास में बढ़ते जावे फिर सीनियर जूनियर बनावत हुन
2: अच्छा तो ये जसन की बेल्ट भी थी बल्ले से जसन की पहली कक्षा दूसरी कक्षा असन है तो जसन की ये कसन पढ़ाई हुए से बेल्ट भी थी एक ले
3: ये जो कराठन ची हुआ है जसन करुण दकातरा हुन जो काता बुलवात जुनुनियो बुलवात उनके करुण दकातरा है हुन जो उन अच्छा करत नहीं उनके फिर आगे बढ़ाते जावत
2: अच्छा
3: असन लिखित परीक्षा असन पढ़तो बीती तो नहीं हुए मानतर फिजिकली करुण दकातरा है
2: करुण दकातरा अतला अच्छा बोले ने एता जसन की मान लो पहला साल जोन करे से तो उनके बोले किठान असन जोन सिख तो बीती है कितना ना समझाएँ
3: सिख तो बीती तो उन में ना है पंच शरीर ने कसन मारत रहा है कसन मुट्ठी बांध रहा है और लात कसन मारत रहा है आगे ये शुरू तो ये चीज सिखावत और खुद के कसन बचात रहा है अगर सामने ले कोनी अटैक करे तो कसन बचू हाँ सुन चीज ले ये सब सिखावत

0: ने।
1: अच्छा, और फिर दूसरा बेल्ट बिल्ट में।
0: दूसरा बेल्ट ने फिर हाथ पाए मजबूत करते रहे
1: हाँ
0: कि
1: हाँ
0: होता फिर हाई क्लास ये इतने जवाए पंच फिर खातर बलाए मारतर बलाए आगे लोग के
1: अच्छा
0: तेवे हाथ पाए मजबूत बने से।
1: हाँ हाँ
0: और मुरुम ने कराठा मतलब पुशअप मारतोर और पंच मारतोर ये सब हुआ फिर आगे आगे उसने बढ़ते जवाए। और
1: अच्छा हाँ हाँ बोले ने अलग अलग सीख तो जोन तरीका मनाए
0: हाँ
1: ये सब आसे।
0: ये सब आसे
1: अच्छा तो इस संग संग देख बोले ने खान पान चो बोल कहीं असन ज्ञान दे
0: नहीं खान पान चो तो उतरो ज्ञान नहीं देव।
1: ऐसा।
0: हाँ
1: अच्छा बोले ने खान पान असनी
0: हाँ
1: साधारण।
0: साधारण है खान पान जैसे नामी आदिवासी लोग खाऊं से
1: हाँ हाँ
0: उसी।
1: अच्छा उसने यार
0: हाँ
1: नहीं तो कहीं लोग बोलो खेल उल का कहीं डाइट वेट चुका तो।
0: नहीं नहीं असन तो कहीं ना मतलब उन खेल तो चिबेरा जैसे नाम खेलू जाऊं से कहीं बाहर तो आप लोग वजन के खिनिक संगात रहे उन खेल तो जितरो वजन ने हम खेलू से वेट हिसाब ले खेला वजन हिसाब ले तो हुन वजन जो हुन पाट नहीं होता रहे ना कम होता रहे।
1: अच्छा हाँ। तो बोले तो ये कौन बेल्ट तुक मेरे लिए से भी
0: अबे मैं पर्पल बेल्ट ने आसे अभी।
1: पर्पल बेल्ट।
0: हाँ
1: अच्छा बोले कितलो नंबर भी थी बेल्ट आए
0: 4-5 नंबर भी थी।
1: 5 नंबर भी थे।
0: हाँ
1: अच्छा एच ऊपर बोला और आसे।
0: और आसे था और एच ऊपर फिर ग्रीन बेल्ट आसे फिर ब्राउन बेल्ट आसे फिर ब्लैक बेल्ट आसे
1: अच्छा
0: और 3 बेल्ट और
1: हाँ।
0: बाजली से।
1: तो ये सुखा तो कहीं प्रयास।
0: नहीं प्रयास तो वे करें से फिर धीरे धीरे प्रयास जारी आसे मुझे
1: हाँ। तो दक हाँ काय सुनीता काय
0: मनमिता वगैरह
1: नमिता।
0: नमिता।
1: हाँ नमिता बघेल तो इतो इतलो अच्छा बोले ना गाँव ने रोन बाती सीख लिस मानते रह दाएँ संगे संगे पढ़ाई और फिर सीखा तो बोल काम
0: हाँ
1: करे।
0: सीखा तो वाल काम करें
1: अच्छा
0: इसमें
1: बोले कहाँ सीखा हुआ से।
0: एबे बस्तर ने सिखाए से एबे तो शुरू नहीं ए साल जो जो योजना है हम शुरू नहीं हुई होली से योजना अंतर्गत बल्दे सरकारी योजना है गोटोक रानी आत्मरक्षा कन्या प्रशिक्षण।
1: अच्छा
0: हाँ बालिका कन्या प्रशिक्षण करूँ ना तो योजना शुरू होले तो आम के पटावा थरी स्कूल ने अलग अलग जितरो वाला मियाँ सूँ तो अलग अलग स्कूल में पठा जावा तो मैं बस्तर क्षेत्र ने मैं क्षेत्र ने मैं पीला मन के सिखावा है हाई स्कूल और मिडिल स्कूल जो लेकी मन के सिखावा है मैं
1: अच्छा हाँ हाँ हाँ
0: तो
1: तो बोले नेचो बोले सीखा तो भी थी कसन सरकार बांट ले रहे से कि तुम।
0: इस सरकार मतलब जो माम चू मान दे आए हुन सरकार बांट ले ऐसे
1: हाँ
0: और सीखा तो भी थी तो आमी जसन सीखूँ से
1: हाँ
0: और आमी आम चुलक जो नॉलेज आसे जो जानकारी आसे हुन आमी पूरे चुलक के देऊँ से।
1: अच्छा हाँ हाँ बोले ये भी किट्ठा न सन स्कूल की तुम सीखा
0: स्कूल
1: तो
0: एबे 10-15 ठन स्कूल ने तो होली से मुझे।
1: आसन।
0: हाँ
1: अच्छा बोले ये सीख तो का जो बोले कौन टाइम कौन समय नंगत रहे से जाले।
0: ए सीख तो का जे जसन बिहान बल काय तो रह से और बिहान बिहान बल्ले जसन सुबह टाइम ने तो बॉडी काय तो रह से उदल दाए तो उदल दाए बल कर सकूँ और शाम के टाइम ने
1: अच्छा
0: और प्रैक्ट। हाँ सुबह शाम
1: अच्छा हाँ। तो बोले ने हर समय मतलब एक ही टाइम ने एक ही स्कूल आए कि दूसर बोले
0: नहीं स्कूल मन ने तो सरकार बाटले आदेश ली कि हर स्कूल ने एक एक घंटा सिखा देती है
1: अच्छा
0: तो उन हिसाब ने देख ले एक एक घंटा ने तो सब स्कूल ने काय तो करुक नहीं हुए मानतर अलग अलग दिन ने अलग अलग स्कूल ने असन
1: अच्छा
0: सिखाऊ।
1: हाँ हाँ बोले ने हर दिने सब स्कूल ने नहीं अलग
0: हाँ
1: अलग दिने अलग
0: अलग अलग
1: अलग स्कूल
0: स्कूल
1: ने।
0: ने असन टाइप जो हुआ है मतलब और
1: अच्छा
0: 1 लाख की दीवार 7-5 7-8 ठन स्कूल तो 1 लाख तो कवर करी नहीं हुई इतरो स्कूल के तो
1: हाँ हाँ उन
0: अलग
1: तो है
0: अलग दिन ने असनी
1: हाँ
0: करते जाऊँ
1: सिखाता
0: मैं।
1: रहो
0: हाँ
1: जम।
0: सिखाता रहो ऐसे।
1: हाँ। बोले ने दख तू सीखा इस गाँव चो लेखा लेखी मन सीख तो का जे खाली लेखी
0: हाँ
1: मन किया है वे।
0: हाँ ये तो लेकिन मन क्या है मात्र जो लेका मन बल ऐसो सिखाम बल सिखाऊँ बल उन मन के मैं नाई नहीं बोले या तुम बल सिखा बोलवाए तुम चो काज बल जरूरी है बोलवाए
1: अच्छा
0: और सिखाए उन मन के बल।
1: हाँ हाँ तो कसन रुचि
0: हाँ
1: असाद
0: रुचि तो धरुआत पीला मन
1: अच्छा
0: नया चीज आए और गांव के लोग अधिकतर नहीं जानते चीज के
1: हाँ
0: तो नया चीज कहीं सीखू को मीरे से बल्ले दख तो लोग बल ज्यादा ऐसो तब सीख तो काज बल हरी खुआत पीला मन
1: हाँ हाँ
0: नया चीज के सीख तो काजे।
1: अच्छा दख तुई तो ये भी सीख ली सारू सिखाई सी बोले थू तू के खुद के कसन लागे।
0: खुद के तो मके खूबे अच्छा मतलब खुश एकदम खुश लगुआ है कि मैं इतरो इस ए लायक बनले कि मैं आगे और लोग मन के सिखाए से
1: हाँ
0: तो खुद सोच ले हरिक लगुआ मैं कहाँ रहे और कहाँ मर ले
1: हाँ
0: असन
1: मर ले।
0: लगुआ
1: अच्छा हाँ हाँ हाँ तो आए थे
0: है।
1: बोले ने कुछ जो देहें पाए काज बोले एकदम
0: हाँ शरीर काज
1: सरे।
0: वाले एकदम सुस्त एकदम स्वस्थ लगुआ एकदम।
1: अच्छा हाँ। तो धक्का और कबड्डी बोले खेलते नहीं बोले से।
0: हाँ कॉलेज ने खेलते रहे कबड्डी
1: अच्छा तो ऐसे बोले कोनी बाटे बाहरी बोल खेल
0: नहीं
1: ले।
0: बाहरी उन चो बाहरी नहीं गेले से मैं कबड्डी चो जूडो चो।

0: गेले से जुड़ो करा ठका जे।
1: अच्छा
0: तो एक हार जाऊरे में बालोद जाऊरे और एक हार दल्ली राज रहा जाऊरे इस्टेट राज्य स्तरीय होली। और बालोद ने फिर गोल्ड मेडल आने में सेलेक्ट होले। फिर एक हार जगदलपुर ने बल हो रहे फिर मुख पटाला दिल्ली नेशनल खेलू गए हुता पटौर हो।
1: अच्छा तो होता कोई नंबर वगैरह ही ली
0: नहीं होता तो नहीं आनुक
1: नहीं आ नुक
0: सकती।
1: सकली। अच्छा राज्य स्तर तक तो ले
0: हाँ
1: मंत्र नेशनल ने तो अमर लिस्ट बोले।
0: अमरलीस
1: हाँ, तो ये तो खूब अच्छा है। नमिता बघेल लग तो देश स्तर ने तुझ जो प्रतिभा किया है
0: हाँ
1: अमरालिस। हाँ भले ने एक हार सफलता नहीं तो
0: हाँ मैं
1: दूसरा।
0: चाहे से क्या पर मैं नहीं करुक सकले हुन मचो जो मैं जो उनके सिखाए से हुन मन जाओ तर उता प्रदर्शित
1: प्रदर्शन
0: करो
1: करो।
0: ताप लो
1: हाँ
0: कला
1: हाँ
0: के।
1: अच्छा। हाँ तो ये कबड्डी बल्ले से
0: हाँ
1: कबड्डी ने तुझ कसन रुचि होली कसन कबड्डी।
0: नहीं हुन कॉलेज कॉलेज चो गेम हो आगे कॉलेज करते बेरा तो अलग अलग कॉलेज ले होत लेकिन मन खेलुक लाए तो मैं देख ले कसन खेला है मैं नहीं जानते रहे असन खेलुआ बोलते। फिर मैं सर के बोल ले सर मैं बोल खेलुआ है बोलते सर बोला आओ ट्राई करे खार बोलो ठीक है सर बोल ले। मैं फिर गेले हुता खिनिक हुन चल फिर ले लोग मन के देख ले कसन रेड ने सोत कसन छू ने सोत वापस तो खिनिक इंटरेस्ट एते गेली मके
1: अच्छा
0: तो हुनील फिर कबड्डी वाल खेलुक सीख ले मैं।
1: आसान।
0: हाँ
1: हाँ, लेकिन कबड्डी तो किने डर भी थी
0: और
1: खेल
0: डर भी त्याय हाथ पाए टूटता भी त्याय
1: नहीं तो
0: नहीं
1: बोलने से।
0: आ
1: हाँ
0: नी टूटा लो ना हाल बोल तो
1: ऐसा
0: नहीं
1: टूटक पड़ू
0: है तो
1: है।
0: मजबूत हो दे हाथ
1: हाँ
0: पाए।
1: उन बल तो है मानतर दक कबड्डी खेल तो काज बोले किने अच्छा
0: हाँ
1: ले कहीं
0: तंदुरुस्त
1: चीज के
0: रोक
1: ध्यान
0: लाए।
1: देव पड़े से
0: हाँ
1: है कि नहीं।
0: जैसे खेल वेल करते बड़ा ज्यादा खट्टा वट्टा खातुर नु है।
1: अच्छा
0: हाँ खट्टा वट्टा नहीं खाता रहा है मीठा वाल नहीं खाता रहा है मतलब बॉडी के खिनिक बैलेंस करूँ संग आता रहा है
1: हाँ
0: खेल तो
1: हाँ
0: लायक जो।
1: अच्छा। हाँ, तो दक कबड्डी खेल तो ताने खेनिक चलाकी होतर बोले जरूरी
0: हाँ
1: वैसे है कि।
0: अब दिमाग जो खेला है
1: हाँ उन तो
0: नून
1: बोलने से।
0: कौन बाट ले कसन है सोत कहाँ चलो कसन निकरे सोत कोके छीं ले कसन होए दे असन सोचुक पड़े से और जाऊक पड़े से
1: हाँ
0: रेड रेड जुड़नी वाई हुन मन के।
1: हाँ हाँ हुन तो है। तो अब तक कोनी असन कबड्डी तो चुका ही प्रतिभा के दकातन
0: नहीं
1: कहीं
0: कबड्डी चूतरो प्रतिभा नहीं रली मचो।
1: नहीं रहले।
0: हाँ हुन
1: अच्छा
0: कॉलेज तक ची रली बस
1: हाँ हाँ बल्ले ने असने खेलते रहे भी।
0: असनी खेलते रहे एंजॉय काजे खुद
1: हाँ
0: जो
1: हाँ
0: मनोरंजन काज खेलते रहे।
1: अच्छा। तो द केबे हिंदी सब्जेक्ट ने तो एम ए करे से बोले से ये मतलब स्नातक तक काय काय सब विषय रली जाले।
0: स्नातक मचो बी एच रहे बैचलर ऑफ आर्ट्स हुतैल कर ले मैं पीजी कॉलेज ले करते रही तक ग्रेजुएशन होली। फिर अभी फिर इस साल फिर करें से एम ए
1: बोले एम ए कौन आजकल तो सेमेस्टर
0: नहीं
1: है।
0: प्राइवेट देश में।
1: अच्छा प्राइवेट देश है।
0: हाँ
1: अच्छा कौन सेमेस्टर तक खोली जाए।
0: ए फर्स्ट ईयर कंप्लीट होली से सेकंड ईयर जो चालू
1: अच्छा
0: हुआ है अभी।
1: हाँ। तो बोले ने दक तू तो खिलाड़ी बोली आज सिखाई सीज बोले बोले ने पढ़ाई लिखाई करुन बाती बोले ने तुझो काय बिचार आज जाले
0: पढ़ाई
1: मतलब आगे काय सोच ली सीज।
0: नहीं एवे तो हर चीज ने कंपटीशन तो बढ़ ली तो मैं सोचे से खुद चो कहीं करें दे असन पढ़ाई पढ़ाई के साथ चल उन संगात रहा है मतलब साथ ने पढ़ाई बल चलते रहो अरे बाट ले खर्चा जोन बल कमाई
1: हाँ
0: वमाई है हुन बल होते रहो
1: हाँ
0: असन सोच ले सर कहीं आगे अगर असल मौका मौका मिलनी मौके तो मैं बस्तर ने गोटो कराठा एकेडमी खोलें दे रुता क्लास में पीला मन के
1: सिखा
0: सिखाएंगे।
1: से।
0: हाँ
1: अच्छा
0: असन सोच संगाले से
1: हाँ। तो बोले नहीं चुका तो कई सरकार बाटली सुविधा बोल मेरे तो असन ऐसे
0: एवे तो उतरो काय तो नहीं होली से
1: कोशिश नहीं कर ली
0: नहीं
1: से।
0: कर ले से कोशिश
1: अच्छा
0: तो एवे धीरे धीरे करें दे कोशिश हुन
1: हाँ
0: चुका
1: हाँ
0: जो
1: अच्छा। तो ये भी बोल तू क्लास चले से जी।
0: एवे छुट्टी होली से पीला मन मतलब अभी नवंबर और दिसंबर ले शुरू हुआ है वे।
1: अच्छा नवंबर दिसंबर ले।
0: हाँ
1: हाँ। ये तो अच्छा है नवा जोन कराटे जुड़े संगे संगे दक तू चो पढ़ाई बोले कर से
0: चले सब
1: प्राइवेट पढ़ाई बोले चले
0: प्राइवेट।
1: से।
0: हाँ
1: ये तो अच्छा है मानता जैसन कि तू एकेडमी भी थी खोल तो वो विचार कर ली से
0: हाँ विचार तो कर
1: है
0: ले
1: कि नहीं। हर दक संगे संग का है कि गांव ने जो नृत्य तो लेका हो चाहे लेकी हो
0: लेकी हो।
1: खेती बाड़ी में खूब ध्यान दी बात तो
0: हाँ
1: तू चुका आसन रुचि आसन।
0: नहीं खेती बाड़ी करते रहे हुन तो आई जी मतलब खातो काज तो करुक लागे से
1: हाँ
0: तो नी कमा ले तो कहीं खातो काज बल नी
1: नहीं
0: मिले
1: मेरे।
0: तो
1: हाँ
0: खेती बाड़ी कर तो जरूरी है हुन बल सीख तो रहा है मतलब लाइफ ने हर चीज के सीख रहा तो जरूरी है हुन नाम चीज काज काम दीवा है।
1: हाँ हाँ हाँ तो आज ही तो असन बोले तुम जो घरे बोले असन कर सो खेती बाड़ी
0: हाँ अम्बल करूँ धान वान लगाऊँ अम्बल जोंदरा उंदरा
1: अच्छा
0: घरे लगाऊँ
1: हाँ हाँ
0: जब रोपा रोपा लगा के धान काटा धान का टुकलाए जाऊँ
1: अच्छा अच्छा जब वाह
0: बेड़ानी
1: बेड़ान अच्छा तो गांव चो सब तो काम करूँ लाए पड़े से
0: हाँ
1: आगे जुगे चाम जो जीवना खेती बाड़ी है
0: खेती बाड़ी है
1: कि नहीं।
0: हाँ
1: हाँ हाँ हाँ तो दक इतलो अच्छा तु भले ने जोन पढ़तो लेखा लेखी मन के कराटे सिखाईसीस और खुद चो जोन जीवना का जब कहीं ना कहीं असन तु सोचलीसीस पढ़ीस पढ़ीसीस
0: हाँ
1: तो ये तो अच्छा गोटा है आम चो जो नौजवान लेखा लेखी मन सुन सो जाल तु चो गोट के सुनन बाती कहीं ना कहीं असन तु चो असन मतलब जीवना का जे चारों दिशा ने कहीं ना कहीं असन सोच लो नाल तो आजकल नहीं होए
0: नहीं होए
1: है कि नहीं।
0: हाँ
1: आजकल चो जोन जीवना चो जोन तरीका है जीवना चो जोन शैली है बोले खेने बदल ली से
0: बदल ली से
1: है कि नहीं। पूरा प्रतिभा ज्यादा लागे से
0: हाँ
1: आगे चो संतो नो है कि नहीं। हाँ तो दक नमिता बघेल तो संगीत लो अच्छा अजी गोड बात होली फिर के भी तु अच्छा सिखालीस बोले तू चो चेला चेली मन बनुन आगे गेला जाले फिर एवन बाती सांग से तो आजी का जी खूबे खूबे जुहार
0: जुहार सबके जुहार सिवा
1: जुहार।
0: जुहार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेल पत्रिका में नमिता बघेल से ली गई भेंट वार्ता। भेंट करता थे बलबीर सिंह कच्छ। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए हल्बी लोकगीत। गायक कलाकार हैं सुखदेव कश्यप और साथी।

0: अभी आप सुन रहे थे हल्बी लोकगीत, गायक कलाकार थे सुखदेव कश्यप और साथी। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जगदलपुर को। इस समय रात्रि के 10 बजे हैं। अब पेश है फरमाइशी लोकगीतों का फोन इन कार्यक्रम लोकरस। प्रस्तुति है जयराम कवासी की, संयोजिका हैं चंद्र ऋषि ठाकुर।

0: मातरम जय जोहार।
1: हाँ वंदे मातरम जय जोहार।
0: मैं कहा से दादा ये नक्की से रे रमेश दानी।
1: हाँ अले रमेश दादा सांग ना। सबसे पहले तो ये सांग की तू कुछ गालो गीत की सुनो आज।
0: ये समय ऐसा में सुने में आते बरसात कम है दादा, मतलब बड़े परेशान हो जाए ना।
1: हाँ हाँ हाँ उन तो आए ईसु खेड़े के जो बरसा पानी आए कुंड लेट हो ऐसे
0: है ना दादा, वही तो बड़ा मुश्किल ना। ये मैं गीत सुने के लिए दादा।
1: हाँ अले कुछ गालो गीत की सुनो आज ना।
0: मैं बस्तर जिला तो आदिवासी पीला।
1: अले तुझो मन कर लो गीत की आमरा उनते उनते।
0: जय जोहार दादा।
1: हाँ जय जोहार।

0: टांगना कुछ गालो गीत के सुनो आजले
1: दादा मुझे पनवानी के सुना दो आप मना जन मैसूर
0: में हां हां दादा आम की ये सांगना तो है कि आम छ जोन बस्तरिया बोली छ जोन कार्यक्रम मन प्रसारण हुआ है तो उन कार्यक्रम मन के बोल सुनो आस ना तुम्ही
1: हां सुनता हूं दादा लेकिन पूरा मतलब ना समझ तो मतलब समझ सब पूरा लेकिन बोल नहीं पाऊं मैं हां
0: आकाशवाणी ले रोजे दिन प्रोग्राम मन की सुनती रुआसने अले आमचो आकाशवाणी ने तु फोन लगा लीस एचुका खूबी खूबी धन्यवाद देवे
1: ठीक है दादा जो
0: अले जो आर।

तो अर्जुन बड़ा उदास हो गया। कुछ दुबी के रस पिए, कुछ कंदमूल फल खावे और कुछ समय ले अर्जुन इसने दिल बितावा था वे कहकर। जब आत्मा ले ब्रह्मांड में चढ़ा कर शंकर के ध्यान लगावे तो कैलाश पर्वत डगमगाए। पार्वती जोर से चिल्ला के कहे, भोला भोला अरे का हो गए तोला। कहते

हाथी के बोली भुस्सा के मारे कहे वाह वाह वाह भोला। अरे अर्जुन छत्री पुत्र है और वो श्रद्धा भक्ति लगा के तोर ध्यान लगा ही तो का हमार कैलाश पर्वत डगमगा जाही। शंकर हंस के कहे पार्वती आदि अर्जुन चाहे ना तो तन मन धन दे के पूजा करे तो तीनों लोग खिलाए के ताकत है। कैलाश पर्वत ला कौन पूछा है। पार्वती गुस्सा के मारे कथे ये गलत बात है। शंकर कथे तेनी पत्यावत तो चल परीक्षा ले बो। तो कैसे परीक्षा ले जाबो। अरे बोलो शिकारी न चल लगा मैं हवन हूँ शिकारी ऐसे बोला ना तो बोला तो शिकारी बन जा मैं शिकारी। शंकर के पास में बैला गाड़ी तो रही से कका ओकर पास माँ मोटरसाइकिल कुछ नहीं। पार्वती ला बैला गाड़ी माँ बैठार के सुकर नाम राक्षस ले

0: कर ऊपर में बांध छोड़ के और निशाना जमा के जब चले तो बरहा आगे आगे और पार्वती शंकर के गाड़ी बैला पाछे पाछे।
1: अच्छा,
0: अरे गर गर गर गर गर गर दम उड़ावे बोला पार्वती गलो चढ़े शंकर कैसे पार्वती हो बने खुटाल धरे रबे जझरंग ले गिरबे मैं नहीं जाना हूँ।

0: हाँ हेलो, फोन इन लोग रहे।
1: फोन इन लोग जुआर जुआर ना दादा।
0: हाँ जुहार ना, कौन बोल इतना?
1: गणपत वगैरह बोलना चाहता मैं।
0: गणपत बघेल, तू ही तो खुबियार रहता। आम आकाशवाणी ने फोन कर ली सीधना तो जोर संगे खुबियार गोड बात बोलो ली सीने।
1: हाँ ना
0: सांग ना सब ले आगे तो यही सांग की आज ही कुछ गाल गीत की सुनवा।
1: बलबीर सिंह कच्चो सुना दे सका ना। हाँ आजकल
0: तो
1: पानी खूबे गसरेस ना आमच बाटे।
0: पानी गस रेस ने कौन कौन
1: ये
0: तो बाट पानी बोलनी गस रेस ना तुझे बटा चाहे
1: कौन
0: गस
1: कौन
0: रेस
1: बात
0: ने।
1: हम जो बटा चा ऐसा ही गसरे थोड़े बहुत बेड़ा वगैरह बुनो रो उन पर थोड़े इन्हें के नुकसान हो रही 2 दिन ये पानी गसर ली नहीं उन ने
0: बेड़ा बूता चलावा खाए बूता काम करू आज।
1: राइस मिल ने रुआ है ना 2 दिन घर बाट रहे हैं तो उन काम वगैरह खत्म करूँ बाते वही ले रोपा का चेर जमा जा रहे।
0: हाँ, तो सांग ना तुई तो आमच आकाशवाणी चो नियमित स्रोतो आस तो आमच आकाशवाणी ले जोन कार्यक्रम नाल भी बीती हो नाले कोनी बोले हो सब ले अगर तुके मन है तो असन कार्यक्रम मन तो।
1: हमके तो सफाई कार्यक्रम अच्छा लगवा था लेकिन फिर बोल मैं तो सांगो दे थे मचो मन पसंद कार्यक्रम मन सब ले आगे बस्तर किस पर होली फिर रामचो गाँव और हिंदी बीती बोलने पर उन्हीं श्रोता सम्मान होली नमस्कार जगदलपुर और युवाणी।
0: प्रोग्राम
1: लेकिन आजकल किन्नी के का है तो सुन तो ने किन्नी दिक्कत हो ना चल प्रसारण सुनाई नहीं है सामचो मोबाइल मन ने।
0: ये गोट सत्य आए आम चो आकाशवाणी ने किंडी के ये परेशानी चले से तकनीकी परेशानी उन मौसम खराब चो चक्कर ने आया औसन हो ऐसे
1: हाँ हाँ
0: आम चो।
1: हाँ ठीक है कहना
0: हाँ ले ठीक है तेबे तू चो मन करो गीत के आम राम देव ना
1: जुआर ना।
0: आले जुआ।

0: हेलो पोनी लोकरस।
1: हेलो पुलिंग लोग दादा
0: हाँ जोहार ना, कौन बोल सीत?
1: यार मेघनाथ नाग बोले थे ना
0: मेघनाथ ना कहाँ ले बोल सी दादा?
1: ये सोनमाल बोले दादा ये माकड़ी बल्ला ले तो कौन बोल सीत ना।
0: हाँ मैं जयराम का ऐसी बोले दादा।
1: हाँ जोहार ना दादा।
0: हाँ जोहार जोहार। अली सांग ना को चुगाल गीत के सुनो आज।
1: अजी उन्हीं पानी मारे गया अभी तीन सुना पानी पाना गिरे थे ना।
0: हाँ ये बट कभी कभी कौन कौन तो लग गिरे ना, कौन कौन तो लग नहीं गिरे, तुम बट को सुनाए पानी
1: बट बोल उसने आया ना गिर लो तो करे थे फिर नहीं गिरे थे
0: ने जो बेड़ा कमानी जो भूता है उनकी डिगते बुन जाए इसने
1: पानी गिर लो मैं।
0: पानी गिर लो ने अच्छा कमा तो भूता आगे बढ़ती हुई जानू मानतर पानी ईसु की डिग गोमा तो काय काम भूता करू आस ना।
1: ड्राइवर आए दादा ड्राइवर आओ कित किसानी बोला।
0: हाँ दोनों काम करू आस ने
1: आओ
0: तो ड्राइवर आए बस जल फिर चो गाड़ी चला हुआ की कोनी दूसरा चो गाड़ी चला हुआ जल।
1: हाँ ना दूसरा चो गाड़ी है ना।
0: हाँ कहाँ ले कहाँ तक चला हुआ जल दादा?
1: मैं ते लग बोले बुकिंग बल जाऊँ सब जाऊँ आगे।
0: ये गाड़ी चलाते चलाते बोल रेडियो सुन तो काजे अच्छा मौका मिलू आए ने।
1: और मेरे है ना मजा मैप साल से तो मैं खूब दिन सुने से कम 2007-08 ले सुने से मैं।
0: हाँ हाले ठीक है तेबे तू चो मन कर लू गीत के सुनान देऊ ना
1: हाँ हाले जो दादा।
0: आले जो आना जो

0: हेलो, फोन इन लोग्रेस।
1: हाँ हेलो फोन लोग
0: हाँ, फोन इन लोग्रेस। हाँ दादा, जोहार ना। कौन बोल सित कहाँ ले?
1: ना, मैं कृष्ण कुमार नेताम, जिला कोंडागांव, ग्राम भाटगांव ने बने से दादा।
0: बाट गांव ले कृष्ण कुमार नेताम बोल सित ने।
1: ओ हाँ,
0: हाँ, तुम चे स्वागत है तेवी आम चो आकाशवाणी में।
1: खूबे दिन सो बाद लगली से दादा, मैं फोन तेरे हैं का, लेकिन खूबे साल हो लिया आज का,
0: हाँ,
1: लगा लो एक बार, नहीं लगे।
0: खुबे लोग मन लगातार आवाज जान ना उनका जे नी बोल लोग
1: हाँ दादा,
0: तो देख। खूब दिन बाद आज फोन लगा ली से जाले सांगते भी कोजो गाल गीत के सुनवा।
1: मैं ऐसे रानी जी के सुनवा दादा, शायद योगेश्वर पुजारी चुआ लागे थे। कौन
0: ऊंची आए ना ऊंची आए।
1: बोल रही ना?
0: हाँ, मैं जयराम को ऐसे बोले दादा।
1: हाँ अच्छा लागली दादा, तो संग बात करूँ।
0: अली तुई सांग ना खाए काम बुता करुआ।
1: मैं दादा पढ़ाई करूँ, दृष्टि बाधित आँख ले देखू नहीं सके, उत्तर प्रदेश में पढ़ाई करें से बिना किले मतलब देखू नहीं सके मैं।
0: तो एबे
1: हाँ
0: कहाँ से
1: एबे घर इले
0: छुट्टी
1: छुट्टी में
0: होली
1: कॉलेज
0: से?
1: छुट्टी पर कर लिता ने, एबे कॉलेज करूंगा उत्तर प्रदेश में आसे
0: उत्तर प्रदेश ने कौन जिला ने उन स्कूल आसे ना तू जहाँ
1: चित्रकूट।
0: पढ़? चित्रकूट।
1: हाँ
0: उन बट कौन लागे ना आम ची असन
1: उन बात
0: बस्तर असन आसे कि
1: दादा
0: थोड़े से अलग
1: ठीक ही है,
0: आसे?
1: लेकिन ज्यादा गर्मी रहे से ये बस्तर ले। अच्छा उन बात कहाँ लागे थे, हम तो बस्तर खूब सुंदर है।
0: हम तो हाय आम ची बस्तर असन को नहीं दूसरा जगह नहीं आए ने।
1: हाँ
0: हाली तू ये असनी आम ची आकाशवाणी ने फोन लगाते रहते वे
1: हाँ दादा,
0: आले
1: जोहर दादा।
0: आले जो आरना जो आर।

0: हेलो फोन इन लोकरस।
1: हेलो कौन लोकरस।
0: हाँ दादा जोहार ना, कौन बोल से?
1: हाँ दादा जी, नाम है हिमेश बार से बोल रहे से।
0: इमेश बार से
1: हाँ
0: कहाँ लेना?
1: मुझे कहाँ के नाम है कुन्ना और जिला सुकमा ले। हाँ
0: तो दादा सांग ना, आज ही कुछ गालो गीत के सुनवा।
1: दादा मुझे उन्हीं आदिवार छोड़िया उनसे संगारी जो एक घोड़ी की फेरा देखना। हाँ
0: तो दादा सांग ना, आज कल तुम जो गांव बाट पानी मारे ना,
1: दादा पानी तो इन्नी मारे थे ना घाम छे थे।
0: इस उस ने ओलिस ना पूरे बस्तर संभाग ने किंडे पानी ले गोमा इसने नाली
1: हाँ
0: दल्ला आमरू रुआ है जो मानसून बुलवा है तुन आमचे बस्तर ने एवं रुआ है मानतरी ये सुखिंडे लेट करे से
1: हाँ हाँ
0: ये
1: हाँ
0: चुकारण ने आमचे जोन किसान दादा दीदी मनासो तो जोन खेती बाड़ी करो तुन मन चुखिंड उन
1: हाँ
0: काजी खिंडे
1: हमें
0: परेशानी जाए।
1: दिक्कत हो रही है मन के। हाँ
0: तो इमेज दादा सांग ना तो ये काय काम बुत करो आज।
1: दादा मैं मिडिल स्कूल ने पीऊ ना है ना, और मैं फोन लगा लगे थोड़े
0: तो ये भी
1: से
0: स्कूल
1: आगे
0: नीचे
1: पढ़
0: आसे।
1: लिए।
0: हाँ तो ये भी स्कूल नीचे आसे तो और स्कूल लेच फोन लगा ली सिदने।
1: हाँ
0: अले
1: हाँ
0: ठीक है,
1: दादा
0: तेबे तुझ संगे इतरो अच्छा गोट बात होली, तुझो मन कर लो गीत काम राम देऊन तेबे।
1: ठीक है दादा, सेवा जोहार।
0: आले जोहार जोहार।
2: ओए रे लगा बोला ननो, ओए रे लगा बोला लाली ये ननो ली भया।

अभी फरमाइशी लोकगीतों का फोन इन कार्यक्रम लोक रस का प्रसारण किया गया। प्रस्तुति थी जयराम कवासी की और संयोजिका थी चंद्र ऋषि ठाकुर। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है।

मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़ एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय रात के 11 बजने को हैं। अब क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
1: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज्ड कार्गो, डार्कनेट, क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बी एल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, एआई, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के साझा हितों पर केंद्रित है। वेनेजुएला में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 विमानों से भेजे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए एक सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC और अमरीकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। आयरलैंड के बेलफास्ट में 2 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड

इंग्लैंड ने 182 रन बनाए 183 रन के लक्ष्य के जवाब में। भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू हॉलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।